100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की अष्टमी तिथि और विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। तदनुसार 29 मई 2026 सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की यह सभा आरंभ होती है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, सवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में।

सुबह के शांत पावन और मंगलमय बेला में जब उगते सूरज की सुनहरी किरणें धरती को आलोकित कर रही हैं, जब प्रकृति का हर दृश्य मन को नई ताजगी और नई ऊर्जा से भर रहा है, तो आइए ऐसे में हम भी प्रभुमय हो जाएं और गुणगान करें परमेश्वर का कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से। और आज इसमें आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त सुस्मित 100.7 एफएम रेनबो पर। हर शुभ कार्य की तरह आज की इस संगीतमय प्रस्तुति का प्रथम पुष्प समर्पित है विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में, जिनके स्मरण मात्र से मन में नई शक्ति का संचार होता है।

भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, भक्ति वो अनुभूति है जो मन को शांति देती है, जो जीवन में विश्वास और सकारात्मकता का दीप जलाती है। और जब सुरों में श्रद्धा का भाव जुड़ जाता है तो वही संगीत ईश्वर की आराधना बन जाता है।

ईश्वर तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, न कठिन विधियों की, न ही दिखावे की। सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम ही सबसे बड़ी पूजा बन जाता है। जब मन सरल हो, भाव निर्मल हो, तो भगवान स्वयं भक्त के हृदय में स्थान बना लेते हैं।

ईश्वर तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, न कठिन विधियों की, न ही दिखावे की। सच्चे मन से लिया गया प्रभु का नाम ही सबसे बड़ी पूजा बन जाता है। जब मन सरल हो, भाव निर्मल हो, तो भगवान स्वयं भक्त के हृदय में स्थान बना लेते हैं।

भगवान का आश्रय केवल पूजा तक सीमित नहीं होता, वो तो एक ऐसा विश्वास है जो कठिन समय में भी भीतर आशा का दीप जलाए रखता है। ईश्वर की कृपा उस शांत सरोवर की तरह होती है जिसके पास पहुंचते ही मन की सारी व्याकुलता धीरे धीरे शांत होने लगती है, और जब हृदय पूरी श्रद्धा से प्रभु का ध्यान करता है तो जीवन का हर मार्ग सरल और प्रकाशमय लगने लगता है।

ईश्वर की कृपा भी कितनी अद्भुत होती है। कभी वो हमें दिखाई देती है और कभी चुपचाप हमारे जीवन को संवारती रहती है। कई बार जब सभी मार्ग बंद दिखाई देते हैं, तभी अचानक कहीं से आशा की एक किरण जन्म लेती है। शायद यही भगवान का आशीर्वाद है जो बिना कुछ कहे हर पल हमारे साथ चलता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में प्रभु पर विश्वास बना रहे तो अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य मिलता है। दोस्तों, 100.7 FM रेनबो पर इसी विश्वास के साथ मेरे यानी सुस्मित के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि, जिसमें उसी असीम कृपा को नमन करते हुए आइए सुनते हैं एक और मधुर भजन।

भक्ति हमें ये सिखाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, हर सफलता के लिए ईश्वर का आभार मानना चाहिए और हर कठिनाई में ये विश्वास बनाए रखना चाहिए कि प्रभु जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो केवल सुख में ही नहीं दुख में भी ईश्वर का हाथ थामे रखे।

मन पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम दोहराता है तो लगता है जैसे भीतर कोई नई चेतना जाग उठी हो। थकी हुई सांसों में फिर से ऊर्जा भर जाती है और मन आनंद से झूम उठता है। भक्ति का सुख भी कितना अद्भुत होता है। न कोई बंधन, न कोई आग्रह, बस प्रभु के नाम में डूब जाने का एक सरल और निर्मल भाव।

ईश्वर का स्मरण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब मन प्रभु के विश्वास से जुड़ जाता है तो कठिन रास्ते भी सरल लगने लगते हैं और जीवन में एक नया प्रकाश दिखाई देने लगता है। इसी भाव, इसी विश्वास के साथ भक्ति संगीत की इस पावन प्रस्तुति पुष्पांजलि में आज बस इतना ही। परमात्मा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे यानी सुस्मित को अनुमति दीजिए कार्यक्रम पुष्पांजलि से। थोड़ी देर में होंगे समाचार और उसके बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा प्रोग्राम सदाबहार गीत में। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर आप तक पहुंच रही है इस कार्यक्रम की ये अंतिम भक्तिमय प्रस्तुति।

Hello and salam, namaste, Kanpur. Wishing you all a lovely morning. It's a fantastic Friday morning. और घड़ी में बजे हैं 7 तारीख है 29 मई सन 2026. मैं हूं आपका दोस्त एंड शो होस्ट आज गौरव और आप सभी दोस्तों का आपके फेवरेट म्यूजिक चैनल 102.2 FM रेनबो कानपुर पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में स्वागत है.

So friends, as always, I'm too glad to be with you all to kickstart your morning with entertaining music और थोड़ी गपशप के साथ. तो चलिए इस brand new day और program का आगाज करते हैं इस track के साथ.

अरिजीत सिंह और अफसाना खान की रिलैक्सिंग एंड रिफ्रेशिंग आवाजों में ये ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे फिल्म स्काई फोर्स से, जिसका म्यूजिक कंपोज किया था तनिष्क बागची ने और लिरिक्स थे इरशाद कामिल के। तो दोस्तों, इस ट्रैक के बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम एक नजर डाल लेते हैं प्रोग्राम हाइलाइट्स पर। आपको बता दें कि आज सारा दिन हम किन किन प्रोग्राम के साथ आपको करते रहेंगे एंटरटेन। तो अब से थोड़ी देर बाद यानी 8:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल और आपकी एंटरटेनमेंट जर्नी जारी रहेगी प्रोग्राम रस बहार के साथ, जिसका टाइम होगा रोज की ही तरह सुबह 9:00। इसके तुरंत बाद 9:45 पर विविधा में लुत्फ लीजिएगा प्रोग्राम महफिल कवाली का। बातों मुलाकातों की महफिल सजेगी सुबह 11:00 प्रोग्राम हम नवाबे। दोपहर 3:00 इंजॉय कीजिएगा प्रोग्राम म्यूजिक आर और आपकी सेहत का ख्याल रखने हम हाजिर होंगे शाम 3:45 पर प्रोग्राम हेल्थ मैगजीन में, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर शैली अग्रवाल से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत का पहला भाग।

शाम 4 बजे म्यूजिक बजेगा आपकी पसंद का, प्रोग्राम आपकी पसंद में। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद 102.2 एफएम रेनबो कानपुर, जहां आपके एंटरटेनमेंट का है पूरा इंतजाम। लीजिए, एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

सो फ्रेंड्स, ये ट्रैक आप सुन रहे थे फिल्म लव आजकल से। म्यूजिक कंपोज किया था प्रीतम ने, लिरिक्स थे अरशाद कामिल के, और ये सूफियाना आवाज थी राहत फतेह अली खान की। तो दोस्तों, आसमान में सूरज से हाय हेलो हो चुकी है और हम सब स्वागत कर चुके हैं एक और नए दिन का, जो बड़ा ही सुहाना है, और एक ब्रांड न्यू डे का। तो दोस्तों, पूरी दुनिया सूरज की चमक से रोशन होती है और इसकी गर्मी से जीवन की उत्पत्ति होती है, मगर इस चमक के लिए सूरज को जलना पड़ता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस जहां में अपनी चमक दिखानी है तो मेहनत और लगन की आग में तपना पड़ेगा, मुश्किलों की कसौटी से होकर गुजरना पड़ेगा। और मित्रों, यही था आज का थॉट ऑफ द डे। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर, और ये ट्रैक आपकी चमक के लिए।

ए आर रहमान की, ए आर रहमान और नरेश अय्यर की आवाज़ों में ये ट्रैक आप सुन रहे थे फिल्म रंग दे बसंती से, जिसका म्यूजिक कंपोज किया था ए आर रहमान ने प्रशून जोशी के बोल थे। और दोस्तों टाइम हो गया है

ए आर रहमान की, ए आर रहमान और नरेश अय्यर की आवाज़ों में ये ट्रैक आप सुन रहे थे फिल्म रंग दे बसंती से, जिसका म्यूजिक कंपोज किया था ए आर रहमान ने, प्रशून जोशी के बोल थे। और दोस्तों टाइम हो गया है सोशल मीडिया ब्लिंक सेगमेंट का, और जानते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसने क्या इंटरेस्टिंग पोस्ट किया है। तो फिलहाल एक ही आईपीएल सीजन में सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाने वाले बेबी बॉस यानी कि वैभव सूर्यवंशी ही हर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जहां उन्हें हर क्रिकेटर और फैन से मुबारकबाद मिल रही है। वैभव हर किसी को आदर के साथ थैंक्स कहते हुए भी नहीं थक रहे हैं। वैभव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके सभी को थैंक्स कहा है, और इसी बीच फिल्म अभिनेता परेश रावल ने अपने एक्स हैंडल पर बड़ा ही मजेदार पोस्ट करते हुए कहा है कि वैभव भाई, जितना मजा आपको आइसक्रीम खाने में आता है ना, उससे कहीं ज्यादा मजा हमें आपको खेलते हुए देखने को मिलता है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि निरंतर प्रयास, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और आज देशवासी इसी भावना से भारत वर्ष को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। 102.2 FM रेनबो कानपुर पर वक्त हो चला है एक और प्यारे से गाने का।

दोस्तों, ये खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे शाहिद मल्ल्या की आवाज़ में। फिल्म का नाम था मौसम, म्यूजिक दिया था प्रीतम ने और लिरिक्स थे इरशाद कामिल के। और दोस्तों, आज है 29 मई, तो आइए प्रोग्राम की हिस्ट्री नामा सेगमेंट में जानते हैं भारत के इतिहास में क्यों खास है आज की ये तारीख। भारतीय इतिहास में 29 मई की तारीख कई बड़ी और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की गवाह रही है। तो आपको बता दें कि नेपाल के शेरपा तेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी ने 29 मई को ही पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, और इसलिए पूरी दुनिया में इस दिन को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और भारत के मशहूर पहलवान और अभिनेता दारा सिंह ने अमेरिका के लाओइज को हराकर पहलवानी में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था और अपने देश का मान बढ़ाया था। फिलहाल दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त है एक और गाने का।

0: दोस्तों 102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। एंड आई नो कि आप ये प्रोग्राम खूब इंजॉय कर रहे हैं, मगर इस प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाएगा, हम यूं गए यूं वापस आए। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस।
1: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय

0: मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आपने ट्यून इन किया है 102.2 एफएम रेनबो कानपुर और अर्सुन प्रोग्राम सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग कानपुर, आपके दोस्त एंड शो होस्ट आरजे गौरव के साथ। और दोस्तों, प्रोग्राम में अब बारी है सिटी हाइलाइट्स सेगमेंट की। तो मित्रों, अगर आप भी कैमरा के पीछे की दुनिया या सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का सपना देखते हैं तो अब इसके लिए मुंबई या दिल्ली का रुख करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने शहर कानपुर के CSJMU यानी छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट युवाओं को इस सपने को उड़ान देने जा रहा है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में 2 साल के स्पेशल MA फिल्म कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस साल के प्रोफेशनल कोर्सेज में सीटों की संख्या लिमिटेड रखी गई है ताकि हर छात्र पर प्रैक्टिकल के दौरान पूरा फोकस किया जा सके। टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब सिनेमा सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि OTT प्लेटफॉर्म के करियर की नई शुरुआत और नई राहें खोल दी हैं। और इसी बदलते बाजार को देखते हुए आज ये आपके पास भी मौका है कि अपनी पहचान बना सकें। और इस हाइलाइट्स के बाद लीजिए पेशे खिदमत है प्रोग्राम का ये गाना।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दोस्तों, मोहब्बत का पैगाम बांटने वाले शायर बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। अपनी गजलों में मोहब्बत, तन्हाई और जिंदगी को नई आवाज देने वाले मशहूर शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र ने गुरुवार को दोपहर 12 बजे अपने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 91 साल की उम्र में भोपाल के ईदगाह हिल्स स्थित उन्होंने अपने निवास स्थान पर आखिरी सांस ली। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं का लिखा हुआ ये गीत।

0: पहले प्यार का पहला खुमार, दिल को करता है बेकरार, आंखें ढूंढती हैं उसी को हर पल, कानों को रहता है उसकी आहट का इंतजार। आप सुन रहे हैं कानपुर का पहला पहला प्यार, FM रेनबो 102.2, कानपुर की दिल की धड़कन।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर, और जहां वक्त हो चला है अराउंड द वर्ल्ड सेगमेंट का। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में हम चर्चा हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी AI की, जो आजकल हर किसी की जुबान से सुनने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, AI की गंभीरता को देखते हुए गूगल के CEO यानी कि मिस्टर सुंदर पिचाई ने हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स के टेक पॉडकास्ट के साथ बातचीत के दौरान कहा कि AI बेहद तेजी से दुनिया को बदल रहा है, और लोग शायद इतने बड़े टेक्निकल चेंजेस को समझने और उसके अनुरूप ढलने के लिए अभी रेडी नहीं है। और ये टेक कंपनीज की जिम्मेदारी बनती है कि वे AI के फायदे लोगों तक पहुंचाएं और दिखाएं कि ये टेक्नोलॉजी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकती है। और जहां तक बात है AI की वजह से नौकरियों पर खतरा आने की, तो फिलहाल पिचाई के अकॉर्डिंग ये परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। फिलहाल आप सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर पर ये गाना।

फिल्म रईस से ये गाना आप सुन रहे थे पावनी पांडे की आवाज में। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था और इंदिवर के बोलते। और दोस्तों प्रोग्राम में वक्त है हाल है मौसम जान लेने का, जो सुपर हॉट से सुपर सुहाना हो गया है। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी और हीट वेव की मार झेल रहे शहर वासियों को गुरुवार को मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिले। दिन में धूप और लू की मार से लोग परेशान रहे, तो रात 11 बजे के बाद मौसम ने खुशनुमा करवट ले ली और राहत की बौछार कर दी। हालांकि कानपुर समेत पूरे प्रदेश में अगले 3 दिनों तक तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका को देखते हुए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रहने के कारण तेज हवाओं एवं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 28 से 27 डिग्री सेल्सियस जाने की संभावना है। और यहां संभावना नहीं, पूरी कंफर्मेशन है आपको एक और गाना सुनाने का।

दोस्तों इस ट्रैक के बाद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर के एंड में हम आ पहुंचे हैं स्पोर्ट्स टेस्ट सेगमेंट में, जहां आईपीएल क्रिकेट 2026 में मिलेगी आज सेकंड फाइनलिस्ट टीम। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 में प्लेऑफ का रोमांच चरम पर है और अब फाइनल के लिए बस आखिरी लड़ाई बाकी है। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम पर शुक्रवार यानी आज गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा और जो भी जीता वो होगा फाइनल की टिकट का हकदार। वहीं दूसरी ओर शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को नॉर्वे शतरंज के तीसरे दौर में रोमांचक मुकाबले में हराकर पूरे 3 अंक ले लिए, जबकि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश का खराब फॉर्म जारी रहा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर और आप सुन रहे थे 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर। ये प्रोग्राम आपके दोस्त इन शो होस्ट आचे गौरव के साथ। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे बाय-बाय कहने का, मगर चलते चलते आपको सुनवा रहा हूँ फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का ये गाना। आप इंजॉय करते हैं ये गाना, अपने रेडियो दोस्त गौरव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अगला ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
4: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
2: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश

0: हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह सेज सेंटर्स हाई लेवल कमिटी ऑन आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंजेस टू ऑल्सो असेस रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ टू टैकल द इश्यू। National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
5: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
4: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it.

102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है प्रोग्राम सुरीली सुरों की पुरानी महफिल में। सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में ये पहली प्रस्तुति आप सुन रहे हैं अनुराधा पाटवाल और उदित नारायण की आवाजों में फिल्म दिल से, जिसका म्यूजिक कंपोज किया था आनंद मिलन ने और लिरिक्स थे समीर के।

दोस्तों, फिल्म डर से ये गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में, शिव हरी का संगीत था और लिरिक्स थे आनंद बख्शी के। और लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम में अगला गीत।

कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। म्यूजिक था अनु मलिक का, लिरिक्स थे रानी मलिक के।

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे हैं कुमार शानू और कलिया की आवाजों में फिल्म साजन से। प्रोग्राम का ये गीत आप सुन रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में फिल्म साजन से। नदीम श्रवण का संगीत है और समीर के बोल हैं।

0: पहले प्यार का पहला खुमार दिल को करता है बेकरार, आंखें ढूंढती हैं उसी को हर पल, कानों को रहता है उसकी आहट का इंतजार। आप सुन रहे हैं कानपुर का पहला पहला प्यार FM रेनबो 102.2 कानपुर की दिल की धड़कन।
1: सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद, मेहरबान दोस्तों। आसमान से सुबह की गुनगुनी धूप आप तक पहुंच चुकी है और 102.2 FM रेनबो कानपुर से सीधे आपके दिल तक पहुंचने को हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त एंड शो होस्ट आजय गौरव। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। घड़ी में बज चुके हैं 9 और वक्त है प्रोग्राम रस बहार का। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह की हवाओं में आज एक अलग ही ताजगी है। तो मित्रों, प्रोग्राम रस बहार में घुलने जा रहा है एंटरटेनमेंट का वो रस जो आपके पूरे दिन को तरोताजा रख देगा। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के इस बेहद रिफ्रेशिंग ट्रैक के साथ।

क्या बात है, गुलजार के लिखे इस बेहतरीन गाने के बाद तो इस सुबह का मजा दो गुना हो गया है। आप सुन रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर प्रोग्राम रसबहार, आरजे गौरव के साथ। वैसे दोस्तों, हमारी जिंदगी में भाग दौड़ तो रोज की ही है, लेकिन इस भाग दौड़ के बीच जो सुकून के कुछ पल हम अपने लिए चुराते हैं ना, बस असली रस तो उसी में है। प्रोग्राम रसबहार का आज का हमारा ये कारवां भी इसी सुकून के नाम है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई उलझन नहीं, बस आप, हम और एंटरटेनिंग म्यूजिक का ये खूबसूरत सिलसिला।

102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रस बहार। दोस्तों कहते हैं कि म्यूजिक एक ऐसी भाषा है जो बिना कुछ कहे भी दिल की हर बात कह जाती है, और इन गानों के जरिए हम उन यादों को दोबारा जीते हैं जो इन गानों से जुड़ी होती हैं। कोई गाना कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है तो कोई पहली बारिश की। तो लीजिए, इंजॉय कीजिए ऐसा ही एक गाना।

दोस्तों प्रोग्राम रसबहार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि एंटरटेनमेंट की ये जर्नी जारी रहने वाली है आगे भी। सो डोंट गो अवे, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीक

0: मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपने ट्यून इन किया है 102.2 FM रेनबो कानपुर और प्रोग्राम सुन रहे हैं रस बहार, आपके दोस्त एंड शो होस्ट आजय गौरव के साथ। दोस्तों, गुलजार साहब ने क्या खूब कहा है कि सुकून की तलाश में हम खुद से ही दूर हो गए, जो पास था उसे पहचाना ही नहीं और जो दूर था उसके पीछे दौड़ गए। दोस्तों, सुकून ये कहीं बाहर नहीं मिलता, ये तो उस छोटी सी खामोशी में छुपा है जो हम खुद को देना भूल गए हैं। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि ये गाना हम बजाने जा रहे हैं सिर्फ आपके लिए।

इरशाद कामिल के लिखे अल्फाजों में ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। तो दोस्तों, वक्त की रफ्तार भी बड़ी अजीब होती है। जब समय अच्छा गुजर रहा हो ना, तो ये पंख लगाकर ऐसे उड़ जाता है जैसे पता ही ना चल रहा हो। प्रोग्राम रसबार में हम आ पहुँचे हैं प्रोग्राम के एंड में, और वक्त का पता ही नहीं चला, मगर प्रोग्राम में ये गाना आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है।

दोस्तों, प्रोग्राम रस बहार का ये सफ़र आज का भले ही यहाँ थम रहा है, लेकिन सुरों की ये बहार आपके दिल में पूरे दिन बनी रहेगी। तो दोस्तों, चलते चलते बस इतना ही कहूँगा कि आपकी मुस्कान ही दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है, जो जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए अपना फेवरेट म्यूजिक चैनल 102.2 FM रेनबो कानपुर। तो इंजॉय कीजिए ये गाना और अपने दोस्त एंड शो होस्ट आचे गौरव को दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए, कला साहित्य शिक्षा खेल चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
2: एक आवश्यक सूचना सुनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन

awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: 102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सभी सुनने वालों का इस्तकबाल है प्रोग्राम महफिले कवाली में।

प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सुन रहे हैं नूर जहां और साथियों की आवाज में। संगीत दिया है श्याम जी घनश्याम ने और जफीर गोरखपुरी के बोल हैं।

0: दर्द मंदों का मुश्किल कुशा है वही, अपने बंदों का हाजत रवा है वही,
1: अपने बंदों का हाजत रवा है वही।
0: दर्द मंदों का मुश्किल कुशा है वही, अपने बंदों

0: دوستوں پروگرام محفل قوالی کی آپ سن رہے تھے, یہ آخری قوالی ظفر حسین خان اور ساتھیوں کی آوازوں میں, اور اس قوالی کے ساتھ ہی یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. دیجیے اجازت. اگلا براڈ کاسٹ آپ سنیں گے ہمارے لکھنؤ کیندر سے.
1: نمسکار, اب سنیے مکھیہ سماچار. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था की कल उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है. आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधों की समझ और फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए. उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का भी आकलन करेगी. गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई. पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, किसानों के प्रति समर्पण और जन कल्याण की राजनीति हम सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी. वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी पोस्ट में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आपातकाल तक लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने समृद्ध किसान और कृषि आधार अर्थव्यवस्था का विकास मॉडल प्रस्तुत कर भारत को एक नई दिशा दी. और अंत में हांगकांग में कल से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया. निपम ने महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है. इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है. अगला बुलेटिन आप सुबह 11 बजे सुन सकते हैं. सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है।

0: आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
4: और आ गए 10:05 और ये समय होता है आपके फेवरेट प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग्स का, जिसमें आपको नॉन स्टॉप म्यूजिक एंजॉय करने को मिलता है। तो बस बिल्कुल देर किए बिना मैं अब तक प्ले करती हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे प्ले अच्छे अच्छे सॉन्ग्स। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।

0: 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

इस पल आप हैं और हम हैं, और फिलहाल ये जो पल है ये हमसे ये कह रहा है कि अब फिलहाल इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि अगला प्रोग्राम जो आपका और भी ज्यादा फेवरेट है, जिसमें आप अपने मैसेजेस लिखकर भेजते हैं और साथ ही साथ हमें कॉल करते हैं, तो बस बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा न्यूज ब्रेक होगा और न्यूज ब्रेक के उस पर वापस आ जाऊंगी प्रोग्राम लेकर। संदेश आपके गीत हमारे, तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: पहला नशा, पहला खुमार।
6: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
7: हेलो, सलाम, नमस्ते, सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद, मेहरबान दोस्तों। 102.2 FM रेनबो कानपुर पर हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है हम नवा।

0: मैं हूं आपका दोस्त एंड शो होस्ट आरजे गौरव, और आज स्टूडियो में मेरे साथ मेरी दोस्त और आप हमारी हमनवा हैं।
1: गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगनी रंजना, और इस्तकबाल है आप सभी का आवाज अल्फाज और एहसास की इस दुनिया में, ये दुनिया जिसका नाम है एफएम रेनबो कानपुर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है हम नवा, और बातों मुलाकातों गीतों का ये सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता देते हैं इन बातों का थोड़ा सा और छोड़, ताकि आप हमारे साथ आराम से कनेक्ट हो सके, है ना गौरव?
0: बिल्कुल सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और हमारे पास आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपसे बात करने के लिए। तो रंजना जी,
1: हम संगीत के का सफर तो करेंगे ही इस प्रोग्राम के साथ, आप सभी जानते हैं, और उसके साथ साथ हमारा सफर पहुंचेगा स्वाद तक। इसके अलावा जो और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं भाई, वेकेशन से रिलेटेड हैं, बच्चों से रिलेटेड हैं, रिश्तेदारों से भी रिलेटेड हैं, घर के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलने वाले हैं इसमें, और हम बात करेंगे अपने पहले पहले प्यार आकाशवाणी की।
0: जी बिल्कुल ठीक है, और कुछ हमारे भारत की महान विभूतियां हैं जो जिनका आज पुण्य
1: आज उन्हें याद करने का दिन है, और जैसे कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि कल का दिन एक ऐसा दिन था जब हमने अपने एक बहुत ही मशहूर, अपने महबूब शायर को खो दिया। बशीर बद्र साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन गौरव उनके जो अशआर है ना, वो कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, वो हमेशा इसी दुनिया में रहेंगे। इसीलिए शायद कहा गया है कि लेखक जो हैं वो कभी भी जाते नहीं हैं, वो हमेशा यहीं रहते हैं। और इसके साथ ही साथ लेखक जिन्हें प्रेम करते हैं ना, वो उन्हें भी हमेशा के लिए अमर कर जाते हैं, क्योंकि उनका नाम, उनकी कहानी, उनका जिक्र कहीं ना कहीं उनकी कृतियों में शामिल होता है।
0: उनके अल्फाज हमारे जहन में हमेशा रहते हैं उनकी गजलों और शायरों की वजह से, और जो अल्फाज उन्होंने हमारे लिए छोड़ रखे हैं वो बेशकीमती हैं,
1: बेशकीमती हैं, और कहीं ना कहीं वो हमें हमारे आने वाले कल के लिए रास्ता भी दिखाते हैं, क्योंकि बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ वो बहुत गहरी गहरी बातों को कह दिया करते हैं।
0: जी बिल्कुल सही है, और इतनी नजाकत से कह देते थे रंजना जी, जो शायद हमारे और आपके लिए सोचना तो बहुत दूर की बात है।
1: हाँ बिल्कुल, एक बड़ी खूबसूरत सी बात उन्होंने कही कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये अलग मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो।
0: बहुत बहुत
1: तो उन्होंने एक खूबसूरत डिस्टेंस मेकिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझा दिया कि कई बारी रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां भी जरूरी हो जाती हैं, और या कहें कि थोड़े से एटिकेट्स भी बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, बशीर बद्र साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात जो मुझे पता चली उन्हें पढ़ने के दौरान, वो ये थी कि वो क्लास में अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखा करते थे।
0: बिल्कुल सही है।
1: प्रोफेसर साहब को बहुत नाराजगी हुई, उन्होंने डायरी उनसे छीन ली। बाद में जब ब्रेक हुआ, उन्होंने उनको बुलाया बशीर बद्र साहब को, और क्योंकि वो डायरी पढ़ चुके थे और उनको लगा कि ये तो भाई एक बहुत ही इसमें काबिलियत है महान शायर बनने की, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह मंच पर है।
0: बिल्कुल सही, और जहाँ तक मेरी जानकारी है रंजना जी, तो ये शायद उनकी 7 साल की उम्र का जो है किस्सा है, या वो 7वीं क्लास में थे इस तरह का।
1: 7वीं क्लास मतलब वो बहुत छोटे थे जब से उन्होंने लिखना शुरू करा था, मगर ये किस्सा उनके कॉलेज के जमाने का है। और कॉलेज से एक और वाकया मैं तुम्हें बताती हूँ गौरव, हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे कि वो पढ़ने के लिए अपने हायर स्टडीज के लिए जब कॉलेज गए, उन्होंने मास्टर्स करनी थी, और मास्टर्स की डिग्री के लिए जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की, तो सिलेबस में देखते क्या है कि उनके ही नज्म, उनके ही गजल, उनके ही शेर जो है आए हुए हैं, और उनको पढ़ना है, उनके बारे में लिखना है। तो मुझे लगता है कि तरक्की जो है इसे कहते हैं।
0: बिल्कुल सही है,
1: तो आज हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उनके साथ ही साथ आज एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की पुण्यतिथि भी है जिन्हें हम
0: चौधरी चरण सिंह जी के नाम से जानते हैं, जो किसानों के मसीहा भी कहे जाते हैं।
1: बिल्कुल, किसानों के इतने बड़े नेता वो रहे हैं, इसलिए उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है, ग्रामीण उत्थान के लिए बहुत काम किया है, और इसके अलावा हम उन्हें अपने भारत के 5वें प्रधानमंत्री और 17वें मुख्यमंत्री के रूप में भी जानते हैं। दूसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है, गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है, और बहुत बढ़िया बात यह है कि जब राजस्व मंत्री थे तो उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को लागू करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया, और अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, इससे लाखों किसानों को उनकी जमीन मिल गई।
0: जी बिल्कुल सही बात है, और साल सन 1954 में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने भूमि संरक्षण कानून पारित कराया था, जिसमें किसानों के शोषण को रोका जा सका। और उनके जीवन का बहुत ही सादगी भरा था। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने खाली समय में अध्ययन और लेखन पर ध्यान देते हुए, और शायद यही वजह थी कि वो एक सफल लेखक भी थे।
1: हाँ, ये रूप जो है बहुत कम लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह साहब एक बहुत अच्छे लेखक थे और आर्थिक नीतियां बहुत अच्छी लगाते थे। उन्होंने किसानों के लिए बहुत खूबसूरत चीजें लिखी हैं और
0: कई किताबें भी लिखी हैं।
1: एग्जैक्टली, दो किताबों का मैं यहाँ पे जरूर जिक्र करूंगी क्योंकि वो गरीबी से जुड़ी हुई हैं और जमींदारी से जुड़ी हुई हैं। एक किताब है एबोलिशन ऑफ जमींदारी एंड दूसरी है पावर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन। तो एक तो है जमींदारी उन्मूलन और दूसरी है गरीबी और इसका समाधान। तो बहुत सुंदर इन्होंने किताबें लिखी हैं और इस पर उन्होंने बहुत काम किया है। मतलब ये कहते हैं ना गौरव कि इनकी कथनी और करनी में कभी भेद नहीं रहा और यही एक वजह है कि ये भारत के सच्चे सपूत कहलाए और भारत रत्न से सम्मानित हुए।
0: जी बिल्कुल सही है।
1: तो आज इन्हें याद करने का दिन है और इस गीत के रूप में हम इन दो महान विभूतियों को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं।

0: भाई गौरव, जब इस तरीके से हमारा और तुम्हारा और सभी का सुर मिलता है ना, तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट की भावना आती है और ऐसे ही कहीं ना कहीं शांति कायम होती है।
1: जी बिल्कुल सही है। हमारा, आपका, लिसनर्स का और ये पूरी सोसाइटी का जो ये चाहती है कि ये देश आगे बढ़े, हम सब मिलजुल के रहें और वसुधैव कुटुंबकम का एक संदेश दें।
0: बिल्कुल, हम तो ऐसे ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले देश से हैं जो पूरे के पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और कहीं ना कहीं देखो, हमारा जो हमारी संस्कृति है वो ये कहती है कि हम उस संस्कृति से आए हैं जो वनस्पतियों, औषधियों, जमीन, आसमान, अंतरिक्ष को भी शांति प्रदान करती है, उसकी शांति की कामना करती है।
1: बिल्कुल सही।
0: और ऐसे में जब हम निर्जीवों के भी शांति की कामना करते हैं, तो भाई हम सब जो है आपस में पूरे विश्व के लोग, उनकी तो शांति की कामना सबसे पहले बनती है। और आज ऐसा ही एक दिन है, बहुत ही खास दिन है आज।
1: आज इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीसमेकर्स, यानी कि उन लोगों का जो शांति रक्षक कहे जाते हैं, आज उनका दिन है और उनको याद करने का दिन है।
0: एक ऐसा दिन जिसको हम इसलिए याद करते हैं या जिसको हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम उन लोगों को याद कर सकें जिन्होंने शांति कायम रखने में एक महती भूमिका निभाई है, है ना गौरव?
1: बिल्कुल सही।
0: आज का दिन याद क्यों करते हैं, अगर हम इस बात पर आएं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जान लेना कि 1948 में फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र में जो पहला एक शांति रक्षा मिशन बनाया गया था, उसकी स्थापना के लिए हम आज का दिन याद करते हैं। और 2026 में ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि आज के दिन हम पीस कीपर्स को डेडिकेट करेंगे।
1: जी बिल्कुल सही है। और अपने श्रोताओं से भी हम शेयर करते हैं और कहते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस मेकर्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि यूएन शांति रक्षकों, वर्दीधारी नागरिक, सैन्य और पुलिस कर्मियों के प्रोफेशन

0: डेडिकेशन और साहस को श्रद्धांजलि दी जा सके और सभी नागरिकों की रक्षा के लिए मिलकर ये सभी काम करते हैं।
1: अच्छा, आने वाले जून में ना 5 तारीख को हालांकि पर्यावरण दिवस होता है, लेकिन उस दिन एक समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें उन शहीदों को सम्मानित किया जाएगा जो किसी ना किसी रूप से शांति को कायम रखने में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और उसको निभाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। उन्हें वहां पर सम्मानित भी किया जाएगा, याद भी किया जाएगा और एक मेडल है, एक पदक है जिसका नाम है डैग हैमर स्कजोल्ड, तो इस पदक को उन्हें प्रदान किया जाएगा।
0: बिल्कुल सही है और वो डिजर्व भी करते हैं, बिकॉज है क्या कि जहाँ पूरा देश ये चाहता है कि भाई हम एक दूसरे पे कब्जा कर लें या ये चीज़ हमारी हो जाए, वहीं जो है ये इन शांति रक्षकों की वजह से ही ये पूरी दुनिया कायम है, जिन्होंने हमेशा अमन चैन और मानवता को ही जो है प्रायोरिटी दी है।
1: और हमारा जो भारत है ना वो विश्व में सबसे ज्यादा शांति प्रिय देशों में एक है और इसलिए ये सहयोगी के रूप में भी सबसे आगे आता है, ये शांति योगदान में सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा इन्होंने अपने सैनिकों को भेजा है
0: जी, जब भी जरूरत पड़ी है और देशों को हमारी, हमने हमेशा जो है उनका साथ दिया है, चाहे वो श्रीलंका हो या इसराइल, ईरान। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एक वॉर के दौरान जो है ईरान का शिप जो है वो श्रिंक हुआ था, हेल्प के लिए भी हमारे इंडिया से जो है सैनिक गए थे।
1: और यही कारण है कि 2008 में हमारे हिंदुस्तान को शांति का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था, क्योंकि हर संघर्ष ग्रस्त देश के लिए हमेशा ये सहयोगी के रूप में खड़ा रहा है। और यहाँ पर बात यह है कि शांति स्थापना में जो मदद करने के साथ साथ यहाँ पर जो मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा का भी काम किया जाता है। और इसके सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 तरह से काम करता है, एक तो सहमति, दूसरी निष्पक्षता और तीसरी है आत्मरक्षा।
0: बिल्कुल सही है।
1: तो इस तरीके से जब हम इन तीनों चीजों के साथ कनेक्ट होते हैं, इनको मिलकर काम करते हैं, तब हम किसी भी देश के लिए, किसी भी जगह के लिए या यूं कहें कि पूरे विश्व के लिए शांति कायम कर सकते हैं, शांति के अग्रदूत बनते हैं।
0: उनका लक्ष्य सिर्फ ये और सिर्फ इतना ही होता है कि इंसानियत को हम कितना ज्यादा जो है पनपने दें, उन्हें आगे बढ़ने दें और उन्हें शांति की तरफ ले जा सके।
1: बिल्कुल। और एक ना गीत मुझे एकदम से ऐसे ही याद आया, जैसे कि मेहंदी होती है ना,
0: हाँ जी,
1: वो कभी भी ये नहीं सोचती है कि किसके हाथ पर जा रही है।
0: बिल्कुल सही है, वो अपना काम करती है।
1: मेहंदी जब हम पीसते हैं तो उसके हाथों को भी उतना ही रंगती है जितना कि जिसके हाथों पर मेहंदी डिजाइन लगाई जाती है।
0: क्या खूबसूरत बात
1: कर रंगती है। तो जब वो कभी एक पौधा है और कभी भेदभाव नहीं सोचता है, तो हम तो इंसान है, हमारे पास समझ है, हमारे पास बुद्धि है, कौशल है, तो हमें तो इन सारी चीजों में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए, हमें तो हमेशा अमन और शांति और चैन की ओर अग्रसर रहना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो गीत है ना हिना और मेहंदी से रिलेटेड यहाँ पर सुना दिया जाए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल रंजा जी।

और दोस्तों बातों और गीतों को देते हैं यहाँ पर एक छोटा सा विराम, क्योंकि समय हो गया है एक बहुत ही सार्थक और सुंदर सा संदेश सुनने का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम नवा, और हम नवा में आज मेरे साथ हैं RJ गौरव।
5: तो दोस्तों, हम दोनों ही आपके साथ हैं आज के सफर में प्रोग्राम के हम नवा में।
6: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो।

0: अच्छा गौरव, ये जो हमारा रेडियो है ना, ये एक ऐसा मीडियम है कि जिस पर हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, देखते भी हैं।
1: रियली?
0: बताओ तो कैसे?
1: ये आप ही एक्सप्लेन करें।
0: भाई जब हम बोलते हैं ना किसी भी चीज के बारे में बताते हैं, तो हमारे जो श्रोता मित्र हैं वो उसको सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो अपने हिसाब से उसको इमेजिन करते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं।
1: तो आप इमेजिनेशन पावर की बात कर रहे हैं। हम जो आपको सोचने के लिए देते हैं, आप उससे एक ही चीज को कई रूपों में देख सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप अपने तरीके से, अपने भाव के तरह से उस पिक्चर को क्रिएट करते हैं। और ये जो पावर है ना, ये सिर्फ हमारे रेडियो में है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: और रेडियो का दूसरा नाम अगर हम कहें तो वो है हमारी प्यारी आकाशवाणी, हमारी हमारा पहला प्यार है ना।
1: बिल्कुल सही है सर।
0: तो भाई आकाशवाणी जो है वो अपने 90 सुनहरे वर्ष पूरे कर रहा है और हम सभी उसका उत्सव मना रहे हैं। तो ये जो गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा रही है, उसमें आकाशवाणी ने हम सभी के दिल में अपनी जगह बना ली है
1: और हमेशा बनाए रखेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हम सभी जानते हैं गौरव के रेडियो सिर्फ सूचना प्रसारण का ही काम नहीं करता है, बल्कि वो मनोरंजन का भी काम करता है। और वो एक ऐसा एहसास है जो हम सबको हमारे दिलों में बसा हुआ है और हम सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है।
1: देखिए जिस तरह से हम कहते हैं कि देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, तो विविध का मतलब है इसमें विविध तरह की चीजें हैं। हम आपको एंटरटेन भी करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, उनके बारे में बताते हैं और बहुत ऐसी जानकारियां जो शायद ढूंढने से मिलती हूँ वो आप तक पहुँचती हैं।
0: हाँ बिल्कुल। अब ये संस्कृति का संवाहक तो है ही, साथ ही साथ ये जो है साहित्य का भी एक ना यूं कहे कि एक लाइव मंच देता है।
1: बिल्कुल सही बात।
0: और जब इस रूप में वो आता है तो वो कहलाता है रूपक। और ये जो खूबसूरत यात्रा है ना, ये रूपक विधा से ही पूरी होती है, क्योंकि रूपक ने एक अलग पहचान बनाई है इसमें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रूपक मतलब, बहुत सारे साथी हमारे नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये रूपक क्या है। बड़ा खूबसूरत वर्ड है, इसका मतलब ये है, अगर हम शाब्दिक उसमें जाएं तो इसको कहते हैं कि नाटक। और नाटक एक ऐसा नाटक जो मूलतः कई सारे साउंड्स के साथ खेलता है, कई सारे संवाद के साथ खेलता है, कई सारे प्रभाव के साथ खेलता है, और उसके बाद जो निकल कर आता है वो होता है एक दृश्य, जिसे नाटक के रूप में आप जानते हैं। और जब दृश्य माध्यमों का विस्तार जब हमारे यहाँ सीमित था, हमारे यहाँ टेलीविजन नहीं था, हमारे पास बड़ा स्क्रीन नहीं था, तब हम क्या सुनते थे?
1: रेडियो।
0: रेडियो, और रेडियो को सुनकर ही अपने दृश्यों को बनाया करते थे। उस समय बहुत सारे नाटक, उस समय क्यों, अभी भी हवा महल जो है मुझे लगता है श्रोताओं का सबसे फेवरेट प्रोग्राम है।
1: जी हाँ, बहुत सारे नाटक शुरू हुए और बहुत सारे प्रोग्राम्स अब आज भी हैं जो हमारे श्रोता बड़े ही चाव से उसे सुनते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं और अपने दिलों में आज तक उन सबको बसा के रखा हुआ है।
0: हाँ, तो और नाटक में क्योंकि आकाशवाणी में हम उन सारे विषयों को लेते हैं, समसामयिक विषयों को लेते हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो उन्हें जागरूक करने का तो काम करते ही करते हैं, साथ ही साथ उनका बहुत ही स्वस्थ मनोरंजन भी करते हैं। अब प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास हवा महल है जो आज भी हम श्रोताओं का और हमारा भी बड़ा ही फेवरेट प्रोग्राम है। इसके अलावा नाट्य तरंग विविध भारती से जाता है, गीतों भरी कहानी भी एक रूपक का ही रूप है,
1: संगीत सरिता है जो अब तक जो है राग अनुराग वगैरह लेकर।
0: एग्जैक्टली, ये एक जानकारी बढ़ाता है संगीत का। हालांकि नाटक तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आपका ज्ञान तो करता ही करता है मनोरंजन के साथ। और स्टोरी टेलिंग भी एक तरह से अगर हम देखें ना गौरव, ये नाटक का ही एक रूप है, क्योंकि आप जब स्टोरी सुना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्टोरी में, स्टोरी को समझ रहे होते हैं और दृश्यों को बना रहे होते हैं, तो हम एक फिल्म को साथ का साथ देखते जाते हैं स्टोरी टेलिंग के रूप में, तो ये भी एक नाटक का रूप है। तो बड़े सारे प्रोग्राम्स आकाशवाणी ने दिए हैं जिसमें रंग पाठ भी बहुत रहे हैं, रंग मंच का एक हिस्सा है ये, तो आपको बहुत ही सुंदर मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नाटक हमेशा से आपको देखने को मिलते रहे हैं।
1: बिल्कुल सही है। कभी हास्य, कभी श्रृंगार, कभी वीर और कभी भावनाओं से ओतप्रोत ये नाटक आप विविध भारती के थ्रू हमेशा सुनते रहेंगे।
0: अच्छा, रूपक का एक मतलब और भी होता है
1: जी,
0: अलंकार पढ़ा है, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होंगे वो जानते हैं होंगे
1: कि तो
0: रूपक
1: सोच
0: एक अलंकार है।
1: जी हां जी हां जी।
0: और रूपक अलंकार का मतलब ये होता है ना कि जब आप तुलना करते हैं किसी की और तुलना करने वाली वस्तु में और जिसकी तुलना की जा रही है उसमें कोई भेद नहीं रहता, जैसा एक जैसा हो जाता है, तो उसको कहते हैं रूपक, है ना। तो यहाँ पर एक गीत जो है मैंने शेड्यूल किया है, ये भी कुछ ऐसा ही है जो आपको थोड़ा थोड़ा सा रूपक वाला फील कराएगा।
1: तो सुनवाइए ना
0: जी। बिल्कुल।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सभी श्रोताओं के साथ हम सब सुन रहे हैं प्रोग्राम हम नवा। तो रंजना जी, ये इस प्रोग्राम में आप गाने बहुत ही अच्छे सिलेक्ट कर रहे हैं, और हालांकि जैसा कि हमारा जो प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है और अब समय आ गया है कि हम हमारा जो तेजस्विनी सेगमेंट है उसके बारे में बात करें, तो आज हमारे पास जो है बहुत ही नामचीन नाम है जिसके बारे में आप बताएंगे।
1: हाँ, नामचीन नाम है और साथ ही साथ गौरव की बात ये है, गौरव
0: जी
1: कि ये जो नाम है हमारे अपने शहर का है, कानपुर का है, ये हमारे शहर में पला बड़ा है, इसने जन्म लिया है। हालांकि ये नोएडा में एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करती थी और उसको छोड़कर ये कानपुर वापस आई क्योंकि ये दिव्यांग जनों के लिए कुछ बेहतर करना चाहती थी।
0: इस सोच के लिए सलाम, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर हम एक उम्र के बाद अपने बारे में ही सोचते हैं और ये लगता है कि यार अपनी ही जिंदगी सेटल हो जाए बहुत है, बट वहां से निकल कर अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो वाकई इस सोच को हम बार बार सलाम करेंगे।
1: और हम जिन्हें सलाम कर रहे हैं उनका नाम है मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपना दर्द तो देखा ही देखा, इसके साथ ही साथ उनका भी दर्द महसूस किया जो आपसे कुछ कह नहीं पाते, आपको समझा नहीं पाते। कई बार उनके जो बात है वो उनके अपने मन में ही रह जाती है, लेकिन उनके जो शब्द हैं उनके पास आवाज़ नहीं है, उनके पास शब्द नहीं है, वो आपसे कह नहीं पाते हैं। तो इस तरह के बच्चों के साथ वो काम करती हैं। मैं यहाँ पर मूक और बधिर बच्चों की बात कर रही हूँ। वो उनको शिक्षित भी करती हैं, उन्हें साइन लैंग्वेज भी सिखाती हैं और उसके साथ साथ उनको इस तरह से ट्रेन करती हैं कि आने वाले समय में वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही एफर्ट, मतलब एफर्टलेस सारी चीजें हैं। और जिस तरह से लोग इन सब के बारे में सोचते हैं ना, उसके लिए तो लगता है कि भाई हमें भी जो है कुछ ना कुछ काम समाज के लिए करते रहना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि लोग सिर्फ भागम भाग में ही हैं और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान हटता जा रहा है। और अब ऐसे में अगर मनप्रीत कौर जी ने ये कदम उठाया है तो वो वाकई प्रशंसनीय है।
1: अच्छा, कभी भी जब हम बात करते हैं ना किसी दिव्यांग व्यक्ति की, तो हमें उसके साथ सहानुभूति हो जाती है ना, जबकि सच्चाई ये है कि उस व्यक्ति को हमारी सहानुभूति, हमारे सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहीं ना कहीं हमारे साथ की आवश्यकता।
0: बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
1: और ये जो साथ है ना वो मनप्रीत कौर ने दिया है,
0: साथ से ज्यादा जो है जरूरी है हमारा जो है हमारे इमोशंस उनके लिए और हमारा प्यार उनके लिए, हमें उन्हें ये फील कराना होता है कि हमारा सपोर्ट उनके साथ हमेशा से।
1: एग्जैक्टली, अगर एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता है ना तो भाई एक दिव्यांग व्यक्ति जो है वो भी ड्राइव कर सकता है, कार चला सकता है। और ऐसा ही कर दिखाया मनप्रीत ने, क्योंकि उन्होंने पहली बार कानपुर में DL बनवाया दिव्यांगों के लिए।
0: ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।
1: बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कानपुर के लिए कि कानपुर में ऐसे ऐसे होनहार व्यक्तित्व हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और उनके इस तरह के काम करने के लिए जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने भी उन्हें नोटिस किया और उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें स्टेट अवार्ड भी मिला है, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार।
0: क्या बात है, और ऐसी हस्तियों को तो शत शत नमन, और हम प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि उनका भी आशीर्वाद उन पे बना रहे और इसी तरह के कामों में वो हमेशा आगे बढ़ते रहे।
1: अच्छा, हम बात कर रहे हैं डेफ और डम बच्चों की ना, तो एक फिल्म आई थी बड़ी ही खूबसूरत सी, फिल्म का नाम ही था खामोशी, क्योंकि उसके जो नायक थे वो कहीं ना कहीं खामोश थे, ना वो सुन पाते थे और ना ही बोल पाते थे।
0: किरदार उन्होंने निभाया था, और आप बात कर रहे हैं नाना पाटेकर।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सभी जानते होंगे कि जब इस फिल्म की बात चलती है खामोशी की तो सभी पहचान जाते हैं कि उसमें कौन कौन कलाकार थे। और सबसे अच्छी बात जो फिल्म में दिखाई गई वो ये कि इस तरह के पेरेंट्स ने अपने बच्चे की परवरिश बहुत ही खूबसूरती के साथ की, उसको उसका सपोर्ट बने और अपनी बेटी को जो आवाज से महरूम थे उन्होंने अपनी बेटी को आवाज की दुनिया का एक स्टार बनाया।
0: तो चलिए सुनते हैं इसी बात पर ये गाना।

0: भाई हमारे घरों में भी जो है ना जमीन हिल गई है और आसमान नीचे आ गया है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो चुकी
1: हैं, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है।
0: और गर्मी की छुट्टियों का मतलब ही होता है धूम धड़ाका,
1: ढेर सारी मस्ती
0: और ढेर सारी मस्ती। और बच्चे इतने एनर्जेटिक होते हैं ना गौरव, की अगर उनको कुछ करने को नहीं दिया जाए, कुछ सार्थक और कुछ सही डायरेक्शन में अगर उनको काम करने को नहीं मिलता है तो वो घर में तबाही मचा देते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली उनका ना माइंड सेट है कि अब छुट्टियां हो गए, किसी की नहीं सुननी है,
0: किसी की नहीं सुननी है,
1: सिर्फ अपने मन की करनी है। तो हाँ, दोस्तों बस यही हाल रहता है कि गर्मियों की छुट्टी जो है ना वो एक्चुअली बच्चों के लिए सिर्फ ढेर सारा टाइम ही नहीं बल्कि एहसास भी होना चाहिए, जहां भागदौड़ नहीं, सुकून हो, मोबाइल स्क्रीन नहीं, खेल हो और हर दिन में बचपन के रंग घुलते हो कुछ।
0: हाँ, मुझे ये लगता है कि ठीक है बच्चे शरारती होते हैं, उनको शरारतें करने भी देना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो शरारतें करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, अपने हाथ पैर चलाते हैं, तो उनका एक ना नेचुरल जो डेवलपमेंट है वो होता रहता है।
1: लेकिन जब भी रिकमेंड करते हैं इसके लिए
0: लेकिन जब बच्चे इतने एनर्जेटिक होते हैं ना तो उनकी एनर्जी को हमें सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी हो जाता है। अदरवाइज वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से शायद उनको चोट भी लग सकती है या आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। तो बहुत जरूरी है कि उनको डिसिप्लिन सिखाया जाए। और उसके अलावा अगर उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, तो आप उनको किसी ना किसी

0: स्पोर्ट्स में जरूर डाल दें।
1: बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि कुछ ऐसा करें कि इन छुट्टियों का मजा लेने के साथ साथ ना इनका सदुपयोग भी किया जा सके, और छोटे छोटे प्रयासों से उन पलों को जो है ना इतना मीठा बना दिया जाए जो उनकी जिंदगी में इसकी मिठास खुल जाए। तो सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए ना टाइम टेबल जरूर बनाएं, जैसे कि स्कूल से जो मिलने वाला होमवर्क है ना उसके लिए रोज एक घंटे का टाइम निकालें, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कि उन्हें सिर्फ एक ही घंटा पढ़ना है, तो वो भी मन लगाकर उसको जो है पढ़ेंगे और अपना काम भी करेंगे और साथ ही साथ उनका होमवर्क भी निपट जाएगा, है ना। और इसके बाद वो जैसा भी समय बिताना चाहें, लाइक वो कुछ भी करना चाहें, आप उनको पाबंदी ना कर लगाएं उस पे और उनको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए।
0: हाँ, मुझे लगता है कि बच्चे जो करना चाहते हैं वो उनको आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे किस तरह के हैं, क्या मूड है उनका। अगर बच्चा क्रिएटिव है तो आप उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में डाल सकते हैं, आप उसको DIY आइडियाज दे सकते हैं, उसको खुद भी सोचने के लिए दे सकते हैं कि वो क्या कर सकता है, वो वेस्ट मटेरियल को किस तरह से यूज कर सकता है या वो गार्बेज को किस तरीके से मैनेज कर सकता है। इसके अलावा जो छुट्टियों वक्त होता है वो बड़ा अच्छा वक्त होता है रिश्तों को और दोस्तों को समझने के लिए। तो थोड़ा सा वक्त आप भी निकालें और अपने बच्चों को भी लेकर जाएं, उनके दोस्तों के साथ उन्हें घुमाएं, रिश्तेदारों से मिलवाएं, ताकि उनके साथ रहने की समझ आ सके, उनमें पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझ सके, पारिवारिक प्रेम को वो समझ सके।
1: बिल्कुल सही है रंजन जी, मुझे लगता है कि आज की डेट में ना ये चीज़ थोड़ी सी कहीं ना कहीं छूटती जा रही है, क्योंकि हम जैसे अपना बचपन याद करते हैं तो हमें नानी का घर याद आता था क्योंकि दादा दादी हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन आज का कुछ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इस तरह का है कि हमारे दादा दादी भी हमसे दूर ही रहते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: है ना। तो यही एक मौका होता है कि हम दादा दादी को अपने घर बुला लें या हम दादा दादी से भी अपने मिलकर आएँ, तो जो एक हमारे गार्जियन है ना, हमारे ग्रैंडपा हैं, हमारे ग्रैंडमा हैं या उनके बच्चों के हैं, हम उनसे भी मिलके उन रिश्तों को समझ सकते हैं जो वो जी कर आए।
0: एग्जैक्टली गौरव, हालांकि नाना नानी और दादा दादी तो ऐसे रिश्ते हैं जो हमारे बहुत क्लोज हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो थोड़े से दूर के होते हैं और उनसे हमारा कभी कभी ही आमना सामना होता है। तो बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे जो हैं उन रिश्तों को भी पहचानें, उन चेहरों को भी पहचानें। तो मुझे लगता है कि उनसे भी मिलवाने का ये बहुत सही वक्त रहता है। उसके अलावा जैसे कि तुमने कहा कि टाइम टेबल होना चाहिए, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, बच्चे अपना होमवर्क भी पूरा करें। तो हमारे साथ ना डॉक्टर नवदीप सिंह यादव जुड़े हुए हैं और देखिए वो किस तरह से बता रहे हैं कि बच्चों के टाइम को यूज करना चाहिए।
1: जी,
2: हमारे विचार से गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के समय का सदुपयोग उनके ख्वाहिशों के हिसाब से किया जाए। हर बच्चे में एक चैलेंज होता है, हर बच्चे में कोई ना कोई उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं ये करूं, मैं ये करूं। तो उसको लाइक किसी बच्चे में आर्ट का इंटरेस्ट होता है, किसी में क्राफ्ट का इंटरेस्ट होता है, कोई क्ले से अच्छा क्रिएटिविटी कर लेता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई म्यूज़िक अच्छा। तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चीज़ें मुहैया कराई जाएं और वो उस इंटरेस्ट के हिसाब से अपने वर्क करे, अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी वाली आर्ट बनाए, क्राफ्ट से बनाए। और उसको इसी समय पर जब वो बच्चा अच्छे मूड में हो तो उसको कुछ अच्छी आदतों भी बताई जाए, उसको कुछ संस्कार बताए जाए कि इस तरीके से आपको जीवन में ये करना है, ये अच्छी आदतें हैं, ये बुरी आदतें हैं। साथ ही साथ कोशिश ये की जाए कि बड़ों के साथ में कुछ समय वो बिताए जिससे कि वो अच्छे विचार उसमें ट्रांसफ़र हों। कुछ समय जो मिले, आजकल स्कूलों में होमवर्क भी दिया जाता है, तो जो आधे एक घंटे बच्चों को इस होमवर्क भी कराना चाहिए जिससे उनके स्टडी से रिलेटेड हैबिट भी ना छूटे। तो 1 hour इज एनफ फॉर देम कि 1 or 2 hours वो थोड़ा सा स्टडी करें और उसके साथ साथ अपना दिनचर्या फ्रीली होके जिए। धूप बहुत है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, अंदर ही उनको खाने पीने का ध्यान दिया जाए और उन बच्चों की क्रिएटिविटी और के साथ में उनको वर्क दिया जाए और उनकी ख्वाहिशों को खुशी खुशी पूरी किया जाए।
0: और गौरव, नीरज हेस्टिंग्स हमारे साथ जुड़े हैं, ये कानपुर के एक वरिष्ठ रंग कर्मी हैं और इसके साथ साथ एक शिक्षाविद भी हैं। सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
3: गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए समय का सबसे बड़ा सदुपयोग ये है कि उनको तमाम नाते रिश्तेदारों के घर ले जाया जाए, उनके साथ इंटरेक्ट कराया जाए। आजकल बच्चे सब नाते रिश्तेदारों से दूर हो गए हैं, स्कूल कोचिंग। और अगर गर्मियों की छुट्टियां मिले तो उसमें फिर किसी एक्टिविटी क्लास में, तो बच्चा क्या खाली क्लास अटेंड करने के लिए ही पैदा हुआ है क्या? रिश्ते सीखना, सामाजिकता सीखना, ये क्या लर्निंग नहीं है बच्चे के लिए? या ये

0: ज़्यादा ज़रूरी है। कत्थक सीख के क्या फ़ायदा है अगर बच्चा रिश्ता ही निभाना नहीं जानता।
1: तो भाई नीरज जी तो खासे नाराज हैं जो बच्चों के ऊपर हम एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि स्कूल की छुट्टियां हुई हैं और अब चलो एक्टिविटी क्लास की ओर भागो, तो वो चाहते हैं कि छुट्टियों में बच्चों को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए। अब ऐसे में एकता हमारे साथ जुड़ी है, एकता नाहर दिल्ली से है और ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, उसके साथ ही साथ आर्टिस्ट है और देखिये वो किस तरीके से बताना चाह रही है कि बच्चे कैसे प्रकृति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
2: हाय, मेरा नाम एकता नाहर है। मैं लोगों को प्रोजेक्ट बसेरा के ज़रिए उनके स्पेस को बर्ड फ्रेंडली बनाने में हेल्प करती हूँ। और जहाँ तक हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों की इसमें सबसे अहम भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो बचपन में फिर भी अपने आसपास चिड़िया देखी है, लेकिन 97% स्पैरोस के डिक्लाइन होने के बाद अब बच्चे चिड़िया को बस या तो किताबों में देख रहे हैं या कहानियों में सुन रहे हैं। सो जब तक हमारा वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा ना नेचर से, तो हम उसके लिए उतने एफर्ट्स नहीं ले पाएंगे। तो समर का टाइम है, छुट्टियां हैं, बढ़िया मौका है। तो इस बार जैसे बच्चे पुराने सामान से, पुराना कार्डबोर्ड हो गया या शू बॉक्स हो गया, तो उसके से बर्ड हाउस बना सकते हैं फैमिली की हेल्प से, उसे पेंट कर सकते हैं, सुंदर सुंदर उस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। और फैमिली जैसे कोई बड़े के साथ बैठ के वो अलग अलग तरह के मिलेट्स के बारे में कि कौन सी चिड़िया कौन सा दाना खाती है, तो वो उस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद खुद अपने हाथ से वहाँ पर वो दाना रख सकते हैं, एक अपना छोटा सा एक मिनी कैफे बना सकते हैं, मिनी बर्ड कैफे, एक बालकनी में अपने छोटे से कॉर्नर को, वहां पे जैसे पान टूटे हुए कप या पुराना कोई मिट्टी का बर्तन है, इस तरह के कोई बर्तन है, उसको पेंट कर लिया, उस पे बर्ड्स बना लिए और उसको पानी भर के खुद अपने हाथों से रखा। सो ये उस जगह को अपना छोटा सा कैफे बना लिया। अलग अलग तरह के जो बर्ड्स के साउंड्स हैं तो वो सुन के और फिर उनको कॉपी करके आपस में बच्चे ग्रुप बना के एक बहुत फन गेम खेल सकते हैं कि साउंड को आइडेंटिफाई करना है कौन सा साउंड है। और ऐसे जब बर्ड्स ऐसे वो अपना कैफे बनाएंगे छोटा सा अपनी जगह पे, और उस पे वो बर्ड्स जब आने लग जाएंगी, सो वो डेली जैसे शाम को एक रूटीन बना लिए, जैसे बच्चे शाम में खेलने जा रहे हैं तो उसी तरह से कि इतने थोड़ी सी देर वो बर्ड्स को जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं डेली, वो क्या एक्टिविटी कर रही है, कैसे कर रही है, क्या खा रही है, खेल रही है, तो फिर उसको डेली ऑब्जर्व करते करते उस पर एक छोटी सी प्यारी सी कविता लिख सकते हैं या कहानी लिख सकते हैं। सो बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें बर्ड्स के लिए आगे आ सकते हैं और इस समर में बच्चे बर्ड्स के लिटिल गार्जियन बन सकते हैं।
1: अच्छा गौरव, इतनी सारी बात हो गई है ना बच्चों के धूम धड़ाके की, तो क्यों ना एक ऐसा ही गाना सुन ले जिसमें बच्चों की थोड़ी सी शरारतें शामिल हैं।
3: अरे बहुत जरूरी है, इसके बिना तो प्रोग्राम अधूरा है।
1: बिल्कुल।

0: हाँ भाई बिल्कुल सच है, बच्चे जब शैतानियां करते हैं तो नानी बन ही जाती हैं वो लिम
1: हाँ, फिर वो
0: बच्चियां
1: जाने
0: सर्दी
1: क्या क्या बन
0: की।
1: जाते
0: और अच्छा
1: हैं।
0: छुट्टियों में जब नानी के घर जाते हैं ना, तो हमें वहां पर बड़े तरह तरह के अतरंगे स्वाद भी खाने को मिलते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, और बच्चों की बात हो और उनके लिए कुछ बनाया ना जाए, ये तो थोड़ा उनके साथ नाइंसाफी
0: बिल्कुल
1: होगी।
0: है, तो बताओ गौरव आज
1: तो
0: क्या बनाया जाए।
1: जी बिल्कुल रंजना जी और मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हमारे पास रेसिपी में है मैंगो श्रीखंड, जिसे आम्रखंड भी कहा जाता है, और ये एक मलाईदार स्वादिष्ट और बिना पकाए बनने वाली भारतीय मिठाई है। यानी सबसे पहले तो ये रेसिपी आपकी गैस को गर्मी और खर्च से बचाती है। तो
0: क्या
1: चलिए,
0: बात है, मतलब इसमें गैस की जरूरत
1: जरूरत
0: नहीं
1: नहीं है,
0: पड़ेगी।
1: बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले तो चलिए आपको बता दें कि इसको बनाने के लिए सामग्री क्या क्या लगेगी। तो उसमें लगेगी 2 कप हंग कर्ड यानी कि दही, वो भी बिना पानी का, 1 कप मैंगो प्योरी, आधा कप मैंगो चंक्स, आधा कप पाउडर शुगर, 2 हरी इलायची, 10 से 12 केसर के धागे, वो भी गुनगुने दूध में भिगे हुए, 3 चम्मच बादाम पिस्ता बारीक कटे हुए, और गुलाब की पंखुड़ियां। तो दोस्तों, मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हंग कर्ड निकाल लें और फिर इसमें पाउडर शुगर मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें इलायची पाउडर और दूध में भीगे हुए केसर मिलाएं। अब इसमें कटे हुए मैंगो चंक्स और बारीक कटे बादाम पिस्ता भी मिलाएं। आपका मैंगो श्रीखंड तैयार है, और इसे
0: अरे वाह,
1: ठंडा होने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी बन जाता है ये, तो ठंडा होने के लिए इसको फ्रिज में रख दें, उसके बाद सबको ठंडा ठंडा ही सर्व करें,
0: और ये रेसिपी इतनी इजी है ना कि बच्चे भी इसको बहुत आराम से बना
1: और
0: सकते
1: बहुत
0: हैं,
1: जल्दी बन जाती है।
0: और
1: सबसे
0: हमें
1: अच्छी
0: डर
1: बात
0: भी
1: तो
0: नहीं
1: ये है।
0: लगेगा क्योंकि वो गैस नहीं जला रहे हैं, ये फायरलेस कुकिंग है, और हमें डर भी नहीं लगेगा कि भाई बच्चे कहीं आपके पास ना
1: हाँ
0: जाए।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल
0: अरे
1: सही
0: वाह
1: बात
0: क्या
1: है।
0: बात है, तो भाई इतने मतलब शानदार मीठे स्वाद के बाद अब समय हो गया है आप सभी से विदा
1: विदा
0: लेने
1: लेने
0: का।
1: का। तो दोस्तों, आगे आपके साथ रहेंगे हमारी प्रिय आज रंजना जी, और इस प्रोग्राम से मुझे यानी आज गौरव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: और दोस्तों मैं लेकर आऊंगी आपके लिए प्रोग्राम म्यूजिक आर 3 बजे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि म्यूजिक आर में इस बार सिर्फ गीत नहीं है बल्कि कहानी भी है, और ये कहानी आपको पूरी करनी है मिलकर मेरे साथ। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिएगा 102.2 FM रेनबो कानपुर से हमनवा के लिए। फिलहाल हम यहाँ पर लेते हैं आपसे एक छोटा सा अंतराल, जो दोबारा मिलूंगी आपसे दिन में 3 बजे।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल की स्लैब गिरने की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने जिला प्रशासन को SDRF के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने और घायलों का समुचित इलाज किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों के प्रति चौधरी साहब की प्रतिबद्धता और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनकी स्मृतियों और आदर्शों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अनेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। पूर्वांचल का जौनपुर जिला कैंसर के रेड जोन में आ गया है। यहां पिछले 3 महीने में कैंसर के 284 संदिग्ध मिले हैं। सभी में मुंह के कैंसर के लक्षण हैं। इन सभी के पीछे कारण देशी नशा दोहरा का सेवन है। ये खराब सुपारी से बना वो नशा है जिसके बेचने पर रोक लगी है। फरवरी और मार्च 2026 में जिले के सरकारी अस्पतालों में लगाए 175 शिविरों में 8070 लोगों के मुंह की जांच की गई। इनमें से 284 लोग संदिग्ध पाए गए जिनको जांच के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्रभारी CMO प्रभात सिंह ने प्रशासन से दोहरा की बिक्री पर रोक लगाए जाने की अपील की है। अमरोहा में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने एक बड़े अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 3 गर्भवती महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हसनपुर क्षेत्र में स्थित गांव चक्की मड़ैया सतैड़ा में टीम ने एक मकान पर छापा मारा। टीम ने मौके से अवैध रूप से लिंग परीक्षण कर रहे गिरोह को रंगे हाथों पकड़ा। CMO डॉ योगेंद्र सिंह ने बताया कि दलालों के माध्यम से दिल्ली और हरियाणा की महिलाओं को यहां लाया जाता था। जांच में सामने आया कि भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए 35 हजार रुपए तक मोटी रकम वसूली जा रही थी। मामले में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा और 2036 ओलंपिक के लिए भी आधिकारिक बोली पेश कर चुका है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

जी 12:04 का वक्त और ये वक्त होता है आपके फेवरेट प्रोग्राम का और वो प्रोग्राम है स्वयं सिद्धा, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी दोस्त शिखा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर शुक्रवार स्वयं सिद्धा में हम बात करते हैं ऐसी महिलाओं की जिन्होंने अपने दम पर सक्सेस हासिल की और साथ ही बन गई प्रेरणा का स्रोत औरों के लिए। तो दोस्तों हम बातें शुरू करें, उससे पहले मैं सोच रही प्यारा सा गाना आप तक पहुंचा दूं, तो चलिए एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक आ रहा है, हम सब एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ फिर

0: राइट डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: जी, तो प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना शान की आवाज में, छोटी छोटी तमाशे पानी जैसी बताशे। जी हाँ, इतना बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक आपने सुना। और दोस्तों, हम कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं स्वयं सिद्धा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में उन कामकाजी महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो अपने कार्य के साथ साथ घर को भी एक बहुत ही बेहतर ढंग से सुचारू रूप से संयुक्त करती है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा के उपलक्ष्य पे एक कड़ी आप सुन रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। जिसमें हमारी आकाशवाणी की ही कुछ ऐसी स्वयं सिद्ध महिलाएं हैं, जैसे श्रीमती शारदा लाल जी और श्रीमती नीना श्रीवास्तव जी। तो चलिए, एक कड़ी है जो बची है, आज आप तक आखिरी श्रृंखला है ये पहुंचानी है, और जिसमें बात करी है इन दोनों से ही। जी हाँ, श्रीमती शारदा लाल जी से, श्रीमती नीना श्रीवास्तव जी से ममता उपाध्याय जी ने। तो चलिए सुनते हैं उस श्रृंखला की एक आखिरी कड़ी। तो कुछ यादें और कुछ बातें।
1: आकाशवाणी 90 वर्ष का कारवां। इस सुरमई यात्रा में जुड़े असंख्य कलाकार, वार्ताकार और प्रसारणकर्ता, जिनके पास आकाशवाणी से जुड़ी यादों और बातों का खजाना है, और ये खजाना अनमोल है। अनमोल यादों और बातों को लेकर हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ से जुड़ी हमारी दो वरिष्ठ प्रसारण साथी, श्रीमती शारदा लाल और श्रीमती नीना श्रीवास्तव। आज सुनिए इस बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। सुनिए और आनंद लीजिए। नीना जी, तो आप चलते हैं और कुछ उनके अनुभव खजाने से निकालते हैं, कुछ और मोती हीरे क्या निकालेंगी आप?
2: कंसर्ट की बात बताएं तुम्हें।
1: जी जी जी,
2: वाकई के नैयर साहब, पी माथुर जी के सामने पहले कंसर्ट बहुत होती थी। खुद अपनी बात बताते हैं, और उसमें अनाउंसमेंट के लिए बहुत बार हमी को जाना पड़ता था। तो उसमें ये था कि अब छोटी वाली बात बताते, पहले ये होता था कि भाई आज जाना है अनाउंसमेंट के लिए, अब आज ये साड़ी पहनी, अब हफ्ते में 3 अगर कंसर्ट हो गई या 2 हो गए या महीने में 4-5, तो 4-5 साड़ियां चाहिए। अब शुरू में आया है कहाँ इतनी साड़ियां, आज इनसे मांगो कल। तो हम लोग आपस ही में आशा दी थी, वो अपनी साड़ी कभी देती, आज तुम ये पहन ले।
1: जी जी,
2: तो उस तरह से हम लोग करते थे। और कंसर्ट्स में नैयर साहब के समय में बहुत अच्छी कंसर्ट्स हुई और बहुत ही अच्छा लगता था। अभी तो हम लोग नए स्टूडियो में, उस समय जब हम आए थे तो पुराना स्टूडियो था, वहाँ स्टूडियो नंबर 2, 5 और 1 नंबर स्टूडियो हुआ करता था। 1 नंबर स्टूडियो जो था, तो उसमें ये छोटी मोटी, जैसे अभी कंसर्ट की बात करी इन्होंने, या बिस्मिल्लाह खान साहब की रिकॉर्डिंग, इस तरह की रिकॉर्डिंग्स वहां पर होती थी।
1: जो हम लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल है अब, वो
2: अब जो कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया गया है, जिसे उसमें तख्त पड़ा हुआ था बड़ा सा, 2-4 पड़े होंगे, मतलब स्टेज टाइप का वैसे था, और सामने कालीन और वो सब बिछी रहते थे वहां पर। उस समय मलका पुखराज आई थी, नैयर साहब ने बुलाया था।
1: अभी तो मैं जवान हूँ,
2: अभी तो मैं जवान। मलका पुखराज जी आई थी, और नैयर साहब ने हमसे कहा था कि एक तो वो पवार साहब ने मूर्ति बनाई थी बेगम अख्तर जी की, तो बेगम अख्तर जी की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया था। शाम को उन्होंने कहा, नीना मूर्ति के ऊपर तो कुछ पढ़ना चाहिए। हमने कहा, जी पढ़ना तो चाहिए, तो इसका कवर अब तुम बना के लाओ। फिर हम, और उस समय म्यूजिक पैक्स यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, तो हम दोनों गए हजरतगंज, वहां से कपड़ा खरीद के लाए, रात में बैठ के हमने कवर सिला, सुबह आकर के मूर्ति पे ढका। नया साहब को पसंद आया। फिर जिस समय मलका पुखराज आई थी, क्या बताएं हम ममता, कि मतलब क्या वो थी, उनकी बेटी थी, दामाद थे, इतने खूबसूरत, खूबसूरती की बात तो अलग रख लो, लेकिन जो गाया उन्होंने, और लास्ट में तो फिर एक फरमाइश हुई, पूरा स्टूडियो खचाखच भरा था 1 नंबर, और लास्ट में उनकी कि अभी तो मैं जवान हूँ, उसके बाद जो उन्होंने अभी तो मैं जवान हूँ आज तक हमारे कान में गूंजा।

0: ऐसी ऐसी कंसर्ट होती थी, या तीजन देवी, तीजन देवी जब आई उस समय, जिस समय आकाशवाणी ने उनकी कंसर्ट करी थी तो उस समय अनाउंसमेंट उनका हम ही ने किया था, रविंद्रालय में था वो
1: जी।
0: होटल था आकाशवाणी के पास में, उसी में रुके तो दिन में म्यूजिक पर्सन थे, नीना चलो उनसे डिटेल्स ले लो चल के। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम लोग दीना चढ़ के ऊपर गए, उस समय दीना चढ़ के ऊपर गए थे, समझ सकते हैं आपकी कितनी सिंपल थी वो। तो एक उनके ग्रुप के 6-8 लोग थे उस समय, तो हमने सोचा ये तीजन देवी जी, इनका मतलब क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद जिस समय स्टेज पे अनाउंसमेंट किया और जो वो आई है ममता, मतलब क्या कहें कि आज भी सांस रुक जाती है,
1: वो
0: क्या पंडवानी उन्होंने, और क्या मतलब इतना जबरदस्त वो प्रोग्राम था कि हम कह नहीं सकते।
2: अच्छा
3: दानी ले कहे हे मित्र, आप मन ऐसे ढंग के लड़ाई करा तो जैसे 10 दिन के लड़ाई भी उसको पिता मा लड़के 10,000 राजा ले मार के और विजय संग बजा के।

0: अपनी खुशनसीबी इसको कहेंगे कि बेगम अख्तर जी जो थी उन्होंने लाइव आइटम दिया था, सुबह 8:30 बजे का था, अभी तक हमें चंक याद है वो
1: जी जी।
0: और हम थे, दो नंबर स्टूडियो था जो पुराना वाला हमारे स्टूडियो में, उसमें एक तरफ म्यूजिक का होता था, एक तरफ शाम में प्रोग्राम ग्रामीण चलते थे, उसमें था उनका।
1: आप अभी भी भाव विभोर हो जा रही हैं।
0: अरे
2: ये पहुंच रही
0: आ करके पुराना ड्यूटी रूम जो ऐसे पैर पे पैर रखे बैठी, और मुन्ने खान साहब तबला उनके साथ बजाते थे, गुलाम सबीर कादरी उनके साथ सारंगी बजाते थे, तो वो दोनों खड़े और मुन्ने खान

0: पता नहीं सकते कि कैसे कैसे लोगों से मिले, कैसे कैसे आर्टिस्ट हमने देखे, मतलब कितनी विनम्रता थी, कितने अच्छे थे वो लोग कि क्या ही बताए।
1: कला साहित्य है, संगीत हाँ, है, राजनीति,
0: वैसे ही साहित्य के
1: अंदर लोग यहाँ आते
2: हैं। ममता जी हम लोगों के पास
0: के नैयर का वो याद है विद्या निवास,
2: हाँ, विद्या निवास, अरे वाह
0: कितना खचाखच, यहाँ गैलरी में गद्दे बिछे थे।
2: देखिए विद्या निवास को लेकर के मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि तब मैं रामपुर से आई थी
1: जी।
2: तो बड़े सहम सहम के मैं लखनऊ में कदम रख रही थी, विद्या निवास मिश्र को आना था, बड़ी मतलब मन में उत्सुकता हुई कि उनको देखने की बड़ी इच्छा थी। बहरहाल उस समय नैयर साहब ने बताया कि आप लोग सुनने आइएगा, और नंबर एक स्टूडियो इतना भर गया कि मैं कहीं उसमें जा ही नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से कहीं जगह मिली। बहरहाल उनको देख करके हम लोग इतने क्या अभिभूत हुए कि हम बता नहीं सकते। सिल्क का कुर्ता पहने, जैकेट, बड़ा सा माथे पर टीका, गोरा रंग, पान से रंगे होंठ, अद्भुत उनका व्यक्तित्व। और जब वो बोलने लगे तो हम लोग स्तब्ध सुनते रहे।
0: और पहले समय का बंधन नहीं होता, जब बोल रहे हैं जितना ही वो तो उतना बाद में आप वो देखे जाएंगे, चाहे
2: उसको एडजस्ट करते रहिए,
0: एडिट करिए, चाहे आप जिसको कहते हैं ना धारावाहिक रूप में प्रसारित करिए, चाहे कुछ भी करिए,
1: हाँ।
0: तो इस तरह से होते थे प्रोग्राम। और इतने रसिक श्रोता भी थे, इतने साहित्य प्रेमी श्रोता भी थे कि सब उसमें आते रहते थे
1: जी।
0: और ममता एक बात और बताएं, अब शायद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बोल रहे लेकिन फिर भी
1: बिल्कुल बिल्कुल अभी बहुत
0: इसलिए बोल रहे हैं कि सुनने वाले भी कहेंगे, तुम भी कहोगे, शायद जो यहाँ पर है वो भी कहेंगे पुराने स्टूडियो ही कर रहे हैं अभी तक उसी से जुड़ी हुई। जबकि जब नया स्टूडियो ये बना तो सबसे पहले जब यहाँ की टेस्टिंग हुई तो यहाँ भेजे गए कि भाई जाओ वहां से अनाउंसर्स बूथ से जा करके प्रसारण करो
1: जी जी।
0: तो यहाँ से प्रसारण किया, फिर आया इसका इनॉग्रेशन डेट कि इसका इनॉग्रेशन किया था उस समय प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, 26 नवंबर 1978 की बात है
1: जी जी।
0: वो प्रोग्राम जो था ऑडियंस के सामने था, अनाउंसमेंट हमें करना था, और उस समय के जो डीजी थे चटर्जी साहब हुआ करते थे वो आए थे, और वाधवा साहब थे वो डीडीजी थे। सुबह से उन्होंने इतनी रिहर्सल करवाई थी कि शाम तक जब एंड परफॉर्मेंस का टाइम था उस समय तक ये लगा, फिर बाद में उनका अब जाओ चेंज करो और फिर आओ साड़ी वाड़ी पहन के। पहले तो वही बात है ना कि लिमिटेड चीज होती थी, अब देखा तो जो साड़ी हमने पहनी वो तो पीछे वाले रंग से मिल रही थी स्टेज के क्योंकि मैरून सी हमारी भी साड़ी थी और मैरून सा पीछे का पर्दा भी था। फिर अरे क्या, फिर जल्दी से घर से ब्लू कलर की साड़ी मंगाई, फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के जब आए प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद आ करके हम ड्यूटी रूम में बैठ गए दोनों पैर ऊपर उठा करके क्योंकि मैं पैरों में इतना दर्द। तब तक के माथुर जी थे उस समय, वो अंदर आए ड्यूटी रूम में, उनका वाह बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, कल इसकी छुट्टी करो कल इसकी छुट्टी करो, ये रेस्ट करेगी तो बहुत मेहनत करी
2: समझते थे
0: वरना तो रिहर्सल के लिए भी आजकल जरा सी इतनी सी होती तो पूरा पूरा दिन दे दिया जाता है रिहर्सल के लिए, पहले नहीं मिलता था। ड्यूटी तो आप कर ही रहे हो अपनी
1: ड्यूटी
0: के साथ करना,
2: आकाशवाणी में बोलना ही एक काम नहीं है, आकाशवाणी से जो कुछ हम बोलते हैं उसमें हमारी संवेदना जुड़ी होती है, वो संवेदना जो होती है
0: वो बहुत
2: महत्वपूर्ण है। जैसे इन्होंने कहा नीना जी ने कि अगले दिन उनको छुट्टी दे दो, ये कोई छोटी बात नहीं है,
0: बहुत बड़ी चीज होती है।
2: अगर संवेदना से रहित हो जाए तो जीवन बड़ा व्यर्थ हो जाए
1: जी जी। और रेडियो में जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत संवेदनशील होते हैं क्योंकि आप यदि भावनाओं के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जो आप
2: कार्यक्रम कैसे करेंगे,
1: और जो बोल रहे होते हैं उसमें आपकी भावनाएं जुड़ी तभी वो सजीव शब्द बनते हैं।

0: एक
1: शब्द
0: बात
1: है
0: और, ममता जी मैं ज्यादा तो नहीं
1: जी।
0: हूं।
1: देखिए अभी अभी नीना जी ने कहा था कि जब पहले बड़े महानुभाव आते थे जब वो बोलते थे तो उनको रोका नहीं जाता था, उसका
0: नहीं
1: धारावाहिक बना दिया जाता था या उसको किश्तों में बजाया
0: इसीलिए
1: जाता
0: आप
1: था।
0: हम लोगों को रोक नहीं रही
1: मैं आपकी बात को
0: हैं।
1: किश्तों में बजाऊंगी, आप बोलती रहिए।
2: देखिए काम की बातें चुन लेना
1: ये सब बातें काम की है।
0: पिक्चर में अगर हॉरर सीन ना हो तो
1: जी,
0: पिक्चर बेकार। मानती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमारे काम में भी हॉरर सीन आए हैं।
1: अच्छा।
0: मैं कार्यक्रम करती थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के, तो क्षेत्र में जाकर के लोगों से बातचीत करके रिकॉर्डिंग करके लाना, ये तो आपको मालूम ही है। एक बार मैं लखीमपुर गई, काम हो गया, एक बस मुझे मिली जो मुझे सीतापुर तक ले आई। और हमने सोचा सीतापुर से तमाम बसें जाती हैं, हम चले जाएंगे घर। हम सीतापुर आ गए, शाम हो गई, अंधेरा हो गया और अंधेरा हो गया, कोई बस नहीं। उसके बाद एक सज्जन वहीं टहल रहे थे, सिगरेट हाथ में दबाए। हम अपने मन में सोच रहे थे आज तो शारदा तुम गए काम से। खैर बहरहाल पान वाला जो बैठा था अपनी गुमटी में वो हमको देख रहा था, वो भी पता नहीं क्या सोच रहा था। बहरहाल हमने पान वाले से पूछा कि भैया आप कोई बस नहीं आ रही बहुत देर से? तो उसने कहा दीदी यहाँ अब कोई बस नहीं आएगी, अब सब बसें यहाँ से निकल गई हैं। तो उन सज्जन ने आके हमसे कहा कि देखिए मैं आपकी वजह से यहाँ टहल रहा हूँ, आप अगर उचित समझें, अगर आपको ये सही लगे तो मेरे साथ चलिए, पास में मेरे एक मित्र का घर है, आप वहां रुकिए, सवेरे आप चली जाइएगा। अब आप सोचिए कि मेरी मना स्थिति क्या होगी।
1: हाँ।
0: क्या सोचा होगा मैंने? मैंने कहा आप तो लगता है ये पिक्चर का जबरदस्त सीन आ रहा। बहरहाल
1: आपके मन में बहुत सारी
0: बड़े सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल हमने कहा हमें अब विश्वास तो करना पड़ेगा इनके ऊपर। उनके साथ हम गए, दरवाजे पर बड़ा बड़ा लिखा था घंटी मत बजाइए यहाँ दिल का मरीज रहता है। अब आप सोचिए
2: अब तो और भी चाहते जी की हालत बेकार।
0: अब और मेरी हालत
1: उनकी दिल की अंदर घंटी बज रही होगी कि अब होगा।
0: बहरहाल मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल एक सज्जन ने दरवाजा खोला, उनको उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप वहां से आएंगे, इनकी बस कोई उनको मिल नहीं रही है। तो उन्होंने कहा आप आइए अंदर आइए। इतनी देर में उनकी वाइफ भी आ गई और 1:30 बजे रात में हमने उनके साथ खिचड़ी खाई और सवेरे 6 बजे की बस हमने पकड़ के लखनऊ आके दम लिया। अब आप सोचिए पूरी घटनाक्रम में मेरा
2: शारदा जी के ये एक्सपीरियंसेस जो है ना बहुत जबरदस्त हैं, क्योंकि ये फील्ड में बहुत जाती थी।
0: बहुत जी, जी। लोग कहते थे कि ये महिला अपने घर में कब रहती है।
1: मतलब रेडियो का प्रसारण सिर्फ माइक्रोफोन के सामने ही नहीं होता है, सिर्फ स्टूडियोज में ही नहीं होता है, उसके पीछे जो फील्ड का वर्क है।
2: स्टूडियो तो सबसे बाद में आता है, सीधी इस बात जहाँ पर हम है वो बाद में आता है। हमारे पास तो जिसको कहते हैं ना पका पकाया सामान आ जाता है, बस वो हमें आप लोगों को परोस देना है।
1: हाँ।
2: ये काम हमारा होता है और इनका काम सारी जगह से क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको बटोर के लेकर के आना होता है, फिर उसको एक कॉम्पैक्ट तैयार करके देना होता है।
0: और उस समय ममता जी हमने जो महिलाओं की स्थिति देखी वो देख करके मैं दंग रह गई। गांव में महिलाएं कितनी निरीह, स्वास्थ्य से बिल्कुल एकदम लाचार, कुछ भी नहीं खाने को उनके पास, किसी को कोई फिक्र नहीं, वो अपना जीवन कैसा जी रही हैं। ऐसी महिलाओं से हमने बात की, उन्होंने कहा रेडियो में हमारा अगर नाम अगर हमारा पति सुन लेगा तो हमसे कहेगा कि तुम जाओ अपने महके चली जाओ, हमारे साथ मत रहो, आप हमारा नाम मत बताइएगा। ऐसे ऐसे लोग।
1: हाँ, और वो समय आपने देखा और उन जो महिलाओं की स्थिति रही होगी, उनका जो दुख रहा होगा,
0: बहुत दयनीय,
1: आपने अपने कार्यक्रमों में लाए होंगे आप, है ना, और वो लोगों तक जब श्रोताओं तक पहुंचा होगा तभी वो कार्यक्रम जो है वो उनके दिल को भी छुआ होगा, क्योंकि उस कार्यक्रम में आपको भी छुआ था तभी आपने उसे बनाया। अब जो बातचीत हम आगे करेंगे आप दोनों से, उससे पहले शारदा जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: ममता जी दीदार का आप कोई भी गाना बजा दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तमाम गाने ही गाने हमारे आसपास हैं।
1: तो हम सुनते हैं गीत को, उसके बाद फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: सखियों बचपन के दिन तो यूं भी भुलाए नहीं भूलते, और बचपन या उसके बाद की उम्र में तो बचपन और भी याद आता है। बचपन से याद आया कि अक्सर हमें घर में हमारे पुकारू नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि गोलू, रोलू, पिंकी, टिंकी, और आकाशवाणी में भी स्टॉक कैरेक्टर के नाम रखे जाने की परंपरा रही है। तो शारदा जी और रीना जी, ये बताइए कि आप लोग इस समय में क्या इस तरह के नाम रखे जाते रहे हैं?
1: पहले तो यही होता था ना, भौजी है, ये वो है, वो उस तरह से सब
0: एक पात्र का नाम हुआ पात्र का नाम। आप क्या बनती थी शारदा जी?
2: मैं तो सिर्फ अपने नाम से ही जानी जाती थी।
1: शारदा जी तो अपने नाम, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी थी वो भानुमती भौजी थी, या अम्बेश्वरी श्रीवास्तव थी वो अम्बे जी थी, पनघट का नाम होता था अम्बे भौजी, नंदम बनते थे शुरू में।
0: अच्छा,
1: इस तरह से आपस में ही सबका हो जाता था कि वो भौजी है, हम नंद है, वो सास है सुमित्रा जी, उस तरह से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम।
2: मैं रेडियो में आई हूँ उससे पहले ही परंपरा थी कि लोग अपना नाम नहीं बताते थे, उसके बाद नाम बताने शुरू हो गए और लोग जानने लगे इनका नाम ये है।
1: जैसे कृष्णा मिश्रा जी दाई बहरे बाबा रमई काका, हाँ, थे
0: जी,
1: उनका चंद्रभूषण त्रिवेदी नाम था ना,
0: जी,
1: तो उनका नाम नहीं, वो रमई काका,
0: हाँ,
1: बहरे बाबा ये था उनका
0: जी।
1: और वैसे ही दाई का, वैसे ही वो अर्जुन लाल जी,
2: अर्जुन लाल जी थे।
1: और
2: ये तो हम लोगों से भी बहुत पुराने समय के लोग हैं,
1: लेकिन आए तो थे ना, देखा तो
2: हमने, देखा
1: सबसे, मिले
2: मिले उनसे, उनके कार्यक्रम सुने हम लोग। जैसे दाई ने जोर से कहा तो वो दाई से काका पलट के कहते कि अरे इतनी जोर से कहे बोलती हो, कहा हम इतने बहरे हैं
0: जी, बहरे बाबा का
1: नहीं, हमने तो मतलब लाइव उनके आइटम्स ऑन ड्यूटी रहे हैं
0: जी जी जी।
1: लोकायतन में एक दिन फिक्स था उनका, बहरे बाबा का आने का महीने में
0: जी।
1: ममता पुरानी और नए स्टूडियो की बात कर ली, चलते चलते इतना जरूर कहेंगे कि नए स्टूडियो में आने के बाद, फिर उसके बाद हम गए FM स्टूडियो।
0: अच्छा,
1: इसी में बना, बहुत पहले वो लाइब्रेरी हम लोगों की हुआ करती थी, वहाँ पर FM स्टूडियो बना और FM का प्रसारण शुरू हुआ लखनऊ से
0: जी।
1: और उसमें भी अनाउंसर हम ही थे, हम और हमारे साथ में दिलीप थे, हम ही दोनों की ड्यूटी उसमें शुरुआत से
0: जी।
1: तो ओपनिंग अनाउंसमेंट FM का हम ही ने किया था, और जो उसका उद्घाटन समारोह हुआ था वो प्रेक्षागृह में हुआ था
0: जी।
1: गन्ना संस्थान था,
0: FM रेनबो की बात कर रही हैं।
1: हाँ, और ड्यूटी हम ही लोग करते थे पूरा सुबह की, हमने करी।

0: शाम को दिलीप ने करी, दो ही अनाउंसर थे उसमें, हम ही लोगों ने ट्रेनिंग
1: शुरुआत हुई थी उसकी,
0: उसकी शुरुआत
2: तो उसका जो जैसे आज एफएम रेनबो और जो प्राइमरी चैनल के कार्यक्रम है उनके थोड़ा स्वरूप में चेंज होता है, थोड़ा सा बोलने के ढंग में भी बदलाव रहता है, तो क्या आप लोग भी कुछ अलग ढंग से एफएम के प्रोग्राम पेश करते थे?
0: या उस समय तो स्क्रिप्टेड ही होता था, हमें अभी तक याद है कि एफएम इनॉग्रेशन हुआ शाम को हुआ, फिर सुबह हमारी ड्यूटी थी, पहले भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम था तो सुबह सुबह ले शिव का नाम वाला भजन हमने बजाया था कंपेयरिंग के साथ, पूरी कंपेयरिंग के साथ, आधे घंटे का एक घंटे का था कुछ, अर्चना नाम था उसका कार्यक्रम का।
2: जी जी,
0: तो इस तरह से होते थे और स्टाफ के ही लोग कर रहे थे शुरू में,
2: अच्छा।
0: ये कैजुअल अनाउंसर बाद में सब तैयार
2: आरजेज आए वो बाद में आए। अभी श्रोताओं से कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला हो, या कई बार लोग कहते थे कि वो बाहर अनाउंसर निकलते थे तो रात को भी श्रोता जो होते थे वो बाहर मिल जाते थे।
0: इसमें एक बार बताएं तुम्हें, एक बार हम गए थे, अनाउंसमेंट था आकाशवाणी का नहीं था वो बाहर का था, लच्छू महाराज जी का
2: जी
0: बहराइच में, उस समय गीत सुमन प्रोग्राम होता था और वो गीत सुमन प्रोग्राम हम करते थे, उसकी लिसनिंग अच्छी थी,
2: तारीफ
0: कंपेयरिंग के साथ पूरा करते थे, गाने बजाते थे, फिल्मी गानों पर आधारित होते थे ये, तो वहाँ पर बहराइच में क्या हुआ, कथक डांस का प्रोग्राम था और भी बहुत कुछ थे, तो एकदम बड़ा शोर मचा, किसी को पता लग गया कि गीत सुमन वाली नीना श्रीवास्तव
2: अच्छा
0: बोल रही, अब वो अनाउंसर को सामने लाओ, नया नया वक्त था वो, बताया ना 72-74 76 वाला समय था
2: जी,
0: वो
2: जी,
0: तो डर भी लगा, अरे बाप रे इतनी सारी भीड़ और इतना तेज शोर, तो उस समय जो डीएम थे वहाँ पे शायद सेठी साहब थे, शायद नाम इतना कंफर्म नहीं है लेकिन जहां तक हमें याद है सेठी जी थे, उन्होंने कहा एक बार प्लीज आप अपने अनाउंसर को पर्दे के बाहर ले आए, और हम कहाँ आने वाले, वो पीछे स्टेज से निकल के गाड़ी में बैठे और अपने जहाँ पे रुके थे वहाँ,
2: मतलब वो क्रेज जो आज लोगों के मन में फिल्मी कलाकारों के लिए होता था
3: उस समय, हम लोगों के
0: पहले उद्घोषकों के लिए, अनाउंसर्स के लिए या रेडियो से जुड़े लोगों के लिए होता।
3: आकाशवाणी कानपुर मेरी पोस्टिंग हुई तो जब सभा समाप्त होती थी तो बाहर लोग खड़े रहते थे मुलाकात करने के लिए, तो हमारे स्टेशन इंजीनियर ने ये सख्त हिदायत दे रखी थी चपरासी को, गार्ड को, कि कोई भी अंदर नहीं आएगा और शारदा जी से कोई मिलने अगर आए तो वहीं उसको वापस कर दीजिए, वहीं वापस कर दिए, और जब 15 मिनट बीत जाते थे तब हम गाड़ी में बैठ के अपने घर तक आते थे। ये उस समय था, ये उस समय रेडियो का क्रेज था, ये उस समय रेडियो का महत्व था जिसे हम लोगों ने देखा और समझा और उसको अनुभव भी किया
2: जी जी।
3: तो नीना जी के पास ये खजाना बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारे ख्याल से आज हम लोगों ने जो बातचीत की है तो शायद आधी पर्दी रह गई है, अभी बहुत सा बाकी
2: बहुत
3: है,
2: सारे अभी पर्दे खुलने
0: बाकी। ममता एक अपने प्रसारण का जो एक जिसको कहेंगे इंसिडेंट, वो जरूर हम तुमसे शेयर करेंगे, कि एक बार SOS खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं, पहले 6:05 ऐसे आते थे तो वो करते थे हम लोग, 10 मिनट का होता था, बीच में न्यूज थी फिर उसके बाद 5 मिनट
2: अभी भी प्रसारित होते हैं,
0: तो वो हमने किया उसी में। कभी कभी ऐसा होता था कुछ ऐसे लोग आते थे, ड्यूटी ऑफिसर ने जैसे ही दिया बीच में दे देते थे कि उन्होंने कहा कि ये कर दो, जैसे ही एंट्री हुई तो हमने फेडर ऑफ किया अपना, ये इसको कर दो, वो किया, और उसके बाद जब हम ट्रांसमिशन हमारा ऑफ हुआ, हम बाहर निकले, हमारी ड्यूटी जब खत्म हुई बाहर निकले तो एक बूढ़ी औरत थी और एक उनके साथ में लड़का था, वो एक छोटे से जैसे आजकल 250 ग्राम का डिब्बा होता है ना, तो उसमें पेड़ा या लड्डू कुछ ऐसा था, वो लेकर के स्टूडियो के उससे बाहर हम निकलते उस जगह पे बैठी हुई थी, उनका बिटिया तुमने कर दिया हमारी वो मिल गई, मतलब वो तुरंत हुआ, इमिजिएटली हुआ और तुरंत वो ट्रेस आउट हो गया था, वो वाकई मतलब इसके पहले तक तो हम इतनी अहमियत नहीं देते थे। उस दिन हमें ये खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं का जो असली महत्व था, उसके पहले तक वो सिर्फ हमारे लिए एक फॉर्म था जिसे हमें बोलना था
2: जी।
0: चार बोलने होते थे तो 4 इधर बोले 4 उधर बोले, उतना तक का एक काम रूटीन वर्क था, लेकिन उस दिन के बाद से उसकी अहमियत पता ले।
2: जी जी,
0: वो क्षण हमें आज तक याद है।
2: आपको बहुत सुखद क्षण लगा होगा कि आपकी एक उद्घोषणा से कोई बिछड़ा हुआ मिल गया किसी को और परिवार मिल गया। तो सच में रेडियो जो में काम करना है वो सिर्फ एक कार्य नहीं है, एक कर्तव्य है हमारा। और कितनों का हम मनोरंजन करते हैं, कितनों के दिलों तक पहुंचते हैं, कितनों को सूचना पहुंचाते हैं, कितनों की जानकारियां बढ़ाते हैं, और जैसे कहा कि कितनों को हम मिला भी देते हैं, जोड़ते भी हैं।

0: हम सब रेडियो से जुड़े हुए जो प्रसारण कर्मी हैं वो अपने काम को शिद्दत के साथ करें और आप लोगों से प्रेरणा लेकर करें कि कितना आप लोगों ने जो काम किया मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किया और
1: इंजॉय करके करें। सबसे बड़ी बात है कि अपने काम को इंजॉय करें, जो हम आज भी कर रहे हैं। जैसे लोग बहुत होते अरे भाई ये नौकरी का वक्त है, लेकिन उसको तो हम लोग स्वर्णिम काल अपने
2: नौकरी का,
1: क्योंकि यहीं पर तीज है, यहीं पर त्योहार है, यहीं पर बर्थडे है, यहीं पर सब कुछ हम लोगों का हो जाता था।
0: तो अभी भी आप लोगों के पास तो मुझे लगता है कि जो यादें हैं वो बहुत सारी होंगी,
1: बहुत बहुत ढेर सारी।
0: यदि हम अलग अलग बिंदु पर टच करें छेड़े तो आपके पास नए नए
1: बहुत सारे
2: उब जाएगी सुनते सुनते।
0: हम नहीं उबेंगे, श्रोता भी नहीं उबेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विराम तो देना ही होगा अपने कार्यक्रम को। हमें जो हमने आपसे बातचीत की, नीना श्रीवास्तव जी, शादा लाल जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आई और आपने अपनी उन यादों को हमारे सामने रखा कि कब से रेडियो से प्रेम हुआ, कैसे कैसे आपकी यात्रा उनमें चली। पूरी यात्रा है वो बहुत ही सुखद रही और रेडियो अभी भी आपके दिल में।
2: मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जहां मैंने अपने जीवन के इतने लंबे वर्ष गुजारे,
1: श्रेष्ठतम
2: है वो, श्रेष्ठतम है
0: जी।
2: और लोग अक्सर अपनी नौकरी को, अपने काम को लेकर के बहुत कुछ कहते हैं, भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कहना चाहती।
1: मैं नहीं, हम हम कभी
2: हम एक शब्द भी नहीं कहना चाहते।
1: आज भी हमें घर लगता है
2: कहीं कोई किसी किस्म से किसी प्रकार का कोई अफसोस हुआ हो। बहुत खुशी और बहुत सम्मान लेकर के हम लोग यहाँ से निकले
0: जी। तो आपने अपने काम को पूजा माना और उतनी ही शिद्दत के साथ अपने जो ड्यूटीज दिए गए वो आपने निभाए और अभी भी आप रेडियो से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, हमसे जुड़ी हुई हैं और हम अपनी यादों को आगे
2: भी साथ रहेगा।
0: जी जी, रेडियो कहीं नहीं जाएगा हम सबके जीवन से। और आप दोनों स्टूडियो में आई और हमसे जो बातचीत की, यादों को साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
7: शाम होने को है।
6: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास,

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: जी 11:45 कर 45 मिनट का वक्त, और अभी आपने एक खास श्रृंखला सुनी जो आज की आखिरी श्रृंखला थी आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा के उपलक्ष्य में। जी हाँ, और अब मेरा मन कर रहा है कि एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो मैंने लगा के रखा है वो भेजें आप तक। तो चलिए हम सब इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।
1: Days are lucky because schools are giving additional water breaks. Sounds good, right? But nowadays, schools are off, summer vacations. So please make sure that your children are well hydrated. They are having

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: जी 12:52 का वक्त, और दोस्तों देखिए अभी हम लोगों ने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, इश्क बिना क्या जीना यारो। और सही बात तो है कि अगर इश्क नहीं है तो क्या है जीना। तो इश्क जितने, अगर आपने इश्क करा है किसी से तो बिल्कुल उसको इस शिद्दत से निभाइए। और इस प्यारे से गीत के बाद हम आपका एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। तो आज इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी ने सुना कि हम लोगों ने बात करी स्वयं सिद्ध महिलाओं से, तो दोस्तों कहते हैं मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती हैं, मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बहाना ढूंढता है तो कोई रास्ता। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने हाल ही में राष्ट्रपति जी से पद्मश्री लिया है और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है, और वो हैं भारत की शेरनी हरमनप्रीत कौर भुल्लर। तो अभी बातें तो और भी आपसे करने के लिए हैं, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक ले लें। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना हम आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद लौट कर आते हैं। और ये जो गाना है ना, उसके बाद हम बात करेंगे कि हरमनप्रीत ने क्या क्या किया।

तो 12:57 का वक्त, और देखिए ना आपके साथ ये जो ना साथ होता है आपका, बिल्कुल टाइम हमको पता ही नहीं चलता कि कैसे चुटकियों बजाते ही टाइम निकल जाता है, लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं वो बातें बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हरमनप्रीत कौर भुल्लर की, जिनका जन्म मोगा पंजाब में हुआ था। घर में क्रिकेट का माहौल नहीं था, लड़की होकर लड़कों के साथ खेलने पर कई ताने भी सुनने पर हौसला इतना बुलंद था कि इन तानों का कोई असर उनके ऊपर नहीं हुआ। क्रिकेट का जुनून इतना था कि क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए घर से 30 किलोमीटर दूर एक एकेडमी जाती थी। बचपन में वीरेंद्र सहवाग की फैन थी, अनेक बाधाओं को पार करके क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान दिया, और उसी योगदान और नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अपने दौर की सबसे प्रभावशाली और दमदार क्रिकेटरों में शामिल हरमनप्रीत कौर ने भारत को पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब दिलाया, और हरमन का एक सक्सेस मंत्र है जिसपे हम सबको भी अमल करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हम में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें छुपी हैं जो हमें बस उसको कोशिश करना है, प्रयास करना है, और देखिए सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो हरमन का जो सक्सेस मंत्र है वो ये है कि लोग हमेशा आपको जज करेंगे, उन्हें इग्नोर करो, आगे बढ़ो और बेस्ट दो, वही करो जो तुम करना चाहते हो। तो इतनी प्यारी प्यारी बातों और इतनी इंस्पिरेशनल बातों के साथ अब समय कह रहा है कि प्रोग्राम स्वयं सिद्धा को वाइंड अप करना होगा यहीं पर, लेकिन अगला प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में भी मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी दोस्त शिखा। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आज नई दिल्ली में मानसून 2026 के द्वितीय चरण के दीर्घकालिक पूर्वानुमान पर मीडिया को जानकारी देते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ एम रविचंद्रन ने बताया कि देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होने वाली वर्षा औसतन दीर्घकालिक पूर्वानुमान का 90% रहने की संभावना है।

विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जून माह के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलने की आशंका है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। यह पहला अवसर है जब राम मंदिर परिसर में 3,000 से अधिक मात्र शक्तियों का एक साथ समागम होगा। विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं समारोह में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे तक होगा। मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। आईएमडी ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। किसानों को भी खेतों में कार्य करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के कार्य को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के उद्देश्य से शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक क्षेत्र में नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा सर्वे कार्य की दैनिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराज यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी 1:05 का वक्त और ये समय होता है ना आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम का। जी हाँ, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम होठों पे तेरी बात, जिसमें हर रोज हम बात करते हैं एक ना एक दिलचस्प टॉपिक पर और जानते हैं कि आप क्या सोचते हैं उस विषय पर। तो आज ढेर सारी बातें करने वाली है शिखा आप सबसे, पर बातें शुरू करने से पहले एक प्यारा सा गाना मैं भेज रही हूं आप तक, तो चलिए एंजॉय करते हैं ये बेहतरीन सा गीत आप सबके रेडियो सेट्स पर।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ जिले में 392 करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों के तवस्सुत से सड़कों, खेल सहूलियात, तालीमी इदारों, शहरी बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
1: जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुन करके जाते हैं तो अच्छी सरकार आती है, और अच्छी सरकार आती है तो विकास लेकर के भी आती है। ये जो विकास है ये आपके जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है।

0: अपना भेदभाव, ये सब तब होता है जब अच्छे लोग चुने जाते हैं और अच्छी सरकार बनती है, तब परिणाम आते।
1: ज़राअत, किसान बहबूद और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में दो रोज़ा कौमी ज़रई इजलास की इफ्तिताही तकरीब को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मेहनती किसानों की कोशिशों की वजह से मुल्क में वाफर ग़िज़ाई ज़खीरा मौजूद है। जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी करना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाना और मुल्क की आवाम को तग़ज़िये से भरपूर खुराक मुहैया कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
2: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है।
1: मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से वजीर आजम रिहायशी स्कीम देही के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी जारी की। इस मौके पर जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहादा है कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे। हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिलेबस में जामे इस्लाह के लिए इंडस्ट्री वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलातो तकनीकी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में AI सिलेबस अफरादी कुव्वत के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में AI तालीम को मुस्तकबिल की तकनीकी जरूरियात के मुताबिक ढालने पर बातचीत हुई। मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाके CBSE सदर दफ्तर में एक आला सतही जायजा मीटिंग की। मीटिंग में बोर्ड के दर्जा 12वीं के इम्तिहानात की तशखीस और नतायज के बाद के अमल से मुतालिक मौजू का जायजा लिया गया। इस दौरान मरकजी वजीर ने अफसरान को तलबा की दिक्कतों का वक्त पर शफाफ तरीके से और तलबा के मफाद के तरीके से तस्फिया यकीनी करने के अहकाम दिए। साबिक वजीर आजम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की यौम वफात पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खराज अकीदत पेश किया है। वजीर आला ने कहा कि उनकी सादा जिंदगी, किसानों के तई मानवन और अवामी बहबूदी सियासत सभी को हमेशा रागिब करती रहेगी। उनकी यादों को और उसूलों को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत कई अवामी बहबूदी स्कीमें चला रही है। दरियासना वजीर आला ने आज लखनऊ में साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की यौम वफात के मौके पर उनके मुजस्मे पर गुल्हाए अकीदत पेश किए। जिला हमीरपुर में ललपुरा थाना हलके के मोरांग कादर गांव के नजदीक बेतवा नदी में जेरे तामीर पुल का स्लैब गिरने से 6 मजदूर जां बहक हो गए हैं। SDRF और NDRF की टीम और गांव के लोग राहत और रसानी के कामों में लगे हुए हैं। 2 लाशों को बरामद कर लिया गया है, बकिया 4 मजदूरों की लाशों की तलाश जारी है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि गुज़िश्ता देर रात 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान के चलते ये जेरे तामीर पुल की स्लैब गिर गई। बेतवा नदी में जेरे तामीर पुल के हादसे की जानकारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार की माली मदद और मुनासिब इलाज के अहकाम दिए हैं। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना हलके में कल देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर से जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब प्यास से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और सड़क किनारे जा रही 2 बाइकों पर पलट गया, जिससे 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। और रियासत के कई जिला में गुज़िश्ता शब और आज सुबह तेज आंधी और गरज चमक के साथ शुरू हुई बारिश से आवाम को फिलहाल शदीद गर्मी से राहत मिली है। संत कबीर नगर, बलिया, कौशाम्बी, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, अयोध्या, चंदौली, जौनपुर, हमीरपुर, गोरखपुर और दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कुछ दीगर जिला में बारिश होने की खबर है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने रियासत में कई मकामात पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे दर्ज हरारत में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक 1 जून से मौसम खुश्क होने की उम्मीद है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

1:16 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और आप सबके मन में प्लान भी बनने शुरू हो गए होंगे, और प्लान ऐसे बनने शुरू हो गए होंगे कि कहाँ घूमने जाना है इन समर वेकेशंस में। और भाई क्यों ना बने प्लान, क्योंकि इन समर वेकेशंस का हमारे नन्हे मुन्नों के साथ हमें भी तो रहता है इंतजार। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश, किसी रीजन से हम घूमने नहीं जा पाते और उसका हमें बड़ा अफसोस होने लगता है ना कि क्या क्यों नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन उसको भी तो यूटिलाइज करना होता है। तो आज का टॉपिक ये है कि अगर आप समर वेकेशंस में कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, कहीं आपका प्लान नहीं बन पा रहा है, तो आप इन समर वेकेशंस को, या आपने जिन समर वेकेशन में आप नहीं जा पाए घूमने अपने बच्चों के साथ, तो उसको कैसे यूटिलाइज किया। तो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर समर वेकेशंस में हम घूमने नहीं जा पाते, या पिछले समर वेकेशंस में हम नहीं जा पाए और इसमें भी प्लान नहीं बन पा रहा है, इस समर वेकेशंस में भी प्लान नहीं बन पा रहा है, तो आप कैसे यूटिलाइज करते हैं इस समय को घर पर रहकर। तो आज हमने कुछ लोगों से बातचीत भी करी है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आपको ये जो मेल्स भेजने हैं, वो मेल्स भेजने कहाँ पे हैं। तो ये मेल्स आपको भेजने हैं हमारी ईमेल आईडी, और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwanilakhnau@gmail.com। तो बस आप जल्दी से सोचिए कि क्या करने वाले हैं आप इन समर वेकेशंस में, और एक प्यारा सा गाना भी आप तक आ रहा है, तो चलिए आप एंजॉय करिए और साथ ही हमें मेल्स भेजिए।

0: जी 12:30 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ। तो आज का टॉपिक आप सबको मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ और आपको वो भी सुनवाऊंगी जो मैंने लोगों से बातचीत करी कि भाई आप अपने समर वेकेशंस में जब आप घूमने नहीं जा पाते तो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो वो बातें भी आप तक पहुंचाऊंगी। तो चलिए हमने एक लोगों से बात करी और देखिए वो क्या कहती हैं।
1: जा पा रहे हैं समर वेकेशंस में, तो हम क्या कर सकते हैं। ये हमेशा से मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। तो हम अपने बच्चों को ना, मुझे जैसा लगता है, छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं करने के लिए जो कि इंटरेस्टिंग भी हो और बच्चों का उसमें नॉलेज और ऑल ओवर डेवलपमेंट बचे। और एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, अपने बच्चों को प्लांटेशन करना, प्लांट्स की केयर करना, रिसाइकल चीजों को करना, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कि आजकल लोग बहुत कम करते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में हम बच्चों को ये चीजें सिखाएं कि हम कैसे अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सारा टाइम तो मदर्स और पेरेंट्स सब भागते ही रहते हैं बच्चों के साथ, जब उनके पास थोड़ा टाइम है, हाउ दे कैन बी ऑफ हेल्प टू पेरेंट्स, ये एक बहुत अच्छा वो है। और इससे बच्चे काम करने की आदत, इट्स नॉट कि ऐसा कोई काम, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंट होने की आदत और बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने की आदत, ये बहुत अच्छे से आती है कि बच्चे कैसे अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल डेवलपमेंट शायद इसे ही कहते हैं। और मुझे बहुत मजा आता है अपने बच्चों से इस तरह की चीजें करवाना और उनको उसमें बिजी रखना। देर कैन बी लॉट ऑफ गेम्स इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस, देर कैन बी लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन विच दे कैन शो देयर टैलेंट्स। थैंक यू, नमस्ते।
0: जी तो अभी हमारे साथ तुलिका जी ने अपने विचार साझा करे कि जब वो समर वेकेशन में अपने बच्चों के साथ घूमने नहीं जा पाती तो क्या करती हैं। तो हमारे पास कुछ मेल्स भी आ गए हैं, तो हम जल्दी से मेल्स को पढ़ते हैं। अशोक कुमार जी ने हमें मेल किया है और लिखा है, हाय मैम, मेरा नाम अशोक कुमार, विलेज पंगी कलन लखीमपुरी खीरी से इन्होंने हमें मेल किया है। मेरा

है कि गरीब इंसान की कोई वेकेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है, ये सोचना आपका मुझे लगता नहीं ठीक है। और आप जब भी आपके बच्चों की छुट्टियां हो तो आप एंजॉय करिए, कैसे भी एंजॉय करिए, घर पे रहिए, कुछ अच्छा बनाइए, तो अपने अपने तरीके होते हैं, तो उसको जरूर से एंजॉय करिए बच्चों के साथ, क्योंकि ये समय बहुत कीमती होता है। तो चलिए, एक और मेल हमारे पास आ चुका है। हमारे पास मेल आया है रामेश्वर जी का। होठों पर तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन शिखा जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आपका प्रोग्राम बराबर सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति होती है। अच्छी प्रस्तुति के लिए जब बहन शिखा जी कार्यक्रम में आती हैं, चार चांद लगा देती हैं। थैंक यू सो मच। और इन्होंने थैंक यू बोला है हमें, तो भाई हमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। हमारे जितने भी श्रोता हैं, इतना प्यार आपका हमसे जुड़ा होता है कि उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। तो इन्होंने लिखा है, शिखा जी हम घूमने नहीं जा पा रहे हैं, हमारा सड़क हादसे में पैर खराब हो गया, हम मजबूर हैं। ग्राम व पोस्ट मुंगिसापुर कानपुर देहांत से रामेश्वर कटेरिया, उमाकांति कटेरिया, कमलेश कटेरिया, पुत्र बधु निशा कटेरिया, प्रगा कटेरिया, प्रतिमा कटेरिया, वेद बाबू कटेरिया। तो रामेश्वर जी, ये जानकर बड़ा मतलब तकलीफ हुई कि आपको ये दिक्कत है, इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं। तो कोई नहीं, समय होता है हर चीज, वो समय आता है और गुजर जाता है। तो बस आप खुश रहिए, अच्छे से रहिए, बस हमारी यही इच्छा है और यही हमारी आशा है। और हमारे पास रामराज जी ने हमें मेल किया है, श्री गणेशाय नमो, होठों पर तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, भानु भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, बधु बजरंगी, काका नीरज, सबसे पहले हमारी तरफ से शिखा बिटिया को प्यार भरा नमस्कार। अरे थैंक यू सो मच, इतना प्यार। ये जो बिटिया शब्द होता है ना, ये अपने में ही बहुत ज्यादा प्यार संजोए होता है। और शुभ आशीर्वाद पहुंचे, थैंक यू सो मच। आपका कार्यक्रम देरी से सुन रहे हैं, आपने जो पूछा हम सुन नहीं पाए, इसलिए कुछ नहीं लिखा, धन्यवाद। तो मैंने टॉपिक दो तीन बार रिपीट करा था, तो अभी मैं बीच में एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, जिससे आप लोग नहीं सुन पाए, जो लोग, उन तक भी वो टॉपिक पहुंच जाए। और हमारे पास भैया मोनू सेठ जी ने मेल कर दिया है, पौधा लगाए गर्मी धूर भगाए, धूप में भी छांव फ्री में पाए। वाह, कितना अच्छा इन्होंने मतलब एक लिरिकल वे में लिखा है, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने पहुंचाई है हम सब तक। पौधे लगाए और गर्मी दूर भगाएं, धूप में भी छांव फ्री में पाएं। और इन्होंने क्या हिंदुस्तानी ब्रह्मी जी का इन्होंने हमें मेल किया है, बड़ी बहन शिखा जी को बेस्ट कार्यक्रम देने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं पिंकू सोनी टिकायत नगर बाराबंकी से हूं, मैं यही कहूंगा कि आप समर वेकेशन में कहीं घूमने नहीं जा रहे तो अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना समय व्यतीत करें। थैंक्स मेरे भतीजे शुभ और ऋषभ सोनी को। तो इन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात हम लोग तक कन्वे करी है कि अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो आप अपनों के साथ समय बिताइए। हमारे अपने भी तो हमारा अपना समय चाहते हैं ना। तो विजय पाल यादव जी ने हमें मेल किया है, आदरणीय बहन जी सादर नमस्ते, आज का विषय बहुत ही अच्छा है, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है। दीदी जी 19 मई को आपकी हमारी स्टूडियो में मुलाकात हुई थी, बहुत ही अच्छा लगा था आपको सुनकर, ये मेल भेज रहा हूं। प्रेषक विजय पाल यादव, ग्राम व पोस्ट ललहुआ, जिला खीरी। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना दिल से जुड़े रहते हैं और जब सुनते हैं और बताते हैं कि इस दिन आपको सुना था, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये कहते हैं ना कि ये प्यार ही तो है, ये दिल से जुड़ाव ही तो है, जब आप हमारे साथ इतने प्यार और एहसास से जुड़े रहते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है जितने भी हमारे श्रोता सुनेंगे उनको भी पसंद आएगा। तो चलिए, ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।

0: जी 1:34 का वक्त, और मैंने कहा था कि कुछ लोगों से हमने बात करी है कि आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि मैम हम टॉपिक नहीं सुन पाए। तो टॉपिक ये है कि जब भी आप समर वेकेशंस में घूमने नहीं जा पाए या इस बार नहीं जा पाएंगे, कुछ प्लान तो बनता है और कभी कभी होता है कि हम नहीं जा पाते, तो उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने नन्हे मुन्नों के साथ, आपको हमें बताना है हमारी मेल आईडी पर। और हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। तो चलिए आपको सुनवाते हैं, एक लोगों से बात करी हमने, तो उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या बताया हमको।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, चेस्ट स्पेशलिस्ट लखनऊ। क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं तो मुझे काफ़ी समय नहीं मिल पाता है कि मैं अपने परिवार के साथ और बच्चों के साथ समर वेकेशंस पर जा पाऊं। तो मैं किसी भी तरीके से कोशिश करता हूं कि अपने बिजी शेड्यूल से उनको शाम में घर में जितना भी मैं समय दे सकूं और उनको एंजॉय करा सकूं, इसकी मैं भरपूर कोशिश करता हूं। क्योंकि हम लोग का पेशा ऐसा है कि हम लोग के लिए मरीज़ पहली प्रायोरिटी होती है हमारे पेशे की वजह से, बट स्टिल कई बार हम लोग कोशिश करते हैं, मैं और मेरी वाइफ, कि हम अपने बच्चों को घर पे शाम को कहीं घुमाने ले जाएं, कहीं आइसक्रीम खिलाने ले जाएं, किसी पार्क में ले जाएं। तो ये सारी कोशिशें हम लोग की रहती हैं और बस इसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं अपना समय बच्चों को और फैमिली को देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।
0: जी तो हमारे पास कुछ मेल भी आ चुकी हैं, और भाई मेल की जो कतार है ना, बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमें प्यार से सुन रहे हैं और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आप रिप्लाई कर रहे हैं। तो बसंत कुमार सिन्हा जी का हमारे पास मेल आ चुका है और हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। आदरणीय प्रसारक मैडम जी, शिखा दीदी को सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। आज का थीम, जब छुट्टी पे कहीं नहीं जाना हो तो घर पर ही बच्चों को पढ़ाई कराने की कोशिश करते हैं। अरे ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन भी टाइम मिला है तो बच्चों को थोड़ा एंजॉय करने दीजिए। बागवानी का काम करने की कोशिश करते हैं।

पक्षी को दाना पानी अपने छत पर रखने की कोशिश हमेशा भरपूर प्रयास करते हैं। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, नन्ही मुन्ने, अन्विका बेबी, थैंक्स आपका नाम शामिल करने हेतु दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और हमारे पास सुधाकर यादव जी ने हमें मेल किया है, हमारी खेती के काम चालू होने के वजह से हम बाहर कहीं घूमने का प्लान नहीं करते, हमको यही साल धूप बहुत होने की मतलब इस साल धूप होने की वजह से हमने हमारे बच्चे को घूमने को नहीं भेजा, प्रेम पूर्वक नमस्कार। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से इन्होंने हमें मेल किया है, उन्होंने बहुत नाम भी लिखे हुए हैं, श्री सुधाकर राजे जादव, प्रशांत राजे जादव, कुमार सचिव वायर, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख। और हमारे पास मेल आया है सुनील जी का, सुनील ने हमें मेल किया है, सुनील सूर्या आलमबाग लखनऊ से इन्होंने मेल किया है, होठों पे तेरी बात प्रोग्राम में आज अगर अरिजीत सिंह के सॉन्ग चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने सुने नहीं है, तो हमारी पूरी कोशिश है और फरमाइशी प्रोग्राम है वो हमारा आएगा 2 बजे से 3 बजे तक। जी हाँ, होठो जो आपका रेनबो हॉटमेल है, एवर ग्रीन आपका जो प्रोग्राम है वो अभी आएगा 2 बजे से 3 बजे तक, तो हम आपकी कोशिश रहेगी कि फरमाइशी सॉन्ग जरूर प्ले करें।

1:38 का वक्त और ये वक्त मुझसे कह रहा है कि भाई शिखा बातें तो बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब वो एक गाना पहुंचा देना चाहिए अपने श्रोताओं तक। तो मुझे लग रहा है हमारे जितने भी श्रोता हैं यही सोच रहे होंगे कि प्यारा सा गाना आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है आप तक। तो चलिए इंजॉय करते हैं।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: जी दोस्तों, 1:45 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं होठों पे तेरी बात, अपनी दोस्त, जी हाँ दोस्त शिखा के साथ। तो चलिए हम सुनते हैं वो बातचीत जो हमने किसी से करी है और वो आप तक पहुंच रही है। तो चलिए सुनते हैं कि क्या कह रही है वैष्णवी।
8: Hi, my name is Vaishnavi and on today's topic I would like to say that when I'm not able to go on vacation in summers, I spend my time improving my skills. I like sketching, so I love to work on new projects and create beautiful artworks.

0: जी, तो अभी आपने सुना कि वैष्णवी क्या करती हैं अपने समर वेकेशंस में अगर वो बाहर नहीं जा पाती हैं, और बहुत अच्छी बात बताई कि वो स्केचिंग को प्यार करती हैं, स्केचिंग बनाना उन्हें अच्छा लगता है। तो चलिए एक लोगों से और हमने बात करी, वो पहुंच रही है आप तक, तो उनकी क्या राय है, वो क्या करते हैं समर्स में।
1: नमस्ते, मेरा

0: मेरा नाम अनु कुमार वाजपेयी है और आज का विषय बहुत ही अच्छा है कि हम अपने बच्चों के समर वेकेशंस में आज की व्यवस्था को देखते हुए समय नहीं दे पाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचूं और अपने बच्चों के साथ गेम्स खेलूं। नई गेम खेल पाता हूं तो पार्क लेके चला जाता हूं, पार्क नहीं जा पाता हूं तो फिर होटल्स में जाता हूं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। धन्यवाद।
1: तो अभी आपने सुना कि वैष्णवी और अनूप क्या करते हैं अपने समर वेकेशंस में, क्या करते हैं लोग, आप लोग क्या करते हैं। और बहुत से लोगों ने हमें जो मेल्स करे हैं वो हम पढ़ लेते हैं। राधे श्याम जी ने हमें मेल कर दिया है और लिखा है, राधे श्याम जी कासगंज से, गुड आफ्टरनून शिखा जी, और आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूं और आशा है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। अगर समर वेकेशंस में मैं बाहर घूमने नहीं जा पाता हूं तो मैं FM रेनबो ट्यून करके अपना समय व्यतीत करूंगा। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स। तो थैंक यू सो मच कि आपने FM रेनबो चुना भाई अपने समर वेकेशंस के लिए। और समर वेकेशंस के क्या, हम तो आपके साथ हर पल हर क्षण हैं। मुझे लग रहा है कि अब जितने भी हमारे जितने श्रोता हैं, जितने लिसनर्स सुन रहे हैं प्रोग्राम को, तो इंतजार किस चीज का है? इंतजार है एक बहुत ही प्यारे से गाने का जो आ रहा है आप तक। तो चलिए एंजॉय करते हैं।

0: जी 1:53 का वक्त और बहुत से मेल हमने आप तक पहुंचाए, बहुत से लोगों से बातें करी, तो एक और लोग हैं जिनसे हमने बात करी। देखिए इनकी क्या राय है, ये कैसे यूटिलाइज करते हैं अपना समर वेकेशन का टाइम अगर बाहर नहीं घूमने जा पाते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं क्या कहते हैं प्रदीप जी।
1: नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप वाजपेयी और मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में अगर मैं अपने बच्चों को बाहर घुमाने नहीं ले जा पाता हूँ तो मैं अपने घर में ही समर कैंप जैसा माहौल बना देता हूँ। घर के वातावरण में ही मैं आयोजित करता हूँ इंडोर गेम्स, क्रिएटिव आर्ट्स, नई नई स्किल सीखने की क्लासेस, कभी कभी हम सभी मिलकर किताबें भी पढ़ते हैं, नई नई डिशेज बनाते हैं और घर में ही ढेर सारे आनंद की अनुभूति करते हैं। बच्चों का उत्साह देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी मेहनत की है वो सफल हो गई है। और जब मेरी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, मुझे वापस ड्यूटी पे जाना होता है, तो मेरे बच्चे बिल्कुल कहना नहीं भूलते दैट वी हैड गुड समर कैंप, लव यू डैड।
0: जी देखा आपने, कितनी छोटी छोटी सी चीजें, कितनी छोटी छोटी सी एफर्ट्स जो होते हैं ना, हम बच्चों के साथ करते हैं, अपनी फैमिली के साथ करते हैं, तो क्या वो मेमोरी क्रिएट कर देते हैं, हमें खुद भी नहीं पता चलता। और कितना प्यारा सा बच्चों ने कहा ना, लव यू डैड। तो सही बात है, एक दूसरे से प्यार करिए, कभी किसी कारणवशात नहीं जाते हैं तो ये जो टाइम है ना, इसको इतना फ्रूटफुल बना दीजिए कि हर हर पल हर क्षण सिर्फ मेमोरी से, सिर्फ यादों से भरा हो। तो इतनी सारी बातों के बाद आप देखिए ना, टाइम क्या हो रहा है, टाइम 1:55 हो गए हैं और ये टाइम कह रहा है भाई शिखा अब टाटा बाय बाय कह दो प्रोग्राम होठो पे तेरी बात से, क्योंकि वाइंड अप करने का समय हो गया है। और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा 100.7 FM रेनबो पर। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की। जी हाँ, 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, क्योंकि अगला प्रोग्राम भी होने वाला है फुल मस्ती और धमाल भरा हुआ। जी हाँ, रेनबो हॉट मेल। तो चलिए एक प्यारा सा गाना आ रहा है, तो एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।

0: operations are still underway. The Intermeteorological Department, IMD, has predicted below normal monsoon rainfall in the country and above normal heat wave conditions in several states during June. Addressing the media, Director General of IMD, Dr. Mrityunjay Mohapatra, said the average rainfall in the country during the month of June is most likely to be below normal. He said during the period only some parts of the country, including northwest, northeast and south peninsula, are expected to witness normal or above normal rainfall. He further informed that during June, above normal maximum temperatures are likely to prevail across most parts of the country. Mr. Mohapatra added that during the month of June, above normal heat wave conditions are expected over many parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh and Gujarat.
1: This year's forecast says that we will have about 2 to 3 days more over UP, Punjab, Haryana and the adjacent areas of Himachal, etc. and in some parts of the coastal east coast states and Gujarat. And specifically if I state names of the states, it is above normal heat wave days are expected over parts of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Gujarat and Andhra Pradesh and isolated regions of Maharashtra, Telangana, Himachal Pradesh and Tamil Nadu.
0: In sports, at the 2026 Asian Under-20 Athletics Championships, stellar results were recorded in multiple track and field events involving Indian athletes. In the women's 100 metres, Neepam won the bronze medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 meter at Under-20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
2: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
4: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
5: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक

0: परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से

0: सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
1: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और हमें मेल किया है मूसा शेख जी का मेल। प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हो, दुआ में याद रखना। जी हम खैरियत से हैं और हमारी जो वो है, हम सोचते हैं कि भाई आप भी अच्छे से रहें और खुश रहें। फिल्म एक बहुत ही प्यारा सा गाना इन्होंने लिखा, सनावत से इन्होंने हमें मेल किया है, शेख मूसा मोहसिन। और एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगी कि प्लीज आप एक मेल करिए। मेरी पूरी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके मेल को शामिल जरूर करें, क्योंकि क्या होता है आप 4-4, 5-5 मेल भेज देते हैं, मुझे पता है आपका इतना प्यार है, वो दिखाने का तरीका है, लेकिन फिर भी एक मेल भेजिए, हम शामिल जरूर करेंगे। कमलकांत जी ने हमें मेल किया, आदरणीय शिखा जी प्लीज हमें ये बताइए कि कितने बजे से भेजा हुआ मेल शामिल करते हैं। 2 बजे राइट टाइम भेजा हूं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं, तो भाई के लिए सो सॉरी, आपको इतना वेट करना पड़ा लेकिन शामिल हो गया, इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए। पिपरिया से इन्होंने मेल किया है, कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। समदील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, आदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता। और हमारे पास सतीश अनिजन जी ने मेल किया है, नमस्कार शिखा बहन जी को, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्ट्रांग लव टू रेनबो लखनऊ। ओ थैंक यू सो मच, आपका स्ट्रांग लव जो है ना वो हमें आपके मेल्स के थ्रू दिखता है। आप इतने प्यार से इतने डेकोरेटिव मेल जो आप हमें भेजते हैं तो हम भी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो एक गाना इन्होंने भेजा है, चंडीगढ़ सिटी, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, धन्यवाद। और हमारे पास एक और मेल पढ़ते हैं फिर गाना आप तक भेजते हैं। मल्होत्रा टी डी मोहाली से इन्होंने साथिया तूने क्या किया, ओ गाना इन्होंने लिखा है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज।

तो मेज तो अभी हम आपके और भी शामिल करेंगे, लेकिन कहते हैं ना, हमारा तो मन करता है कि हम आपके मेल एक एक एक करके बस पढ़ते ही जाए, लेकिन भाई गाना भेजना भी तो बनता है आप तक। तो एक मैं बैक टू बैक सॉन्ग भेजूंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आपके सॉन्ग जो आप लोगों ने जितना लिख के भेजा है, कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मैं वो सॉन्ग आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी 2:44 का वक्त और टाइम हो गया है कि भाई आपके मेल्स पढ़ लें हम। दिलीप कुमार जी ने हमें मेल किया है, शिखा दीदी नमस्कार और एक गाने की फरमाइश करिए। मुंदीचक भागलपुर बिहार से इन्होंने हमें मेल किया है, दिलीप कुमार सोनी। और बोधराज खोरवाल जी ने हमें मेल किया, मैडम जी अपनी बारी का इंतजार करते करते प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है पर मैसेज शामिल नहीं होता। तो बिल्कुल देखिए ऐसा मत सोचा करिए, हमारी पूरी कोशिश रहती है क्योंकि हमारे पास आप हैं लिसनर, हमारे साथ और भी लिसनर्स, कितने लिसनर्स हमारे पास हमारे साथ जुड़े रहते हैं और कोशिश रहती है कि आप सबके ही मेल शामिल हो जाएं। और कहीं अगर स्किप हो जाता है तो बिल्कुल भी उसे दिल पर ना लें। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और हमारे पास रविंद्र मोहन दास जी ने हमें मेल किया है, कोई गीत सुना दें। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। और हमारे पास मेल आया है उदय भानपाल जी का, शिखा बहन जी ये मेल मैं पढ़ चुकी हूँ इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप एक मेल करिए, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सबके मेल शामिल करें। तुलसी मस्कीन का हमारे पास मेल आया है, होस्ट शिखा जी मैंने ठीक 2 बजे मेल की, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं, नाइस सॉन्ग, मैंने पूछा चांद से। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। तो तुलसी जी लीजिए आपका मेल शामिल हो गया। तो हमारी बिल्कुल कोशिश रहती है कि हम आप सभी के मेल एक एक करके जल्दी जल्दी पढ़ लें, लेकिन गाने भी तो अब तक आपके ही पहुंचाने रहते हैं। सदानंद मंदुरकर जी ने हमें मेल किया है, प्रसारक जी सेवा में नमस्कार, और बहुत ही प्यारा गीत इन्होंने हमें लिख भेजा है, तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचाएं। सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर।

स्वरण सिंह जी ने हमें मेल कर दिया है। नमस्कार जी, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरनाल गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गीत कोई भी सुना दीजिए, हमारा नाम जरूर शामिल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और

देखिए, समय धीरे धीरे बीत रहा है, तो हमारी पूरी कोशिश है, एक बार मैं सबके जल्दी से नाम पढ़ती हूँ और कोशिश रहेगी कि सबके मेल्स पढ़ लूँ। सुनील पाठक जी ने हमें मेल किया है, बाबू अंसारी, राशिद हुसैन जी ने बाबू अंसारी, नवी हसन, बाबू अंसारी, अहमद फूल वाले, बाबू अंसारी निसार अली, अहमद फूल वाले, रोजी डिकेस्ट्रो, बिट्टू गगनेजा और नवी हसन, ताज मोहम्मद, बोधराज घोरवाल, रविन्द्र मोहन दास और बोधराज खोरवाल, अभी मैंने नाम लिया, एमके राज और उदय भानजी, शहरूर नूर अंसारी, रविंद्र मोहन दास, तुलसी मस्कीन और भी बहुत से नाम हैं, वो हम आप तक जरूर आपके पढ़ेंगे। कोशिश रहेगी कि पूरी मेल भी आप तक पढ़कर पहुंचाएं, लेकिन एक गीत आ रहा है आप तक, तो चलिए एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो गीत भाई पहुंचाना बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी ही पसंद का गीत है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये दोस्तों 2:56 का वक्त, और वक्त कह रहा है कि भाई टाटा बाय बाय करना होगा प्रोग्राम हॉटमेल से, लेकिन उससे पहले मैं, मेरी कोशिश है कि मैं सबके नाम ले लूं और इस चीज के लिए माफी मांगना चाहती हूं कि जिनके मेल्स में नहीं पढ़ पाई, जिनके सॉन्ग्स शामिल नहीं कर पाई, लेकिन आपसे ये कहना चाहूंगी बस आप नाराज ना होइए और जुड़े रहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम रोज आता है और आपकी पसंद का ही प्रोग्राम है। जितने भी गाने बजे हैं आपकी ही पसंद के बजे हैं, आप में से ही किसी ना किसी ने भेजे हैं, वो गाने बजे हैं। तो बस जो गाने आप तक आते हैं और आप उनको एंजॉय करिए और आप हमसे जुड़े रहिए, बस इतना चाहते हैं हम। इसी के साथ कुछ मेल्स हम शामिल कर लेते हैं। राशिद हुसैन जी ने हमें मेल किया है, एमके राज जी ने हमें मेल किया है, और संदीप मक्कर जी ने मेल किया है, बसंत कुमार सिन्हा जी ने मेल किया है, संदीप मक्कर जी ने मेल किया है, स्वरण सिंह जी ने मेल किया है, रविंद्र मोहन दास जी ने मेल किया है, शहरूर नूर अंसारी, नीलू यादव,

अक्रम हुसैन प्रिंस, सुरेश नारंग, तेज बहादुर यादव, सुनील पाठक, महेंद्र दीपन, अक्रम हुसैन और सुरेश नारंग, बाबू अंसारी, नवी हुसैन, मनोज बंसल, अहमद फूलवाले, निसार अली, रोजी डिकेस्ट्रो, बिट्टू गगनेजा, नवी हसन, ताज मोहम्मद, बोधराज कोरवाल और हमारे पास मेल आया है दिलीप कुमार जी का, उदय भान जी का और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेल किया, अपने गाने हमें भेजे और कोशिश हमारी रही कि हमने आप तक पहुंचाए और अगर नहीं पहुंचे इसके लिए आपकी शिखा आपसे तहे दिल से माफी मांगती है। और फिर अभी मिलते हैं ना अगले प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में, तो बस बने रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता

0: है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
4: सलाम नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का आवाज अल्फाज और एहसास की इस दुनिया में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना और आपने ट्यून किया है 102.2 FM रेनबो कानपुर के दिल की धड़कन।

तो शो चल रहा है म्यूजिक आर और आज का ये शो थोड़ा अलग है दोस्तों, क्योंकि आज सिर्फ गाने नहीं है यहाँ बल्कि उनके साथ चलने वाली है एक कहानी और उसके हर मोड़ पर होंगे कुछ गाने। हाँ, यहाँ आपका साथ भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको गेस करना होगा कि कहानी का अगला मोड़ क्या होगा और अगला गाना कौन सा हो सकता है। तो अपनी ईमेल आईडी खोलकर हो जाइए तैयार, सब्जेक्ट में लिखिएगा एक कहानी कुछ गाने और भेजेंगे कहाँ? अरे यहाँ AIRKANSOMEDIA@gmail.com पर। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों एक गाने के साथ।

जी हाँ, एक ऐसी ही मदहोश कर देने वाली शाम। अजय रोज की तरह अपनी फेवरेट चाय की टपरी पर बैठा था, तभी वहां एक लड़की आई, हाथ में किताब और चेहरे पर मुस्कान।

और क्या, जी हाँ, उसने सिर्फ इतना ही तो पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? और बस वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसे दोनों ने कभी कोई नाम नहीं दिया।

तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ दोस्ती होगी या दोस्ती से आगे कोई बात या कुछ और बात?

0: कुछ मुलाकातें बहुत छोटी होती हैं दोस्तों, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी भर रहता है। ऐसा होता है ना कई बार, मैं तो कहती हूँ ऐसा अक्सर ही होता है।
1: आया क्या?
2: आएगा।

अब अजय और मीरा रोज मिलने लगे, कभी चाय और चाय के साथ लंबी बातें, कभी यूं ही टहलते टहलते दूर तक निकल जाना और खामोश रहना, तो कभी बिना वजह के ही मुस्कुराना। लेकिन दोनों में से किसी ने भी ये कभी नहीं कहा कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि अक्सर रिश्तों को नाम देने से हम डर जाते हैं, ना जाने क्यों। अच्छा आप बताइए, अगर आप अजय की जगह होते तो क्या करते? क्या अपने दिल की बात बिना संकोच के कह देते?

एक दिन अचानक मीरा शहर छोड़कर चली गई। ना कोई गुड बाय, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन, बस एक छोटा सा मैसेज। कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं।

क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि बिना वजह बिना बताए कोई जिंदगी से चला गया हो और पीछे दे गया हो एक बड़ा सा सन्नाटा। मौसम लिखते हैं गाजियाबाद से कि हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कोई आया जिंदगी में शामिल हुआ दुनिया भर की खुशियाँ दी और फिर एक दिन बिना बताए सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया।

लेकिन ठीक 5 साल बाद उसी चाय की टपरी पर अजय एक बार फिर बैठा था, तभी पीछे से आवाज आई, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं?

वही धुन, वही फिजाएं। अजय बिना पीछे मुड़े ही धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि कुछ लोग लौट कर जरूर आते हैं।

और अजय तक पहुंचने के बाद मीरा ने धीरे से कहा, मैं उस दिन गई ज़रूर थी मगर अपनी ज़िंदगी यहीं छोड़ गई थी, इसलिए लौटना पड़ा। अजय हंसा और बोला, दिल की बातें होती ही ऐसी हैं, कुछ लोग देर से समझते हैं पर समझते ज़रूर हैं, कुछ कहानियाँ अधूरी नहीं रहती, बस उन्हें पूरा होने में थोड़ा वक्त लगता है।

तो अब आप बताइए, अगर आप इस कहानी की हैप्पी एंडिंग लिखते तो वो कैसी होती? इसका सुखांत आपके द्वारा अगर लिखा गया होता तो वो कैसा होता?

102.2 FM रेनबो पर इस कहानी के ताने बाने को बुनने में हमारा साथ दिया आप सभी ने। केशवपुरम से आन्या, वान्या, वानी, रुद्र, आदित्य, स्वरूपनगर से वंदना, रोली, ऋतु, रीना, कंचन, लाल बंगला से महेंद्र, साहिबा और संजय, इसके अलावा सनावत से शेख, मूसा, मोहसिन और मोरटक्का, माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल।

और अब दोस्तों इस प्रोग्राम में आपका साथ मेरे साथ बस यहीं तक, चलते हैं अगले प्रोग्राम की ओर और करेंगे बातें थोड़ी सी सेहत की।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की ओर, करते हैं कुछ सेहत की सार्थक बातें।
1: 102.2 FM रेनबो कानपुर पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम हेल्थ मैगजीन।

0: कार्यक्रम का आज का अंक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता। श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैली अग्रवाल को, जो कि GSVM मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी में प्रोफेसर भी हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी कानपुर के हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद दीपशिखा।
0: डॉक्टर साहब, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहेंगे आपसे जिसमें बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को देखने को मिलती हैं, और वो विषय है माहवारी, जो कि महिलाओं के जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, और उससे जुड़ा ही एक सब्जेक्ट है मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति। तो आज हम चाहेंगे कि मेनोपॉज से जुड़े कुछ सामान्य जो सवाल हैं, कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान आप हमारे श्रोताओं के लिए करें। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति आखिर होती क्या है।
1: सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आपने एक ऐसा टॉपिक चुना है इस अंक के लिए जिस पे हम कम बात करते हैं, जबकि महिलाओं का आप मान के चलिए एक तिहाई जीवन रजोनिवृत्ति के बाद ही व्यतीत होता है, और इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। रजोनिवृत्ति क्या होता है? जब माहवारी बंद हो जाती है उसको हम रजोनिवृत्ति बोलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे शरीर में जो अंडाशय होता है उसमें एक लिमिटेड नंबर एक्स होते हैं, और ये धीरे धीरे एक्स खत्म होने लगते हैं। जब एक्स की संख्या 1000 के करीब पहुंच जाती है तो जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे ये रजोनिवृत्ति हो जाती है। तो जब तक महीना 1 साल तक ना आए तब तक हम माहवारी बंद होना नहीं मानते हैं। तो माहवारी बंद होने के लिए ज़रूरी है कि आपका 1 साल तक आपका पीरियड ना आया हो, तभी हम रजोनिवृत्ति बोलते हैं। लेकिन ये अचानक नहीं होता है, इससे पहले कुछ बदलाव होते हैं महिलाओं के शरीर में, महिलाओं के माहवारी में। तो जो महीना होता है थोड़ा रुक रुक के आता है, चढ़ के आता है, और इस पूरे जो ट्रांजिशन होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। तो ये पेरीमेनोपॉज जो होता है कई कई बार 4-5 साल या अधिक समय का टाइम भी ले सकता है।
0: डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि रजोनिवृत्ति एकदम से नहीं होती है, यानी कि मेनोपॉज एकदम से नहीं आता है, बल्कि उसके पहले एक अवस्था होती है जिसको हम पेरीमेनोपॉज भी बोलते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि पेरीमेनोपॉज का जो एक समय होता है वो लगभग कितना महिलाओं के जीवन में हो सकता है, और क्या क्या लक्षण होते हैं उसके, हम एक बार वापस आपसे जानना चाहेंगे।
1: महिलाओं में जो रजोनिवृत्ति की आयु होती है, इंडिया के सिनेरियो में

0: देखें तो ये है 45 से 50 वर्ष की। कई बार कुछ महिलाओं में आप मान के चले अगर 45 से 50 साल में हो रहा है तो इससे 5 साल पहले का पीरियड जो होता है 40 के आसपास की जो अवस्था होती है पेरीमेनोपॉज में काउंट हो जाती है। इस समय आपके महावारी में थोड़े से बदलाव आने लगते हैं, जैसे पीरियड रेगुलर ना होकर थोड़ा इरेगुलर होने लगता है, थोड़ा ओवरड्यू होने लगता है, पीरियड का फ्लो कम होने लगता है और धीरे धीरे इस टाइप से ये कम हो जाता है। अगर किसी महिला के जो महीने की जो समस्या है, जो महावारी कम हो रही है 40 साल से पहले शुरू हो रही है, तो उसको हम POI बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी। उसके बारे में बाद में बात करेंगे जी। तो जब तक कि जो पीरियड है रुक रुक के जो आ रहा है एक साल तक ना आए, तब तक हम इसको पेरीमेनोपॉज की एज में ही रखेंगे। तो मोटा मोटा आप मान के चल सकते हैं 40 से 42 साल की उम्र में पेरीमेनोपॉज की अवस्था आ जाती है, जो कि महावारी बंद होने तक रहती है। महावारी बंद होते के बाद जो एक साल होता है वो पेरीमेनोपॉज में ही आता है, तो ये पूरी अवस्था पेरीमेनोपॉज की होती है। इस समय जो महिलाओं के शरीर में बदलाव जो आते हैं, एक तो महावारी का अनियमित होना जी। दूसरा थोड़ा वेट गेन होना, और जो वेट गेन होता है ये आपका जो सेंट्रल पार्ट है सेंट्रल ओबेसिटी की तरह आता है। इसके अलावा क्योंकि हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं इस टाइम, तो कुछ मूड चेंजेस भी होते हैं, कुछ हॉट फ्लशेस होते हैं, अचानक से गर्मी लगना, अचानक से मूड चेंजेस, कई बार तनाव ज़्यादा हो जाता है या कई बार एंग्जाइटी होने लगती है, तो ये सब चेंजेस भी हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। धीरे धीरे क्योंकि हार्मोन्स कम हो रहे हैं तो जननांगों में थोड़ा सूखापन, थोड़ा यूरिनरी दिक्कतें, ये सब भी समस्याएं आ सकती हैं। तो ये सभी लक्षण पेरीमेनोपॉज को इंगित करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि प्री ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी एक टर्म होता है जिसका सामना कभी कभी 35 साल से ऊपर की महिलाओं को भी करना पड़ता है, तो हम जानना चाहेंगे इसके विषय में थोड़ा सा विस्तृत तरीके से आप हमें बताएं।
0: अगर 40 साल से पहले किसी महिला का महावारी 4 महीने तक रुक गई है जी। तो उसको हम POI की कैटेगरी में रखते रहें, और इस टाइम अगर महावारी टाइम से पहले बंद हो रही है तो उसके बहुत सारे स्वास्थ्य पे असर पड़ सकते हैं। तो इन महिलाओं में हमें कुछ जांचें भी करानी पड़ती हैं, कुछ हार्मोन लेवल हमें कराने पड़ते हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि ये चीज़ अब POI की तरफ जा रही है। तो इस टाइम हमें उनको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हमारे लिए एक तो वुमेनहुड के लिए ज़रूरी है, दूसरा हमारे कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, बोन्स के लिए प्रोटेक्टिव होता है। तो इन महिलाओं में हमें स्पेशली रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। तो कभी भी किसी समस्या को आप ऐसा ना माने कि ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाता है। अगर 4 महीने तक महीना नहीं आ रहा है आपका और आयु आपकी 40 साल से कम है तो ज़रूर डॉक्टर से परामर्श करें, हो सकता है कि आप POI की तरफ जा रही हूँ। दूसरी चीज़ यह है कि जैसे आजकल है यंग गर्ल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, तो शादी वगैरह लेट हो रही है, जैसे जॉब के चक्कर में है सबके, तो उस अवस्था में भी अगर POI की तरफ जा रही हैं तो कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो आपको उस टाइम भी डॉक्टर की हेल्प चाहिए होगी, ताकि कुछ और साधन अपनाने पड़ते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने अभी हमारे साथ साझा की, और कार्यक्रम में बातें अभी और भी होंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे सभी लिसनर्स को अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप सुनवा दें।
0: मेरी पसंद का एक गीत है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। यह हमारी सभी महिलाओं को मैं डेडिकेट करना चाहूंगी।
2: रुक जाना

0: ये खूबसूरत सा गीत सुनकर एक बार वापस आ चुके हैं अपने स्टूडियो में, जहां आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शैली अग्रवाल से, जो कि GSVM मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी में प्रोफेसर हैं और शहर की एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज के बारे में बातचीत करना जरूरी क्यों है, इसका सामाजिक संदर्भ क्या है?
1: पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के बारे में हमें बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये ना केवल महिला को प्रभावित करता है बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है, और समाज में इसके बारे में जो जानकारी है, जो अवेयरनेस है, बहुत बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। महिलाओं का स्वास्थ्य पे तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, साथ ही कुछ मानसिक रूप से भी बदलाव आते हैं, शारीरिक रूप से बदलाव आते हैं। इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पूरे परिवार पर पड़ता है, क्योंकि कई बार आता है कि इस टाइम महिला का थोड़ा मूड चिड़चिड़ापन आ जाता है और परिवार उसको ना समझे तो घर में झगड़ों की नौबत भी आ जाती है, बच्चों से बहुत झगड़े होते हैं। तो जो पुरुष समाज है हमारा, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी जानना चाहिए कि माँ में ऐसे बदलाव क्यों आ रहे हैं, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज की वजह से हो रहा है। इसके अलावा इस टाइम जो होता है, आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं तो आपका एक सेकेंड फेज ऑफ लाइफ शुरू हो रहा है, तो इसको आप एक नए अध्याय के रूप में देख सकते हैं। तो क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चे अपने स्टडीज में सेटल हो चुके हैं, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने पर ध्यान दें अपने।
2: इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम, जिसका नाम है हेल्थ मैगजीन, यहीं पूरा होता है। दोस्तों, आज आपने डॉक्टर शैली अग्रवाल की बातचीत सुनी, विषय था मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज, और उनसे बातचीत की थी दीप शिखा गुप्ता ने।

तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नए एहसासों के साथ। जी हाँ, हो जाइए तैयार क्योंकि लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम आपकी पसंद। और आपकी पसंद में सुनते हैं ये गीत सबसे पहले।

दोस्तों होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु और इनके अलावा आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली पथिक हैं सहारनपुर से, गंज डुंडवारा से हैं समशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान। मास्टर अशोक वर्मा आप हमें मेल कर रहे हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, और आपके साथ हैं अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, राम चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। इसके अलावा गांधीनगर कानपुर से हमारे पास ईमेल आया और वो कह रहे हैं कि कल हमने एक बहुत ही खूबसूरत लिखने वाले एक मशहूर शायर को खो दिया। जी हाँ, आप बात कर रहे हैं बशीर बद्र साहब की।

तो आप चाहते हैं कि बशीर बद्र साहब का कोई भी गीत सुनवा दिया जाए। आप लोग हैं गांधी ग्राम कानपुर से, आपका नाम है आलोक, रीति, अनु, प्रीति, वंदना, साहिल, अमित और गिरजा। जी हाँ, हम आपको ये ज़रूर सुनवाएंगे। ये गीत तो नहीं है पूरा का पूरा बशीर बद्र साहब का, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत सा एक गीत है, एक कव्वाली के फॉर्म में गाया गया है इसे, और इसकी शुरुआत की गई है बशीर साहब के शेर के साथ।

बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मेघा और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजत खुराना, केशु और रिधान खुराना हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। इनके अलावा बेबी आलिया, अयान बाबू, नौशाद सलमानी, निसार सलमानी और आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं धनौरी तेलीवाला से। प्यार भरा आदाब हमें भेजा है सनावत से शेख मूसा मोहसिन साहब ने। इसके अलावा सप्रेम नमस्कार है मोर टक्का माफी जिला खंडवा से, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्ते। आप हैं श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी, किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल, प्रशांत शिंदे, रूशी, यशराज, सुनीता, रोहिदास चौक से हैं। और लीजिए आपको सुनवाते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

गंज डोंडवारा यूपी से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से हैं अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ, आरजू जूही, इकबाल, इमरान अहमद और कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हैं बिटिया आमना, नसरीन, आसमा, परी, राबिया, मंतशा, आशु, अहमद फूलवाले और पूरी की पूरी इनकी फैमिली हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है, ऐसा इन्होंने ईमेल करके हमें बताया है। और हरजिंदर सिंह भाटिया, आप हमसे जुड़े हैं जमशेदपुर से और आपके साथ हैं एंजल भाटिया, पप्पी और सोनू भाटिया। इसके अलावा मानस अग्रहरी, आप हमें बता रहे हैं कि मैं इस वक्त नैनीताल में घूमने आया हूं और आज तो एवरेस्ट डे भी है। जी हां, आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल एवरेस्ट डे और इस दिन की वजह से, क्योंकि ये इस वक्त पहाड़ों पर भी हैं और ये चाहते हैं कि कोई पहाड़ों से रिलेटेड गीत इन्हें सुनवा दिया जाए, तो इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है हमारी प्ले लिस्ट में, लीजिए हम आपको सुनवाते हैं।

भाई सफर जब इतना सुरीला हो तो जिंदगी भी आसानी से कट जाती है। आप सुन रहे हैं आपकी पसंद 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना। और अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत मक्कड़ और कमल साहनी। और आप हैं पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से। कुंभार गली श्रीरामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सनिका दले। और पुनावल्ले पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका और विशाखा सोनवने। मंदीचक भागलपुर बिहार से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं दिलीप कुमार सोनी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आप लोग जुड़े हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं रोहित, निशांत, सोनू, सानू और दीपांशी। और इनका कहना है कि आज पृथ्वीराज कपूर साहब को याद करने का दिन है, आज उनकी पुण्यतिथि है, तो फिल्मों के मुगले आजम का गीत जरूर सुनवा दिया जाए। तो भाई वाकई हम मानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर साहब फिल्मों के मुगले आजम हैं, फिल्म आजम है, और उनकी इस फिल्म मुगले आजम का गीत हम आप सभी को सुनवाते हैं।

किशोर नगर अमरावती से आप हैं हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे और सिद्धार्थ गोंडाने। इनके अलावा मलियान सरधना मेरठ से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं अनिल जैन, संयम मुस्कान जीवमय जैन और सरथना मेरठ से हमारे साथ ही कनेक्ट हैं आदि जैन। आपने दो बार अपनी जगह का नाम लिखा हुआ है, अंश जैन और भव्य जैन। इनके अलावा जिला मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरान और नरगिस खातून। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से हमारे साथ अभी अभी कनेक्ट हुए हैं आप हैं मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां नाज, फरज जहां नाज, रिफत जहां नाज, नुजहत जहां नाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। और आप सभी बहनें हैं और कह रही हैं कि हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम में हमें शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम से कनेक्ट होने के लिए, प्रोग्राम को लाइव सुनने के लिए और अपनी पसंद हमें भेजने के लिए।

रंजना बहन जी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्ते। आप हैं आफताब अंसारी और आप कह रहे हैं कि आप हमेशा ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहिए और खुशियां बिखेरते रहिए। जी हाँ, यकीनन आप अपना साथ बनाए रखिए, हम अपनी आवाज़ और अंदाज़ हमेशा बरकरार रखेंगे। आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम पेश करने का अंदाज़ बहुत ही शानदार है और आप हैं गंज डुंडवारा यूपी से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। इनके साथ रंजना जी सभी गीत बड़े ही सुरीले लग रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से। चार मेल भेज चुका हूँ लेकिन अभी तक कोई भी शामिल नहीं हुआ है। अरे बाप रे, बड़ा ही गुस्से वाला एक ये ईमेल हमारे पास आया है। आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं भाई, आपके साथ अन्याय करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और ऐसा हम सिर्फ मानते ही नहीं हैं, ऐसा हम बिल्कुल सच भी है, क्योंकि आप जब हमारा प्रोग्राम सुनते हैं तो आप हमें प्रोग्राम प्रेजेंट करने में आनंद आता है, तो आपको इग्नोर करने का तो सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपके ईमेल्स काफ़ी नीचे चले जाते हैं, हमें बहुत नीचे तक स्क्रॉल करना पड़ता है और सामने कई बार आ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बाकी जो ईमेल्स आ रही होती हैं लगातार वो भी तो आपके ही अपने मित्रों की हैं, आपके साथ वालों की हैं। लेकिन अब गुस्सा छोड़ दीजिए जनाब, क्योंकि आपकी ईमेल हमारे सामने आ चुकी है और हमने उसे शामिल भी कर लिया है। आप हैं वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से, जयराम सिंगरकड़, दिशांत कुमार सिंगरकर और अर्पिता जी। न्यू दिल्ली से हैं कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु। इसके अलावा हमारे साथ और जो श्रोता हमारे कनेक्ट हुए हैं वो है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब के लिसनर्स, बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं आप सभी और आपके नाम है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। और देखिए एक बेहद खूबसूरत सा गीत आ रहा है आप सभी के लिए।

खंडवा से ही हमारे साथ जुड़े हैं योगेश गुजराती, आनंद जोशी और दुर्गा प्रसाद सैनी। भाई क्या बात है, नाराजगी पे नाराजगी वाले ईमेल्स हमारे पास आ रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी हमें कह रहे हैं कि भाई क्या आप अपने कुछ चहेते श्रोताओं को ही शामिल करते हैं। भाई क्या कह रहे हैं आप, हमारे सबसे चहेते श्रोता तो आप हैं। तो धर्म जी ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें, आप भी जानते हैं कि हमारे लिए सभी श्रोता एक जैसे हैं और हम सबसे बराबर प्यार करते हैं। जैसे कि आप श्रोता, हम रेडियो वालों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो हमारी मोहब्बत पर शक तो ना कीजिए साहब। क्योंकि आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि आखिर कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, हमने कितने सारे मैसेज आपको भेजे हैं, लेकिन जनाब इंतज़ार का फल भी तो देखिए मीठा होता है। ले लिया ना हमने आपका ईमेल, शामिल हो गई आपकी फरमाइश। और आपके साथ हैं कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। सूरज रेडियो श्रोता संघ से हमारे साथ जुड़े हैं सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से हैं आप। गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत और अगेन एक ईमेल जो है हमें दोबारा से मिल गई है खंडवा रोड सनावत से। तो देखिए यही तो मुश्किल होती है ना कि आप बार बार ईमेल्स करते रहते हैं और ऐसे में क्या होता है कि और जो आपके दोस्त हैं, आपके जो श्रोता मित्र हैं, उनकी ईमेल्स छिप जाती हैं, हमें मिल नहीं पाती और उसके बाद वो बहुत हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, एक मेल हमें भेजिए, हमें मिल जाएगी और हम आपको गीत भी सुनवाएंगे, आपके नाम भी शामिल ज़रूर करेंगे।

जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। और आपने हमें लिख भेजा है, प्यारी सिस्टर आरजे रंजना जी को हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी हमारा प्यार भरा आदाब। और जब इतने खूबसूरत संबोधन आप हमें भेजते हैं ना, तो यकीन जानिए हमें बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही आपने बड़े काम की बात लिखी है कि गर्मी से बचाव रखें और ठंडे पदार्थों का प्रयोग करें। जी हाँ, बिल्कुल गर्मी है और ऐसे में हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो हमें उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। इनके अलावा किशनगंज बिहार से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया निसार, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल और जैनब मुजावर। नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और सई गायकवाड़ हैं, आप लोग ओम रेडियो श्रोता संघ के सदस्य हैं और हमें हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से। बडिंगखेड़ा पंजाब

इसके साथ ही दोस्तों आपकी पसंद का सिलसिला यहीं थमता है, मगर जनाब मोहब्बतों का सिलसिला कहाँ रुकता है, कहाँ ठहरता है। तो मोहब्बतें बनाए रखिए और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

नमस्कार, शाम के 5 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। यह विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान और भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन सेवा और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काई कॉस्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से अफरा तफरी मच गई। तेज बहाव में कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों शव भूरा देव मंदिर के पास बरामद हुए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य चलाकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आज जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने लोगों से जल प्रभाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत कई जिलों में तेज आंधी, मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD लखनऊ केंद्र ने आज सुबह जारी की। चंद्रशेखर आजाद कृषि और मौसम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉ SN सुनील पांडे ने बताया कि प्रयागराज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

टेन की बात होगी। तो भाई टॉप 10 गीतों की बात करें तो आज हम बात करेंगे ईयर 2 के से लेकर कुछ और सालों की जो गाने बहुत हिट हुए एंड लोग इस जुबान पर आज भी हैं और आज भी जब ये गाने बजते हैं तो लोग इसे फटाफट यूं ही गुनगुनाने लगते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू 100.7 एफएम रेनबो। पहला गाना जो आज हम प्ले करने जा रहे हैं ये गाना फिल्म जोश का है और ये गाना आपको बता दें गोवा में शूट हुआ। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोवा में हुई हुई है और आपको बता दें ऐश्वर्या राय एंड चंद्रचूड़ सिंह की बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है इस गाने में और ये गाना अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया है, म्यूजिक अनु मलिक का है एंड इस फिल्म की कहानी आपको बता दें हॉलीवुड की मशहूर फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी से इंस्पायर्ड थी और इस फिल्म के गाने बहुत सुपर डुपर हिट हुए। तो चलिए अब बिना देर के नंबर 10 पे सुनते हैं गाना उस समय का फिल्म जोश का, कौन सा सुनिए।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
3: अब हम टॉप 10 में नंबर 9 सॉन्ग की बात करते हैं। वो सॉन्ग है फिल्म धड़कन का, जो साल 2000 में रिलीज हुई थी। अपनी शानदार स्टार कास्ट, बेहतरीन प्रेम कहानी और सदाबहार संगीत के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। आइकॉनिक म्यूजिक और गाने थे। फिल्म का संगीत नदीम शर्मा ने दिया था, जो आज भी लोगों की जबान पर है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि फिल्म का जो टाइटल है धड़कन शब्द को लगभग आप हर सुपरहिट गाने में बहुत ही खूबसूरती से इसको वीव किया गया, यानी यू कैन लिसन टू इट वेरी इजीली। फिलहाल यह खूबसूरत ट्रैक ऑन नंबर 9 धड़कन मूवी का आप एंजॉय कीजिए।

चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

नंबर 8 सॉन्ग है मोहब्बत फिल्म का, आंखें खुली हो या बंद। ये गाना सिर्फ शब्दों और म्यूजिक का मेल नहीं, बल्कि इसमें फिल्म की जो भावना है, फीलिंग्स हैं, कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी दिखाई देती है। और इस आइकॉनिक गीत को आनंद बख्शी साहब ने लिखा और म्यूजिक जतिन ललित ने दिया।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूँ?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.

5:32 और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म धूम का गाना और नंबर 5। पर साल 2004 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इसके बाद आई धूम 2 और धूम 3 ने भी एक्शन और थ्रिल का ऐसा लेवल सेट किया कि आज भी इस दूसरी फिल्म का लोग इंतजार बहुत कर रहे हैं। और आपको साथ ही बता दें कि इस फिल्म में उदय चोपड़ा का बहुत चुलबुला अंदाज लोगों को देखकर मजा आया। आइकॉनिक डायलॉग भी खुद उदय चोपड़ा ने ही लिखे थे।

नंबर 5 पे धूम मचाने के बाद नंबर 4 पर है गाना वो बंटी एंड बबली का। जब 2005 में फिल्म बंटी और बबली का सुपर हिट गाना कजरारे बना था तो इसके पीछे एक बहुत मजेदार किस्सा आपसे शेयर कर रही हूँ। शुरुआत में शंकर एहसान लॉय की टीम ने अमिताभ बच्चन के हिस्से के लिए एक रफ डबिंग करवाई थी। ये सिर्फ उन्हें समझाने के लिए था कि गाना ये कैसा लगेगा। लेकिन जब अमिताभ बच्चन को अपना फाइनल हिस्सा रिकॉर्ड करना था तो उन्हें बताया गया कि गाने का नाम कजरारे है, तो उन्हें बताया कि इस रफ डबिंग को वो पहले ही सुन चुके हैं और उन्हें वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने दोबारा डब करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उस रफ वर्जन में वो जादू और मस्ती उसे बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए एंजॉय करते हैं मस्ती भरा सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म बंटी एंड बबली ऑन आर 4 और द नंबर 4।

नाफ्टर कजरारे द सॉन्ग नंबर 3 इज फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है. तीन दोस्तों की बहुत प्यारी सी कहानी जिसमें से तीनों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ हमेशा निभाया. एंड लवली सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है. कोई कहे कहता इज ऑन नंबर 3.

जी बिल्कुल, अंदाज पुराना नहीं अंदाज नया है, और अंदाज नए में 2006 की आई मूवी का भी अलविदा ना कहने की बात करते हैं। मूवी का एक सॉन्ग बहुत प्यारा सा, मूवी का सॉन्ग मितवा, एक ऐसे मोड़ पे आता है जब दो किरदार यानी शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को यह एहसास होता है कि वो जो है वो एक दूसरे के लिए, जो उन लोग के रिलेशनशिप थे, मैरिज रिलेशनशिप, वो परफेक्ट नहीं थे, और उन लोग को एहसास होता कि वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे के प्यार में, और बहुत ही प्यारा गाना पिक्चराइज किया गया है, और एक दूसरे की भावनाओं से भागना चाहते हैं लेकिन फिर उनके दिल एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। इस गाने में इस बात को बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया, मितवा यानी दोस्ती हम सफर, तो दुनिया की सारी बंदिशें और डर पीछे छूट जाते हैं जब प्यार आपके दिलों पर दस्तक देता है, इस गाने में ये कहा गया है। और कभी अलविदा ना कहना 2006 की मूवी, बहुत प्यारी सी मूवी एंड बहुत प्यारा सा ट्रैक, विच यूर गोइंग टू लिसन 107 FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है FM Top 10 शिल्पी आपके साथ 107 पे।

और 5:54 क्या 5:55 हो गए, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है। एंड यस, यू आर वेटिंग फॉर द नंबर वन सॉन्ग। सो नंबर वन सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी जब वी मेट। बहुत खूबसूरत सी मूवी एंड ऐसा गीत है ये जो मैं प्ले करने जा रही हूँ, आओ मिलो चले। सुकून, आज़ादी और अनजाने सफर के एक्साइटमेंट को बयां करने वाला सॉन्ग, इम्तियाज अली की फिल्म बहुत खूबसूरत पड़ाव, जहाँ पर आदित्य और गीत जिन्होंने किरदार निभाया, अपनी अपनी मंजिलों को से दूर खुद को तलाशने की एक नई शुरुआत करने के सफर पर निकलते हैं। इस गीत में शान की मखमली आवाज और उस्ताद सुल्तान खान के सरंगी की जुगलबंदी ने इसे एक रूहानी गहराई दी है। और जो खूबसूरत पहाड़ी रास्ते और बर्फीले इलाके हैं वो मनाली शिमला के हैं, जहां पर इसे शूट किया जाता है। वंडरफुल सॉन्ग एंड वेलकम टॉप 10 नंबर वन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जब वी मेट। एंजॉय।

आज बजकर 58 मिनट 28 सेकंड प्रोग्राम वाइड अप करने की इजाजत चाहती है शिल्पी, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो आपका खूबसूरत प्रोग्राम दर इज शाम अवध, उसको लेकर फिर से हाजिर होती हूँ बस कुछ ही पलों में। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड 207।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार। शाम के 6 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक से रसोई गैस कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। खुदरा बिक्री केंद्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 150 जिलों ने पेट्रोल में 30% वृद्धि और 156 जिलों ने 30% से अधिक वृद्धि की सूचना दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है। दो पासपोर्ट मामले में सपा नेता अब्दुल्ला आजम को राहत मिली है। रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज उनकी अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा और 50,000 रूपये का जुर्माना लगाया था। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद सजा खत्म हो गई है। हालांकि दो पैन कार्ड मामले में सजा के चलते जेल में बंद अब्दुल्ला आजम फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी, तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी 100.7 FM रेनबो पर इस पल मैं हूँ इस पार और आप हैं उस पार, यानी कि शिल्पी है आपके लिए प्रोग्राम शामे अवध लेकर बिल्कुल तैयार। और शामे अवध में हम ढेर सारी बातें करते हैं, आपको बहुत सारी जानकारियां देते हैं, ट्रैफिक की जानकारी आपको मिलती है, इसके अलावा और भी बातें जो आपके काम की होती हैं हमारे काम की भी होती है, वो हम आपसे शेयर करते हैं। वैसे हम आपको बताएं कि ये जो बारिश हुई है, हल्की फुल्की ही सही जो बारिश हुई है, उससे मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो गया। यानी जो हमारी जमीन तप रही थी, बिल्कुल गर्मी हो रही थी, उसने मन को ठंडक पहुंचाई और शरीर को भी ठंडक पहुंचाई। यानी कुछ अच्छा लगा नहीं तो वो लू चलती थी, उससे हाल बेहाल रहता था, और अब थोड़ी हवाओं में ठंडक ने जगह ली है। और भाई ये खास बात ये होती है कि जब भी कुछ बदलाव होता है तो बहुत ही खूबसूरत होता है। कुछ दिन अगर आपके जिंदगी में कुछ दुख के बादल आ जाते हैं, कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं सुख के बादल जरूर आएंगे। और यूं ही बारिश होगी, गर्मी जाएगी और आपको सुकून मिलेगा। बहरहाल बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हम एक खूबसूरत सा ट्रैक प्ले करते हैं, उसके बाद बहुत काम की बात आपके लिए लेकर बिल्कुल हैं हम तैयार।

कुछ हमारी ड्यूटीज होती हैं एक इंडियन सिटीजन के नाते कि हमको जितने भी टैक्सेस हैं वो टाइम पे जमा कर देने चाहिए। आपको बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यानी आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2020 से

27 के लिए रिटर्न 2 को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब जो भी टैक्स पेयर हैं वो ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ITR 2 ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और ये जो असेसमेंट ईयर 26-27 है उसके लिए आयकर रिटर्न 2 को ऑनलाइन दाखिल करने और एक्सेस करने दोनों की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो बस अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना है तो फिर अब ऑनलाइन आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आसानी से हम ये गाना प्ले कर सकते हैं, कौन सा गाना ये आप एंजॉय कीजिए, लेकिन आवाज बड़ी प्यारी सरजीत सिंह जी की है।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, 100.7 FM रेनबो लखनऊ की धड़कन, धड़कन लखनऊ की और हमारी आपकी धड़कन। फिलहाल मेरा दिल धड़क रहा है क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई की बात होती है तो मेरा दिल ऑटोमेटिकली धक धक करने लगता है। मैं आपको बताने जा रही हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2026-27 में MBN फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कार्यक्रम में प्रवेश शुरू कर दिए हैं और ये 2 साल का PG प्रोग्राम है। एंड इंस्टीट्यूट

ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस की ओर से इसे पेश किया जा रहा है। 60 सीट्स हैं इसमें और ये युवाओं को फार्मास्यूटिकल में इस बिजनेस में इस जगह पर आपको रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। और जितनी भी जानकारी है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। और भाई आपको हम बता दें कि आप अगर चाहते हैं इस फील्ड में जाना तो ज़रूर जाइए और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। और आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें।

0: जी आप भी पूछते हैं कैसे हुआ, जब तक आपको ट्रैफिक की पूरी जानकारी नहीं होती और अचानक से डाइवर्जन हो जाते हैं, तो ट्रैफिक की जानकारी होना जरूरी है। और ट्रैफिक की जानकारी देने के लिए हमारे साथ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह जी हैं। आइए उनसे, विकास सिंह जी से ही जानकारी लेते हैं कि क्या है ट्रैफिक का हाल हमारे शहर में। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम शाम ए वक्त में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुड इवनिंग, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: जी सर, बताइए कि लखनऊ में आज ट्रैफिक का क्या हाल है, और बहुत ज्यादा कहीं डाइवर्जेंस वगैरह तो कुछ ऐसे नहीं कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े?
1: जी मैम, अभी तो वर्तमान में कोई विशेष डाइवर्जन नहीं है,
0: जी।
1: बस ये है कि पीक आवर्स का समय चल रहा है, तो पीक आवर्स के समय में थोड़ा अतिरिक्त ट्रैफिक लोड रहता है हमारे सभी प्रमुख मार्गों पर।
0: जी जी
1: जैसा कि अभी अंडे की चौकी की तरफ थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा वहां पर दबाव है,
0: जी
1: और यदि आप अंधे की चौकी और काकोरी साइड में सफर कर रहे हैं तो कृपया आप वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें ताकि आपको असुविधा का सामना न करना पड़े। पहले से ही सजग रहेंगे तो आप जो है वैकल्पिक मार्ग चयन कर पाएंगे और अपने गंतव्य तक सुगमता से जा सकेंगे।
0: जी
1: यदि
0: हमें
1: आप अंधे की चौकी की तरफ जा रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है किसी प्रकार से, ट्रैफिक आवश्यक चाहिए, आपको अविलंब पहुंचना है, मेडिकल इमरजेंसी है,
0: जी
1: तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9454451555 पर आप संपर्क कर सकते हैं।

0: एक बार ये
1: अन्य
0: नंबर सर फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि जो लोग इस संपर्क करना चाहें वो तुरंत इन नंबरों पर संपर्क कर सकें। जी
1: जी मैम, 9454405155
0: जी
1: ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, और किसी प्रकार की ट्रैफिक की असुविधा पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अवगत भी करा सकते हैं। साथ ही हम ट्विटर और फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से भी, हमारा लखनऊ ट्रैफिक का पेज है जिसपे हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, वहां पर भी आप हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैम अगर बात करें लखनऊ का अयोध्या की, तो हमारा जो कमता से लेकर के चिन्हट का एरिया है ये थोड़ा सा प्रेशर में है, और शहीद पथ की बात करें तो जो हमारा शहीद पथ के पास में विजयपुर अंडर पास के पास में थोड़ा सा ट्रैफिक है, बाकी सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है। ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस प्रतिबद्ध होकर सुगम यातायात का संचालन करा रही है। जैसा कि अभी अवगत कराया गया कि अगर आपको कहीं असुविधा हो रही है तो आप हमें हेल्पलाइन नंबर जो हमने अभी अवेलेबल कराया उस पर संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जी मैम,
0: सर एक बात और जानना चाह रहे थे कि बल्कि जानना क्या चाह रहे थे, बस आपके थ्रू एक मैसेज अपने लिसनर्स को पहुंचाना चाह रहे थे कि सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं फैमिली को भी, और जिसकी दुर्घटना होती है जो क्षति हो पहुंचती है वो किसी एक परिवार की नहीं होती कि, मतलब एक इंसान की नहीं पूरे परिवार की होती है। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को कि क्या सावधानियां बरतें, खास तौर पर जो युवा हमारे हैं जो कान में लीड लगाकर चलते हैं और उन्हें अक्सर यह आभास नहीं होता कि पीछे से लगातार कोई हॉर्न उनको दे रहा है किनारे हटने का और वो यूं ही ट्रैफिक का अनदेखा करते हुए आगे चलते हैं। जी
1: बिल्कुल मैम, और आपके माध्यम से हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम श्रोताओं तक ये चीज पहुंचा पा रहे हैं, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप जो है यातायात नियमों का पालन करते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं से बचते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में जहां एक तरफ एक परिवार के लिए दिक्कत होती है, वहीं दूसरे तरफ दुर्घटना में घायल दूसरा व्यक्ति दो परिवारों के लिए समस्या उत्पन्न होती है, दो जान जोखिम में रहता है। तो इसलिए अनुरोध है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सड़क दुर्घटनाओं का कारण होता है मोबाइल हैंडलिंग, जैसे आपने बताया कि जब वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का यूज करना, ओवर स्पीड, वाहन का ओवर स्पीड जो है सड़क दुर्घटनाओं में सबसे बड़ा कारण होता है। मादक द्रव्यों का सेवन करके वाहन चलाना, रेड लाइट जंपिंग करना तथा रॉन्ग साइड में वाहन चलाना, ये सब कारण जो होते हैं ये सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के कारण में होते हैं।
0: जी जी।
1: साथ ही बाइक चलाते समय हेलमेट ना धारण करना, अगर देखा जाए कि दो पहिया चालकों में सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण यही रहा है सड़क दुर्घटना में, कि यदि डॉक्टरों द्वारा भी बताया गया कि अगर उन्होंने हेलमेट लगा लिया होता तो शायद हम उनकी जान बचा लेते। तो मेरा यही अनुरोध है कि कृपया यातायात नियमों का पालन करें, इनसे बाइक चला रहे हैं तो आप हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें ताकि जो है आप किसी भी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना से बच सके, और यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ सुनते रहे 100.7 FM।
0: जी जी, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद विकास सिंह जी, संपूर्ण जानकारी हम तक देने के लिए और साथ ही हमारे श्रोताओं को देने के लिए। और जैसा कि विकास सिंह जी ने कहा कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है, तो कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी मत कीजिए और ये हेलमेट हमेशा लगा के चलिए। इसको जो है वो अक्सर लोग बाइक के हैंडल पे टांग लेते हैं और बाइक के हैंडल को उतनी जरूरत नहीं है सेफ्टी की जितने आपके सर को है। तो भाई ध्यान रखिए और फिलहाल एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम शाम अवध शिल्पी के साथ।

जी 6:36:54 हो गए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कौन सा शाम अवध। और भाई हर कहते हैं ना कि हर दिन कुछ ना कुछ खासियत समेटे रहता है, जैसे आज का दिन आज माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जा रहा है और ये दिन जो होता है साहस दृढ़ निश्चय और मानव इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन साल 1953 में न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और नेपाल के प्रसिद्ध शेरपा तेनसिंग नोर्गे ने पहली बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक पहुंचकर एक हिस्ट्री क्रिएट की थी और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में हर साल माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। दरअसल माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वो एक पर्वत नहीं है बल्कि ये एक संदेश है कि कठिन से कठिन लक्ष्य भी साहस धैर्य और निरंतर प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है और सभी उन माउंटेनियर्स को ये समर्पित है जो चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करना सीखते हैं और अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो अगर अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए हर कठिन से कठिन डगरिया कैसे प्रेम डगरिया बन जाती है। कैसे? लीजिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे

0: कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: तो भाई ट्रैफिक की जानकारी के बाद और ढेर सारी जानकारी के बाद अब एक और मतलब की बात आपको बता देते हैं। 6:44 हो गए, मतलब की बात ये नहीं, इस समय में मतलब की बात जो आपको बता रही हूँ वो सुनिए। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने 28 मई को जो भी प्रपोज्ड जितने भी एनुअल और इवन सेमेस्टर के और विशेष बैक पेपर जो है उनकी जो एग्जाम्स डेट थी उस बदल दी है। अब ये

परीक्षाएं 31 मई को होंगी, इस चीज का खास ध्यान रखिए। यानी पॉलिटेक्निक परीक्षा अब 31 मई को होगी। यही नहीं, इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी एकेटीयू ने भी सभी परीक्षाओं को 28 मई की परीक्षाओं को तारीख उसकी बदल दी है और ये परीक्षाएं अब नई तारीखों पर होंगी, जिसका जो शेड्यूल है वो जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो मैंने कहा उपलब्ध करा दूं, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई के बाद जब एग्जाम्स की बारी आती है तो वो टाइम पर अगर नहीं हो पाते तो दिल की धड़कने और बढ़ जाती है, यानी जैसे लगता है एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन अगर किसी वजह से वो टल जाता है तो लगता है चलिए हमें एक दिन और मिल गया प्रिपरेशन का। तो चलिए, अभी तो यानी पॉलिटेक्निक एग्जाम्स तो 31 मई को होंगे, लेकिन एकेटीयू की परीक्षाएं आपको वेबसाइट पर मिलेंगी, जिसको आप विजिट कर सकते हैं, और विजिट ही नहीं कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि अब एग्जाम्स कब होंगे।

जी बंधु सका हम ही है, तभी हम आपको बहुत मतलब की बातें बताते रहते हैं। प्रोग्राम शाम अवध में 6:50 पर हम आपको बता दें कि लखनऊ से वाराणसी के बीच चलने वाली लखनऊ वाराणसी लखनऊ स्पेशल गाड़ी अब नियमित रूप से दौड़ेगी। और आपको बता दें वाराणसी से ट्रेन का जो है वो नियमित संचालन 28 मई और चारबाग स्टेशन से लखनऊ वाराणसी एक्सप्रेस का संचालन 28 मई यानी कल से हो चुका है, नियमित रूप से होगा। और ये बहुत ही खास बात है क्योंकि ऐसा है ना कि जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और ऐसे में कोई ट्रेन ऐसी स्पेशल अगर आपको जाना है और नियमित रूप से चलने लगी तो आपको डे स्पेशल नहीं रहेगा कि इस दिन जाना होगा या इस दिन जाना होगा, आपका जब मन हो वो आप डिसाइड करेंगे और आपको ट्रेन मिलेगी, फटाफट आप चल देंगे।

जी तो प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम आ रहा है, 6:54 हो गए। चलते चलते आपको बताते हैं कि गर्मी के मौसम के चलते डायरिया और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगी है। तो भाई बहुत अलर्ट रहने की बात है, अलर्ट रहने की ये बात है कि प्रोसेस जो बाहर का खाना बिल्कुल भी मत लीजिए, और बाहर धूप से अगर एकदम से एसी के संपर्क में ना आइए या एसी से तुरंत बाहर ना निकलिए, और साथ ही बहुत तेज धूप जो होती है उसमें बच्चों को ले जाने से बचिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं। और साथ ही जब आप निकलिए तो आप भी बहुत ध्यान रखिए कि घर से पानी पीकर निकलिए, साथ पानी की बोतल साथ में रहनी चाहिए, और साथ ही सिर को ढक के रखिए। अगर चाहिए तो आप अम्ब्रेला का भी यूज कर सकते हैं ताकि आप गर्मी से बचे रहे और गर्मी की जो समस्या है डायरिया और डिहाइड्रेशन से भी आपकी बचत रहे। फिलहाल भी प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में एक बार फिर शिल्पी रहेगी आपके साथ। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय करते हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में एक बार फिर मेरा आपका रहेगा साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

नमस्कार, शाम के 7 बजे आप सुनिए टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। जनपद हमीरपुर के ललपुलार थाना क्षेत्र के मोरांकादार गांव के पास आज बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दो पासपोर्ट मामले में सपा नेता अब्दुल्ला आजम को राहत मिली है। रामपुर में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने आज उनकी अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को गोवा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गोवा के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने इटावा और अय्या के विद्युत विभाग के अधिकारी और जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने विद्युत विभाग में लापरवाही गड़बड़ियां रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के तेज बहाव में कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 5 पर आज टीन शेड गिरने के कारण टीन शेड के नीचे कई यात्री दब गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी आरपीएफ ने राहत बचाव कार्य करते हुए सभी को बाहर निकाला। हादसे में 2 यात्री और 1 टीटी घायल है। कानपुर नगर के उद्योग निदेशालय सभागार में लीड बैंक द्वारा एसएलबीसी उत्तर प्रदेश के समन्वयक से ईसीएलजीएस 5 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संबंधित हितधारकों को योजना से विभिन्न पहलुओं के अवगत कराना है। बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला प्रादेशिक बुलेटिन समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
6: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
5: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
7: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
5: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat। तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है AIRKANN

0: SOMEDIA@gmail.com।
1: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।

0: बोल तो मीठे अच्छे लगते हैं, तीखे बोल कहाँ अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी इस मोहब्बत में तीखे बोल भी हो जाते हैं और जो बाद में मीठे में तब्दील हो जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे कौन जुड़े हैं जानते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते जी।
0: गुड इवनिंग, नमस्ते, जल्दी से अपना नाम बताइए हमारे सभी श्रोताओं को और साथ ही हमको भी।
1: जी विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर।
0: जिला सीतापुर से विनीत जी हमारे साथ हैं। कैसे हैं विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका प्रोग्राम हेलो एफएम में।
1: धन्यवाद धन्यवाद, आपने पहली कॉल मेरी उठाई
0: जी। अरे पहली कॉल, जो भी कॉल आती मैं उठाती, ऐसा हो भी नहीं सकता कि कॉल ना उठाऊं, क्योंकि भाई ये प्रोग्राम ही आप फोन करते हैं तभी ये प्रोग्राम है। अच्छा ये बताइए विनीत जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, सब बढ़िया है।
0: और क्या करते हैं?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती बाड़ी करते हैं, तो आजकल क्या आपने आपके खेतों में आजकल क्या लहलहा रहा है?
1: गन्ने की फसल है और धान की नर्सरी डाली हुई है
0: जी। अच्छा ये जो बहुत तेज धूप होती है ये आपकी फसलों के लिए सही है या फिर ये नुकसानदायक है बहुत ज्यादा तेज धूप?
1: इसमें तो नुकसानदायक तो वही है, पानी मतलब गन्ने में इस समय ज्यादा लगाना पड़ता है
0: जी,
1: बिजली भी सही नहीं आती है इस समय।
0: अच्छा तो सुबह ज्यादा काम कर लेते होंगे, जितनी जल्दी धूप कम होती है उससे पहले सब काम निपटा लेते होंगे खेतों का आप?
1: हाँ बहुत ज्यादा 9 बजे तक काम,
0: यानी सुबह आप बहुत जल्दी जगते होंगे।
1: पाँच।
0: अरे वाह। अच्छा ये बताइए जो लोग यहाँ रहते हैं शहरों में ना, उनको थोड़ा सा ये क्या कहते हैं कि ये गांव की याद आती है कि गांव की सुबह बिल्कुल अलग सी होती है और शहरों की सुबह बिल्कुल अलग सी होती है, तो कैसा लगता है कि आपको वहाँ की सुबह जब आप उठते हैं तो एक अलग नजारा होता होगा, आपने महसूस किया होगा ये चीज?
1: शहरों में जैसे लोग व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं और टहलने जाते हैं
0: जी,
1: यहाँ हम लोग टहलने तो यहाँ लोग हम सबको मतलब 5 बजे निकल जाते हैं, काम ही करते रहते हैं
0: जी। बिल्कुल, यानी आपका काम उसी समय
1: हो जाता।
0: बिल्कुल। अच्छा विनीत चले जल्दी से बताइए, आप इतनी सारी मेहनत करते हैं तो हम आपकी पसंद का गाना जरूर प्ले करते हैं, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: नगीना फिल्म का है, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, दोस्तों को याद कर दे।
0: जल्दी से जल्दी से।
1: हमारे चाचा है बउआ महाराज दहलरा से, आजाद सिमरी से, ओमकार सीतापुर से, समा परवीन अंसारी है सीतापुर से, संजय है हमारे सरैया से, और संतोष कुमार मोरे हैं हरदोई से, ममता हरदोई से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजा जी पुरम लखनऊ से हैं
0: जी। तो चलिए आप सभी के लिए ये गाना
1: लखनऊ से
0: जी विनीत, एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग और आपके सभी सुनने वाले दोस्तों के लिए भी गाना।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
2: 100.7 FM Rainbow पर इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है ये जानते हैं। हेलो।
3: हेलो।
2: हाँ जी नमस्कार, जल्दी से अपना नाम बताइए और बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम हेलो FM में।
3: दीदी आपको भी स्वागत है।
2: मेरा भी स्वागत आपने किया, थैंक यू सो मच। अब अपना नाम जल्दी से बताइए ताकि और लोग भी सुने भाई किसका फोन लगा।
3: जी जी सभी पहचान गए थे, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर सजरा फुलवारी बाजार जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
2: जिला बाराबंकी से मोहम्मद फैज जी के नियमित मेल आते रहते हैं और आज हमसे बात भी हो गई आपकी। कैसे हैं फैज भाई?
3: जी दीदी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशनुमा है।
2: और ईद कैसी रही? ईद कैसी रही
3: जी हमारे? हाँ हम आपको तो भूल ही गए
2: जी,
3: ईद उल अजहा की आपको ढेर सारी मुबारकबाद।
2: अरे भाई

0: आपको भी जी आपको भी बहुत ढेर सारी मुबारकबाद, और आपके जो मुस्कुराहट है उससे पता चला कि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि आजकल खूब दावतें खाने को मिल रही हैं।
1: जी जी जी
0: जी मतलब अब 2-3 दिन तो काम बंद रहेगा, घूमना फिरना ही चलेगा जी,
1: कई बार
0: है ना, मैं समझ गई। तो भाई आज आज कितनी जगह आप गए दावत खाने?
1: जी दीदी आज तो मैं चार जगह गया था।
0: दावत खाई आपने?
1: जी, जी, जी।
0: और ये बताइए कि भाई सब लोग साथ में जब मिलते हैं तो क्या आनंद आता, कितना मजा आता है, जरा बताइएगा हमारे सभी सुनने वालों को, जब सब भाई बहन और सब रिश्तेदार साथ होते हैं और अपने जो बहुत करीबी लोग होते हैं, तो इन त्योहारों पर कैसा मजा आता है?
1: दीदी जब अपने खास मतलब खास अपने रिश्तेदार मिलते हैं, जैसे हमारी बहन या जीजा जी जब आते हैं
0: जी,
1: तो जब हम लोग मिलजुल जाते हैं तो
0: तो भाई फैज जी हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और यूं ही हमेशा रौनक रहे ईद की और खुशियां बिखेरी, जैसे आपने है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हम देख सकते हैं, मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि आप बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं, इसी तरह खुशियां बिखेरते रहिए, और हमारा जो आपका जो लिसनर्स के आप हैं हमारे रेगुलर लिसनर, तो यूं ही हमें मेल्स वगैरह करते रहे, हमसे बात करते रहे। थैंक यू सो मच फैज बात करने के। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गाना पूछ रही हूँ आपकी पसंद का, बताइए
1: जी। गाना जो लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ वो भी बताएंगे
0: जी, गाना पहले बताइए
1: जी। गाना सुनना है, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा देंगे, तुम चाहो बसो जितना हम तुमको।
0: सलमान खान साहब के बहुत बड़े फैन हैं आप
1: जी? जी
0: जी, तो चलिए भाई उनकी फिल्म का गाना है, और किसको? हाँ
1: हेलो,
0: जी थोड़े से नाम लीजिए क्योंकि और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं ना, फोन लगातार ब्लिंक। जी जी जी
1: जी, सबसे पहले मेरी क्यूट सी प्यारी वाले आरजे त्रिपेदी जी को
0: थैंक यू सो मच,
1: और उसके बाद में मोहम्मद आसिफ भाई है, रंजीत सिंह है, तमा परवीन आपा गुलाब साहब
0: जी
1: है जी, और तमा परवीन आपा है, मोहम्मद सद्दाम भाई है, और यासिर हमीद भाई है।
0: चलिए आप सबके लिए,
1: अकबर भाई है बस, और बाबू अंसारी भाई है बस।
0: जी जी चलिए सबके लिए, और आपको फोन किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया फैज भाई।
1: थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार, उसके बाद जारी रहेगा हेलो FM का ये सफर 100.7 FM रेनबो पर। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
1: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
0: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
1: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के समय एक प्रयास है, और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गाँव विकसित होंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत माँ का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
2: वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है, और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए, किसान सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए।

0: चाहिए, उन्हें ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने

0: को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशेष शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मोरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रूपये से

अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
7: लगता है ये सबसे खास बात है, क्योंकि प्यार से खाना खिलाना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि गुस्से में खिलाया गया खाना या पकाया गया खाना फिर शरीर को लगता नहीं।
8: जी मैम, यही होता है।
7: तो गुलफ्शा, अच्छा ये बताइए, आप मुद्दे की बात आते हैं, मुद्दे की बात ये बताइए, कितने सेट कपड़े बनवाए आपने?
8: हमने सिर्फ एक ही बनवाया है।
7: एक ही बनवाया? अच्छा, हमसे छुपाइए नहीं, ऑन एयर ही ना छुपाइए। जी
8: जी मैम, क्या
7: हमने कहा छुपाइए नहीं, बता दीजिए।
8: नहीं मैम, हमने सिर्फ एक ही बनवाया है।
7: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
8: बोलते हम
7: इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी पकवान बनाने के बाद, सिर्फ
8: बता देंगे।
7: जी हम कह रहे हैं, इतने सारे पकवान बनाने के बाद, इतना काम करने के बाद सिर्फ एक सेट कपड़ा आपने क्यों बनवाया?
8: नहीं मैम, वो तो हर साल हम लोगों के बनते ही रहते हैं, ये तो है नहीं खाली त्योहार।
7: जी हमने कहा भाई त्योहार पे तो थोड़ा सा डबल कर लेना चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, हर लड़की की तमन्ना होती है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें ये रहता है कि भाई कपड़ों के मामले में थोड़ा सा जो है, हम लोग चूजी होते हैं, हम लोग को लगता है अरे वाह एक फेस्टिवल आ रहा है, मौका मिल गया कपड़े बनवाने का।
8: जी
7: होता है ना ऐसा,
8: हम हस्बैंड के साथ जाते हैं तब ये हो जाता है।
7: तब तो
8: साथ में है नहीं।
7: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप इतना खुश रहती हैं और इतनी खुशी से आपने त्योहार मनाया, और साथ ही जो आपके घर आते होंगे वो निश्चित रूप से बहुत खुश रहते होंगे। गुलफ्शा बताइए,
8: लेकिन पहली बताई थी जो उनके साथ हमने नहीं मनाई।
7: अच्छा अच्छा, ओहो, चलिए अब कुछ पलों का इंतजार, कुछ दिनों के इंतजार के बाद फिर वो आपके साथ होंगे। वैसे कहते हैं जब

0: लोग साथ होते तभी मजा आता त्योहार का।
1: जी जी मैम।
0: अब चलिए और दूसरे मुद्दे की बात करते हैं कि बताइए गाना कौन सा सुनना है।
1: गाना में सुनना है दिल मूवी का ओ सनम ओ सनम।
0: ओ सनम ओ सनम, ये गाना क्यों पसंद है आपको?
1: अच्छा लगता है, इसकी म्यूजिक अच्छी है, गाने के बोल अच्छे हैं। जी मैम, सुनते रहते हैं।
0: तो चलिए गुलशन, हमने गाना प्ले कर दिया,
1: नाम ले लें
0: जल्दी से।
1: सबसे पहले आपको
0: धन्यवाद।
1: क्षमा परवीन है, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, महक अंसारी, निशा अंसारी, ममता गौतम है, रोशनी रावत है, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को
0: शुक्रिया हमको डेडिकेट करने के लिए, और तमाम लिसनर्स जिनको आपने डेडिकेट किया उनकी तरफ से भी आपको थैंक यू। ओके बाय बाय गुलशन, बाय।

0: जी हम साथ हैं आपके और आप साथ हैं हमारे, और हमारे साथ है हमारा प्रोग्राम हेलो एफएम 100.7 एफएम रेनबो पर। शिल्पी आपके साथ है 7:39 हेलो एफएम, और हेलो एफएम कहने के लिए और हमें हेलो कहने के लिए कौन है आइए जानते हैं। हेलो
1: हेलो मैम, प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग प्यार भरा नमस्कार, आपको भी अपना नाम बताइए।
1: मैम रिंकी पिंकी बात कर रहे हैं जगदीशपुर शिवगर दीवानों के शहर जिला रायबरेली से। मैम कैसी हैं आप?
0: रिंकी पिंकी जी रायबरेली से बहुत बहुत स्वागत है, और मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके और अच्छी हो गई।
1: थैंक यू मैम।
0: तो रिंकी जी कैसा मौसम है रायबरेली में?
1: आज रात में आंधी भी आई तो मैम ठंडा मौसम है, बहुत ही सुहाना मौसम था आज तक।
0: जी तो अभी क्या कर रही थी आप सुहाने मौसम में?
1: मैम खाना बना रहे हैं।
0: लीजिए
1: बना रहे हैं और खाने के लिए आ जाइए आप।
0: क्या, अरे वाह, अब आपने देखिए मेरी भूख बढ़ा दी। अब आप ऐसे कह देती तो हम।
1: हेलो शिल्पी दीदी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, ये कौन बोला?
1: जी आपकी वही जानी पहचानी दोस्त पिंकी।
0: हाँ हाँ हाँ क्या बात है, बहुत बहुत

0: आप सबका स्वागत।
1: की बहुत तमन्ना थी, आज पूरी हो गई और हम आपका कार्यक्रम कंटिन्यू दोपहर में सुनते रहते पर जुड़ नहीं पाते।
0: अरे जुड़ नहीं पाती क्यों, मेल तो आपके आते हैं?
1: जी जी मैम, कभी कभी भेज देते हैं क्योंकि भैया लोग घर पे रहते हैं तभी भेज पाते, नहीं तो नहीं भेज पाते।
0: अरे चलिए, हम लोग एक दूसरे से दिल से कनेक्टेड हैं, है ना?
1: जी ठीक है मैम, आप हमारी बहन से बात करिए, हमें कुछ काम है तो हम
0: जी जी जी बिल्कुल। हाँ तो भैया रिंकी पिंकी जी, कहाँ गई आप? हेलो
1: जी मैम,
0: यहीं पर हैं। हाँ तो भाई चलिए, आज सबसे जो हमारे लिसनर्स हमको मेल करते थे, और ज्यादातर मैं दोपहर में प्रोग्राम करती हूँ ना तो मुझे सबके मेल मिलते हैं, तो आप आज सबसे बात हुई जा रही है। अब जल्दी से बताइए कौन सा गाना सुनना है।
1: मैम दिलवाले मूवी से चला दीजिए, मैम कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे।
0: बिल्कुल नाम लीजिए, नाम लेने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं।
1: सबसे पहले तो आप है, उसके बाद
0: शुक्रिया
1: कानपुर से गुंजन तिवारी जी है, समा परवीन, साहिबा अंसारी और ममता गौतम, सुरभि सिंह और मोहम्मद फैज भाई, विनीत भाई और संजीव भाई, बाकी जितने सारे भैया लोग सुन रहे हैं सबको
0: सबको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
3: हेलो एफएम, आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो पर, शिल्पी आपके साथ है और धड़कन लखनऊ की कर बहुत सारी धड़कने जुड़ चुकी हैं और इस समय हमारे साथ कौन है ये जानता। हेलो
4: हेलो, गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग, नाम बताइए जल्दी से अपना।
4: जी मैं यास्मीन वानो बात कर रही
3: हूं। यास्मीन जी कहाँ से बात कर रही है?
4: सीतापुर।
3: सो लकी इवनिंग फॉर सीतापुर पीपल। हाँ, सीतापुर के लोगों के बहुत सारे फोन मिल रहे हैं
4: आज। लगी है मतलब हमारे लिए भी, मतलब इतनी जल्दी कॉल नहीं लगी।
3: आज लग गई। चलिए यास्मीन, कैसी हैं आप?
4: मैं बहुत अच्छी।
3: क्या करती हैं? बिल्कुल, आप बताइए क्या करती हैं यास्मीन?
4: मैं इस टाइम ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही हूँ। वैसे तो मैं सिलाई कर चुकी
3: जी,
4: वो मेरी कंप्लीट है। तो आप उनका कोर्स कर रही हैं
3: जी? किस चीज का कोर्स कर रही हैं?
4: ब्यूटिशियन
3: का कोर्स करें, यानी आप लोगों की खूबसूरती बढ़ाने का काम करती हैं।
4: यस मैम।
3: तो ये बताइए कि ये खूब

0: सूरती जो है वो बाहरी प्रोडक्ट से बढ़ाने का सजेशन देते हैं, या फिर कुछ ऐसे देसी चीजें जो आपकी किचन में मौजूद हैं उनसे भी खूबसूरती बढ़ सकती है?
1: जैसे किचन की तो बात है ये, लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि मुझे इंस्टेंट ग्लो चाहिए।
0: इंस्टेंट ग्लो, ओके। तो इंस्टेंट ग्लो के लिए तो फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है इस तरह का। अच्छा एक चीज बताइए, कहते हैं जो आलू होता है, आलू वो ब्यूटी बढ़ाने में बहुत अच्छा कारगर साबित होता है, क्या ये बात सही है कि आलू को अगर हम घिस करके और उसका अगर हम पानी निकाल लेते हैं यानी उसका जूस निकाल लेते हैं तो क्या वाकई में स्किन पे लगाने पर इसमें रौनक आती है?
1: नो, मैं इसके बारे में, मेरी मैम ने तो सजेशन नहीं दिया उसने
0: नहीं
1: का।
0: लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा होता है, अगर आप स्किन पे इसको लगाते हैं, अप्लाई करते हैं तो रौनक आती है।
1: नहीं, मेरी मैम ने बोला कि अगर आपको खूबसूरती, अगर आपके फेस पे कुछ भी नहीं है तो आप घरेलू नुस्खे अपना सकती हैं, वरना जो है आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए,
0: जी।
1: तब आप
0: और
1: फायदा
0: सबसे बड़ी बात आपको एक और मैं बताऊं, यास्मीन की खूबसूरती ये चेहरे पर जरूर होगी, चाहे आप जितना मेकअप कर लीजिए आप खूबसूरत नहीं लगेंगी अगर आप उसमें एक प्यारी सी स्माइल ना रखें, तो स्माइल जरूर रखने को बताया कीजिए।
1: ये सर। मैम जो मतलब कस्टमर आते हैं, मैं उनसे मतलब ऐसे ये बात बात करते हैं तो बहुत अच्छा मतलब यहाँ का मतलब माहौल लगता है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, अपने काम को एंजॉय करना भी चाहिए। सो यासिन बहुत अच्छी बात है कि आपने एक अपना डिसाइड किया कि हमें क्या करना है ज़िंदगी में और उस तरफ आप आगे बढ़ी। बिल्कुल आपको जो है हर किसी को अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा होना चाहिए यासिन, बहुत अच्छा एफर्ट आपका। तो अब जल्दी से जो गाना आपने सुनना चाहा है वो बता दीजिए हमारे लिसनर्स को।
1: गाना मैम तराश मुझे चाहे यार बदलना जाना।
0: तो भाई मौसम की तरह बिल्कुल मत बदलिए, ये ना हो कि पता चला आपका मौसम, आपके जो है जो स्वभाव है बहुत अच्छा और एकदम से मौसम की तरह बदल के कड़कने लगी बिजली, ये मत करिएगा।
1: नो मैम, मैं ऐसा करती रहती
0: तो ये मुस्कुराहट यूं ही मेंटेन रखिए।
1: बदलती नहीं मैं, जिससे मतलब मोहब्बत करती हूँ दिल से करती हूँ, ना कि बदल किसी के साथ मैं ऐसा करती।
0: क्या बात है, तो चलिए अब एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग 100.7 FM रेनबो। जी गाना प्ले हो गया है, चलिए दो नाम ले लीजिए।
1: मेरी फ्रेंड है शबनम।
0: चलिए शबनम के लिए आपकी तरफ से गाना आ रहा है।

0: 7:50, 42 सेकेंड, 46 सेकेंड, सेकेंड्स यूं ही बढ़ते रहते हैं। और अब सच्ची पकड़िए तो वक्त पकड़ने का दिल करता है, लेकिन वक्त हाथ से यूं छोड़ता है जैसे कि रेत। बिल्कुल सही बात है। और फिलहाल हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर से। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, नाम बताइए अपना।
1: मोहम्मद तालिब अंसारी, राजा कटरा, बाराबंकी से बोल रहा हूँ।
0: जी मोहम्मद तालिब अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम हेलो एफएम में। कैसे हैं?
1: थैंक जी, बढ़िया है, ठीक है। और काफी सारे मेहमान लोग थे, लेकिन चुपके से हम टाइम निकाल के हम भी किस्मत आजमा ही लेते हैं और मेरी कॉल लग गई।
0: तो वही त्योहार, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, आज हम दे रहे हैं।
1: जी थैंक यू।
0: तो भाई जाहिर सी बात है कि त्योहार है तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, और आप खुद भी लोगों के घर जाते हैं, है ना? क्योंकि त्योहारों का ही मौका होता है जब आप एक दूसरे से के लिए समय निकाल पाते, वरना यूं तो इंसान बहुत अब बिजी हो गया। क्यों?
1: हाँ ये बात तो सही है, पहले पत्रों का जमाना था, अब अनलिमिटेड का जमाना है, तब भी आदमी लोग खैरियत वगैरह बहुत कम, लोग रिलेशन जो है बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन अब यही एक मौका होता है
0: जी,
1: त्योहार,
0: इसीलिए त्योहार होते हैं,
1: आदमी मिल पाता है।
0: जी जी जी, त्योहारों के बहाने ही आपस में लोग मिलते हैं, और त्योहारों की जो रौनक होती है वो आपस में मेलजोल से और सब अपनों के साथ होने से होती है।
1: जी
0: तो तालिब जी, आप अभी हमको ऑफ एयर बता रहे थे कि बहुत सालों बाद बात हो रही है आपकी।
1: जी बहुत दिनों के बाद, जब हम छोटे थे तब रेमबो धमाल प्रोग्राम आता था 12 बजे, तब आपसे बात हुई थी।
0: अच्छा, उसके बाद अब सीधे आज बात हुई है।
1: मेल के तो जब आप दोपहर में आते हो मेल के थ्रू जुड़ जाते
0: जी
1: थे
0: जी,
1: लेकिन आप तो शाम को जब आई हैं तो आज हमने सोचा किस्मत आजमा ही लेते हैं।
0: अरे बहुत अच्छा किया। और अब जल्दी से, हाँ जल्दी
1: से, कहते हैं ना दिल से दिल तक का रिश्ता होता है, जैसे रेनबो से तो फोन लग भी जाता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल
1: तो फोन लग गया।
0: आप सब लिसनर्स का बहुत दिल का रिश्ता है रेनबो का, और यही आप लोग का जो प्यार है वो रेनबो को जो हमारा है वो दिन रात चौगनी क्यों वृद्धि कर रहा, सिर्फ आप लोग की वजह से, आपके प्यार की वजह से।
1: जी
0: तो अब जल्दी से गाना आपने जो हमें बजा दिया तो हमने प्ले कर दिया है। आपने बताया था इतिहास मूवी का गाना सुनना है,
1: इतिहास मूवी का,
0: है ना?
1: हाँ जी,
0: तो अब
1: जी,
0: हम इसको आप एंजॉय कीजिए क्योंकि अब समय हमारे पास।
1: हाँ, हमारे भाई हैं मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद साबिर और अकबर भाई सर जी, और सभी सुनने वालों को डेडिकेटेड सॉन्ग, और खास करके आपको
0: थैंक यू सो मच।

0: और चलते चलते एक जल्दी से बात कर लेते 7:56 पर। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, जल्दी से बात कीजिए, 7:56 हो गए।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश बांसुजाड़ा से बात कर रहा हूँ मैडम जी। मेरे गांव नाम बांसुजाड़ा।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या हालचाल है और कौन सा गाना सुनना, क्योंकि समय कम है इसलिए ज्यादा बात आपसे नहीं कर पाएंगे।
1: और आज मुझे दिल फिल्म का गाना सुनवा दीजिए, ओ प्रिया प्रिया, और सभी को गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ मैडम जी।
0: जी सभी को।
1: मौसम में जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, कलिंदे खरबूजा ककड़ी खीरा इनका सेवन करना चाहिए, पत्तियों को पानी रखना चाहिए, भैंस जानवर को ख्याल रखना चाहिए।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा संदेश दिया। और अब जल्दी से हम फोन रख रहे हैं क्योंकि 7:57 हो गया है, और इसी के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करने की इजाजत दीजिए शिल्पी को। नेक्स्ट 4 आवर आपको एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल तैयार है स्टूडियो में विनय। सो अभी के लिए मैं आपसे करती हूँ टाटा बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक आवश्यक सूचना सुनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए, awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
4: ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंबरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। प्रदेश में बीती रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान तथा जनजीवन प्रभावित हुआ। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है रते आश के जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
5: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की

0: चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब अली।
0: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है, कोई शबे गम गुजार के वसल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आपशा 100.7 FM रेनबो पर।

शाम होते ही दिल को तेरी याद सताने लगती है, शाम होते ही दिल को तेरी याद सताने लगती है, गजलों की महफिल फिर तेरा नाम गुनगाने लगती है। जी हाँ, आज फिर गजलों की इस खुशनुमा महफिल में इस्तकबाल करता हूं मैं आपका अपना दोस्त विनय। आप सुन रहे हैं आपशार।

0: 100.7 पर आप सुन रहे हैं आपशार। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, चांदनी जब भी दिल को सुलझाएगी। गजलों की महफिल में नाम तुम्हारा आएगा, हर धड़कन मोहब्बत का पैगाम सुनाएगी। सुनते रहिए आपशार, आज विनय के साथ।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं विनय के साथ आपशा। तेरे जाने के बाद भी तेरी महक बाकी है, तेरे जाने के बाद भी तेरी महक बाकी है, दिल की गलियों में अब तेरी झलक बाकी है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों, प्यार की ये खूबसूरती इसमें भी है कि किसी अपने के आने की आहट भी दिल की धड़कनों को बहुत तेज कर देती है। यही एहसास आज हम जगजीत सिंह साहब की आवाज में सुनने जा रहे हैं। तेरे आने की आहट से ही दिल महकने लगता है, तेरे आने की आहट से ही दिल महकने लगता है, जैसे गुलशन में बहार उतरने लगता है।

0: उन्मुखीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं आबशार 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

तो दोस्तों आज की ये महफिल यहीं तक। प्यार की गजलें यूं ही आपकी शामों को रोशन करती रहीं। चलते चलते एक शेर पेश है, हमने गजलों में मोहब्बत को सजा कर रखा है, हमने गजलों में मोहब्बत को सजा कर रखा है, हर अल्फाज में तुम्हें ही छुपा कर रखा है। फिर मिलेंगे किसी और शाम, किसी और धड़कन के साथ, तब तक मोहब्बत की महक दिल में सजा कर रखते रहिए, सुनते रहिए आप शायर।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग हई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers.

पहले जब प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ था तब हमें मेल किया था सत्यम वर्मा जी ने, और ये हमें बाराबंकी से मेल कर रहे हैं और हमें इन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है और लिखते हैं कि आपने तो सरप्राइज दे दिया। वैसे ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, आप लोगों से हमेशा हमेशा मिलना बड़ा अच्छा लगता है। और सुल्तान रजा ने हमें मेल किया है और वे लिखते हैं, विनय सर आपको सुल्तान रजा का प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं? मैं जबरदस्त हूँ, आज बहुत दिनों बाद आप रात के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और इन्हें अच्छा लग रहा वाकई। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली सुल्तान रजा, इकबाल रजा, सादिक रजा, मुनीश रजा, जिशान रजा, अफजाल रजा, मम्मी पापा और बड़े सारे लोगों के नाम लिखे हैं और इन्होंने शुक्रिया कहा है। अरे आपको शुक्रिया जो आप हमें सुन रहे हो और आपने मेल किया है और आपने हमें ये क्या आपने किया, आपने हमें चाय नाश्ता भेज दिया और उसकी फोटो खींच कर भेजी है, ये गलत बात है। कभी घर बुलाइए, चाय नाश्ता कराइए, हम आ जाएंगे पक्का। और हमें देखिए मेल किया है ये विजयपाल यादव हैं जो लखीमपुर खीरी से हमें मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि शाम ढलती है तो आपकी याद आ जाती है। वाह वाह वाह, शाम ढलती है तो आपकी याद आ जाती है, दिल की हर धड़कन तेरा नाम गुनगुनाती है, चाहे कितना भी व्यस्त रहूं इस दुनिया में आपकी मुस्कान ही मेरी सुकून बन जाती है। अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। आज का आपशार कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा क्योंकि आज अधिकतर गजल सुनने को मिली, इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद आपको, धन्यवाद। पॉप टाइम का आनंद ले रहे हैं और इन्होंने अपना नाम फिर से लिखा है, विजयपाल यादव, बबलू यादव, ग्राम व पोस्ट ललहुआ, जिला खीरी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मेल किया और इतना हौसला अफजाई की। और साथ ही साथ हमें मेल किया है, बड़े सारे नाम लिखे हैं, ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरून नूर अंसारी, फरियान हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान लिखते हैं। अच्छा आपने नाम गलत लिखा, आज पॉप टाइम चल रहा है और कार्यक्रम रोज सुनते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मोनू सेठ जी ने भी मेल किया है और इन्होंने हमें मेल किया है कि इन्हें तगड़ा लग रहा है प्रोग्राम, बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने ऐसा लिखा है। और इनकी दो मेल हैं और इन्होंने पौधा लगाने का भी पूछ लिया और साथ साथ इन्होंने ये भी लिख दिया, दोनों एक साथ लिख दिया है कि इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। और एक और बेहतरीन ट्रैक आप सभी के लिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

और हमारा दिल तो आप ले रहे हैं इतने सारे मेल जो कर रहे हैं। जी हाँ, और आपकी मेल्स पढ़ के देख के बड़ा मजा आ रहा है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका मूड फ्रेश नहीं है और आप कोई बढ़िया थेरेपी चाह रहे हैं तो म्यूजिक से अच्छी कोई थेरेपी नहीं है। बेहतरीन म्यूजिक सुनिए और थोड़ा सा मटक भी लीजिए। जी हाँ, अगर आप अकेले कमरे में थोड़ा डांस कर लेते हैं और तेज तेज थोड़ा गाते हैं तो आपकी जो टेंशन है, आपके दिमाग में जितना भी बहुत सारी परेशानी भरी है ना, वो तुरंत फट से भाग जाएगी। और हम है ही, अभी पॉप टाइम चल रहा है 9 से 10। आप मेरे साथ विनय के साथ रहने वाले हैं और मूड को फ्रेश करने के लिए एक और बेहतरीन गाना आप सभी के लिए आ रहा है। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो और मेल करके हमें बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

100.7 FM रेनबो पर आप विनय के साथ हैं और पॉप टाइम में मेल्स लेना भी बनता है। बहुत सारी लंबी लिस्ट बन गई है और इस लिस्ट को अगर धीरे धीरे खत्म नहीं करेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे।

दोस्तों 100.7 FM रेनबो पर आप विनय के साथ हैं और पॉप टाइम में मेल्स लेना भी बनता है। बहुत सारी लंबी लिस्ट बन गई है और इस लिस्ट को अगर धीरे धीरे खत्म नहीं करेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए इंद्रपाल मिश्रा जी क्या कहते हैं ये जानते हैं। और ये हमें ग्राम अमृता महोली सीतापुर से सुन रहे हैं और इन्होंने हमें नमस्कार कहा है और प्रोग्राम बढ़िया लग रहा है। और साथ ही साथ रामराज ने हमें मेल किया है। श्री गणेशाय नमोह लिख रहे हैं और रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से इन्होंने हमें मेल किया है। रामराज, राजू, भानु, शंकर, मैया, पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी, काका और ये सभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और इन्हें अच्छा लग रहा है। और इन्होंने कहा कि आप ईमेल पढ़ते रहिए तो दिल खुश हो जाता है। अच्छा, और हमारा दिल खुश होता है जब आप हमें मेल करते हैं। और हमें रोशनी रावत ने भी मेल किया है और हमें पता है कि ये बहुत दूर से हमें सुन रही है, ये चंडीगढ़ से हमें मेल करती हैं और इन्होंने नमस्ते कहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है प्रोग्राम। आप शार इन्होंने सुना, अच्छा लगा और पॉप टाइम भी बढ़िया लग रहा है। और अच्छा, तो लेकिन आपने जो नाम लिखा है वो हम आज नहीं बजा सकते। रेनबो कैफे जब आएगा तो आपको बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे जो आप चाहते हैं, जिसका नाम आपने लिखा है, जिक्र किया है। ये रोशनी रावत है, ये रहने वाली उन्नाव की है, फिलहाल चंडीगढ़ से हमें सुन रही है। और आइए देखते हैं, हमें अरविंद कुमार दुबे जी ने मेल किया है, वो क्या कह रहे हैं। और लिखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा लिया है, डांस मूड डांस का बन गया है और ठंडी हवा चल रही है, हम सभी छत पर पॉप टाइम सुन रहे हैं। और लिखते हैं कि अच्छा, आपने जो कहा है हम उसका हम ध्यान रखेंगे। अरविंद, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, ये हमें ग्राम धर्मदेवा पोस्ट छठा जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं। और साथ ही साथ विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से हमें सुन रहे हैं। पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले विनय सर को गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। और इन्होंने पहले से गुड नाइट भी कह दिया, अभी गुड नाइट नहीं कहने का, पूरा प्रोग्राम सुनेगा रजनीगंधा तक। और साथ ही साथ लिख रहे हैं कि इन्हें गाने अच्छे लग रहे हैं, लाजवाब लग रहे हैं और इन्होंने धन्यवाद कहा है। इनके दोस्त का नाम है ओमकार सीतापुर से और सिरभी सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से और सीमा रावत राजा जीपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से। जी, इतने सारे नाम इन्होंने हमें भेजे हैं कि हम ले लें, भाई हमने तो ले लिए। और निर्मल गुप्ता जी ने भी हमें मेल किया है और लिखते हैं कि मैं निर्मल गुप्ता ग्राम भेटिया जिला लखीमपुर खीरी से, और लिखते हैं कि आपके पॉप टाइम कार्यक्रम का ऐसा असर है कि अब घर वाले पूछने लगे हैं कि तुम रेडियो सुन रहे हो या नौकरी कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही आपका कार्यक्रम शुरू होता है मैं सारे काम छोड़कर रेडियो के सामने हाजिर हो जाता हूँ। एक दिन तो हद ही हो गई, माँ ने सब्जी लाने को भेजा लेकिन मैं पॉप टाइम सुनने में इतना मग्न हो गया कि सब्जी की जगह रेडियो की नई बैटरी लेकर घर पहुँच गया। वैसे ये जो आप बता रहे हैं नशा है रेडियो का, और ऐसा जब हम यहाँ नहीं होते अपने घर पर होते तो मेरे साथ कुछ कुछ ऐसा ही होता रहता है, पूरे समय रेडियो बजता है। और इन्होंने कहा है कि आगे फिर घर में मेरी जो विशेष मीटिंग हुई, विशेष मीटिंग पर इन्होंने जोर दिया इन्वर्टेड कॉमा में है, उसका प्रसारण नहीं किया जा सकता। आपकी हंसी और बातें इतनी शानदार होती हैं कि लगता है कि रेडियो नहीं घर का कोई दोस्त गपशप कर रहा है, और आप जैसे दोस्त हो तो गपशप करने का मन भी करता है। और इन्होंने अच्छा, इन्होंने फरमाइश वर्ड यूज़ किया है पर फरमाइश की नहीं है। यह निर्मल गुप्ता ग्राम भेटिया लखीमपुर खीरी से। तो अब इतने सारे मेल पढ़ने के बाद एक बार फिर आप तैयार हो जाइए डांस करने के लिए, आ रहे हैं पटोला।

सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर, पुरानी जींस और गिटार, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर है।

0: हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, कुणाल गांजावाला की बेहतरीन आवाज के बाद ये पंजाबी ट्रैक आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर, रेनबो पर आप सुन रहे हैं पॉप टाइम। आज विनय आपके साथ और हम इस पंजाबी गाने पर थिरकने के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए।

और इस पंजाबी ट्रैप पर झूमने के बाद आइए फिर से हम मेल्स की ओर बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वकील अहमद ने हमें मेल किया, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और आवाज अच्छी लग रही है, हमें आपका मेल अच्छा लगा, पॉप टाइम इन्हें बेहतरीन लग रहा है, गाने बढ़िया बज रहे हैं, ईद उल अजहा की सभी को इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और आपको भी शुभकामनाएं, और इन्होंने हमें निमंत्रण दे दिया है और वकील अहमद साहब हम जरूर आएंगे, और इन्होंने कुछ नाम भी लिखे हैं। वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से मेल किया है, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी मिकी, महक अंसारी, गुलफसा सिद्दीकी, अहमद नवाब, और साथ ही साथ हमें विवेक कश्यप का मेल आया है। गुड इवनिंग कह रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और इन्हें आवाज अच्छी लग रही है। विवेक कश्यप सिसैया दरियाना पोस्ट कठौरा जिला सीतापुर से, और इन्होंने कहा है कि भोजपुरी गाना बजाइए, रेनबो कैफे सुनिए, हम तो आपसे यही कहेंगे। और इन्होंने दो बार मेल किया है, और अब देखिए मोनू सेठ जी ने फिर से हमें मेल किया है और इन्होंने पॉप टाइम प्रोग्राम की तारीफ की है और कहने थोड़ा अधिक व्यस्त हूँ जिसके कारण से मेल देर से कर पा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आपने मेल ऑलरेडी कर दिया था और हम समझते हैं आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं। बाबू अंसारी ने हमें मेल किया है, बारा बंकी से नमस्ते कह रहे हैं और प्रोग्राम झमाझम लग रहा है और कुछ नाम शामिल करने लिए कहा है, नसीब अंसारी, मुनान अंसारी, फैज अंसारी, कुलदीप गुप्ता और बाबू अंसारी। और साथ ही साथ आनंद तिवारी ने हमें मेल किया है, लिखते हैं कि रिश्ते वही हैं, अदाकार नए हैं, जज्बात वही हैं, जवाबदार नए हैं, मंच वही है, कलाकार नए हैं, जिंदगी वही है, किरदार ने, क्या बात है। आज के दिन तो दिल तो परदेसी नहीं जा रहा है, लेकिन आज के गाने दिल जीत लिया। अच्छा ओके, गाने इन्हें अच्छे लग रहे हैं। और ये आनंद तिवारी है दारू कुया मल्लावा हरदोई यूपी से, फिलहाल हमें राजस्थान से सुन रहे हैं। आस्था अवस्थी ने हमें मेल किया है, गुड इवनिंग, और कह रहे हैं मैं जानकीपुरम से प्रोग्राम सुन रही हूँ, प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है, लखनऊ से। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था, आपने हमें मेल किया उसके लिए। और देखिए हमें विपिन मौर्य खंजन नगर मितौली लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं, गुड इवनिंग कहा इन्होंने और इन्होंने कहा है कि आप गाने बजाते रहिए, हम सुनते रहेंगे और थिरकते रहेंगे, क्या बात है। और इनके दोस्त का नाम है जक्कन सिंह, जिसके लिए इन्होंने स्पेशली लिखा है कि आप हमारे दोस्त का नाम जरूर ले लीजिए। और देखिए हमने आपके दोस्त का नाम ले लिया और आइए एक और बेहतरीन ट्रैक आ रहा है, आप तैयार हो जाइए डांस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और हम तैयार हैं आपके लिए ये गाना लेकर। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

और आप डीजे पर नहीं हमारे सॉन्ग पर जरूर मटक रहे होंगे, हमें पूरा भरोसा है। 9:50 हुए हैं, बड़े सारे मेल्स अभी भी हमारे सामने हैं। आप सुन रहे हैं पॉप टाइम, आज विनय आपके साथ है। और आइए मेल्स पढ़ते हैं। सुनील कुमार ने हमें मेल किया है, नमस्ते कह रहे हैं, कार्यक्रम बेहतरीन लग रहा है। सुनील कुमार गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर से इन्होंने हमें मेल किया है। और हमें शुभम राज सुन रहे हैं, कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है। और ये लिखते हैं हरदुइया मिल्कीपुर अयोध्या से। अच्छा, इन्होंने पहले से थैंक यू बोल दिया और आपने मेल किया, उसके लिए भी थैंक यू। और हमें सुन रहे हैं जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक खनक

नामदेव आरोही, नामदेव सौम्या नामदेव, और इन्होंने हमें एमपी से मेल किया है। प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है, बहुत दूर दूर से हमें लोग सुन रहे हैं। और अंकुश पटवा ने हमें मेल किया है, ये हमें सालोन रायबरेली से मेल कर रहे हैं, और इन्होंने लिखा है, ठीक है आपने जो लिखा है ना वो हम यही आपसे कहेंगे, पॉप टाइम चल रहा है और आप अगर इस तरह के गाने सुनना चाहते हैं तो हर रोज सुनते रहिए, जब भी आपके लिए रेनबो कैफे आएगा तो ये गाने जरूर बजेंगे। और एमन नवाब ने हमें संडीला से मेल किया है, गुड इवनिंग कह रही हैं और इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और ईद के एक दिन पहले ही तबीयत खराब हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं आप गाने सुनते रहिए, हमारे प्रोग्राम एंजॉय करते रहिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। और साथ ही साथ तेज बहादुर यादव ने हमें मेल किया है, हमें राम राम कह रहे हैं, हम बहुत बढ़िया हैं, और इन्होंने कहा है कि आज आपको रात के कार्यक्रम में पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है आपने रेगुलर सुना नहीं है, हम कई बार आ चुके हैं, कार्यक्रम अच्छा कर रहे हैं, इन्हें बढ़िया लग रहा है, और कहते हैं कि इनकी कोशिश रहेगी कि रजनीगंधा भी पूरा सुने, कोशिश नहीं आपको पूरा सुनना ही पड़ेगा, जय हिंद तक आप बने रहेंगे ऐसा ये कह रहे हैं, और आपको हमें ना 12 बजे मेल करना पड़ेगा। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, गांव मऊ शर्की, जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया है, फिलहाल ये गुरुग्राम हरियाणा से हमें सुन रहे हैं। और साथ ही साथ राजेश कुमार ने हमें मेल किया है, और ये हमें राहत, अच्छा इन्होंने एक शेर लिखा है कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है, राहत इंदौरी साहब का इन्होंने ये बेहतरीन शेर लिखा है, हरदोई से मेल किया है। और साथ ही साथ हमें मुनेश ने भी मेल किया है, मुनेश कुमार राज, लखीमपुर खीरी से, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और हर घंटे इन्हें हमारे सभी प्रस्तुतियाँ लाजवाब रखती हैं, और इन्होंने भी लिखा इनकी बिटिया की तबीयत खराब है, सॉन्ग अच्छा तो उनका ध्यान रखें, हम अपना प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। और साथ ही साथ जावेद अख्तर ने भी गुड इवनिंग कहा है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, सभी गाने इन्हें बेहतरीन लग रहे हैं, इन्होंने हमें आजमगढ़ से मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने दो तीन नाम लिखे हैं, शमगुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीमा शाहीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने हमें मेल किया। और देखिए समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और हम आपसे जुदा बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। 9:57 हुए हैं। न्यूज ब्रेक के उस पार एक बार फिर से लेकर हाजिर होंगे रजनीगंधा। फिलहाल पॉप टाइम से अपने दोस्त विनय को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शासन प्रशासन में पारदर्शिता, सुशासन और तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाते हुए 91 प्राध्यापकों के तबादले संपन्न किए गए। इस प्रक्रिया के माध्यम से सहायक प्रोफेसर, सहायक सह प्रोफेसर तथा प्रोफेसर संवर्ग के कुल 91 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। बागपत जनपद में विजिलेंस टीम ने जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी को 40,000 रुपए और क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी जुगेंद्र सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बुरसैनी गांव के कोटेदार ने बताया कि राशन का कोटा देने की एवज में दोनों अधिकारी काफी समय से रिश्वत देने का दबाव बना रहे थे। कोटेदार आज विजिलेंस टीम को लेकर जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचा और जिला पूर्ति अधिकारी को रिश्वत दी, जिसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इससे पहले क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2026 की परीक्षा 31 मई 2026 को जनपद बस्ती के 12 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र हेतु केंद्र प्रतिनिधि स्टैटिक मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंडलायुक्त गोरखपुर द्वारा जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों हेतु मिट्टी खनन एवं उसके सुरक्षित परिवहन को लेकर एक विस्तृत बैठक की गई। पुलिस कप्तान द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में मिट्टी परिवहन कर रहे डंपरों की ओवर स्पीडिंग तथा बिना मिट्टी को ढके ले जाने की दुर्घटनाओं घटित होती रही है। NHAI द्वारा बिना जानकारी के एक लेन मरम्मत के नाम पर बंद कर दूसरे लेन से ही सभी आने जाने वाली गाड़ियों को निकाले जाने से तथा मौके पर कोई डायवर्जन का बोर्ड भी समुचित तरीके से नहीं लगाया गया था, जिसके कारण दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत होने से एक दुर्घटना हो गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
4: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
3: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

तेरी यादों की चांदनी में भीगा है ये मौसम, तेरी यादों की चांदनी में भीगा है ये मौसम, दिल की हर धड़कन पर आज तेरा ही नाम लिखा है। रात की इस नरम खामोशी में कुछ अधूरे ख्वाब हैं, कुछ मीठी सी मुस्कुराहटें हैं और कुछ अनकहे एहसास जो आज फिर हमें ले आए हैं आपके अपने प्रोग्राम रजनीगंधा में। दोस्तों, ये वो महफिल है जहां हर गीत किसी दिल की

एक कहानी कहता है जहां हर सुर में छुपा होता है मोहब्बत का कोई रंग, और जहां हर लम्हा याद दिलाता है किसी अपने की मौजूदगी का एहसास। तो आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत कर रहे हैं कुछ सदाबहार नगमों और दिलकश एहसासों के साथ।

पहली मुलाकात का जादू शायद कभी पुराना नहीं हो सकता। जी हाँ, पहली मुलाकात का जादू कभी पुराना नहीं हो सकता। वो पल हमेशा दिल में कहीं ठहर सा जाता है जब दो लोग पहली बार मिलते हैं तो सिर्फ बात नहीं होती बल्कि दो धड़कनों के बीच एक अनदेखा रिश्ता भी जन्म लेता है। उस एक मुलाकात ने ऐसा असर किया हम पर, उस एक मुलाकात ने एक ऐसा असर किया हम पर कि हर चेहरा उसी सा लगने लगा है।

0: से पहले कि तेरी आंखें नींद से बोझिल हो, सजाते हैं इनमें कुछ ख्वाब और उन ख्वाबों में बयां हो दिल के तमाम जज्बात।
1: सुनते रहिए रजनीगंधा सिर्फ रेनबो पर।

दोस्तों कभी कभी मोहब्बत शब्दों से नहीं सिर्फ आंखों से समझी जाती है। जी हाँ, मोहब्बत कभी कभी किसी शब्द में नहीं आंखों में होती है। कुछ रिश्तों में खामोशी ही सबसे खूबसूरत बात बन जाती है। तेरी नजरों ने जो बात कही, तेरी नजरों ने जो बात कही, वो लफ्ज कभी कह ही नहीं पाए। कहते हैं सच्चे एहसासों को आवाज की जरूरत नहीं होती, दिल खुद ब खुद उन्हें महसूस कर लेता है।

दोस्तों, प्यार कभी अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे दिल में उतरता है, जैसे सुबह की पहली किरण या बारिश की पहली बूंद। कभी एक मुस्कुराहट, कभी किसी की आवाज और कभी किसी का यूं ही पास से गुजर जाना, दिल को किसी अनजाने एहसास से भर देता है। एक अजनबी सा चेहरा दिल में उतर गया, एक अजनबी सा चेहरा दिल में उतर गया, देखते ही देखते वो मेरी दुनिया बन गया।

दोस्तों प्यार अगर सच्चा हो तो उसमें अपनापन खुद ब खुद झलकने लगता है। कभी किसी की फिक्र में, कभी किसी की मुस्कान में, तो कभी उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी भूल जाने में। यही तो मोहब्बत की सबसे प्यारी बात है, इसमें अपना सब कुछ भी कम लगने लगता है।

दोस्तों, इश्क का सबसे खूबसूरत रंग वफा का होता है। जहां भरोसा हो, जहां अपनापन हो और जहां हर मुश्किल में साथ निभाने का वादा हो। मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं, एक जिम्मेदारी भी होती है जिसे दिल से निभाया जाता है।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और खूबसूरत होते चले जाते हैं। उनमें ना दिखावा होता है, ना कोई शर्त होती है, बस एक सुकून जो हर दर्द को हल्का कर देता है। 10:50 आप सुन रहे हैं आज विनय के साथ रजनीकंधा।

प्यार वो रूहानी आईना है दोस्तों, प्यार वो रूहानी आईना है दोस्तों, जो बिना कहे भी दिल की दुआ बन जाता है। 10:56 हुए हैं, रजनीगंधा की फर्स्ट हाफ से इजाजत लेते हैं, न्यूज ब्रेक के उस पार फिर से रूबरू होंगे। सुनते रहिए FM Rainbow।

रात्रि के 11 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन मीडिया को बताया कि अब तक 9,76,000 किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। किसानों को अब विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए एक

रात्रि के 11 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन मीडिया को बताया कि अब तक 9,76,000 किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। किसानों को अब विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए एक